मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में

श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर OFC कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: प्रातः बेला की आराधना

आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं देशवंदना से। हमारा आपका घर, हमारा आपका कार्यस्थल, अपने संपर्क वाले वे लोग, हम जिनसे मिलते जुलते हैं देश के इसी हिस्से में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का हमें रोज नया अवसर प्राप्त होता है। दैनिक जीवन में हमारा प्रत्येक काम देश हित में हो, यही सतर्कता, यही समर्पण हमारे लिए अपनी मातृभूमि का, अपने देश का सम्मान करना है।

आदिशक्ति पराशक्ति संसार के संचालनकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश को रचने वाली महामाया के समस्त रूप सृष्टि के संचालन के लिए हैं। उनका सौम्य रूप हो या रौद्र रूप, सभी संसार के कल्याण के लिए समर्पित हैं। आइए उसी नित्या नारायणी जगदम्बा का स्मरण करें।

हमारा मानव जीवन भी काठ की हांडी के समान है। जन्म जन्मांतर के बाद जब मनुष्य का जीवन मिला है तो इसका एकमात्र उद्देश्य जन्मों के चक्र से मुक्त हो जाना ही होता है। अगर सत्कर्म के साथ जीवन में परमात्मा की भक्ति का समावेश हो तो हमारी आत्मा सदैव उस परमात्मा के निकट बनी रहती है, उसका आशीर्वाद हमें लगातार प्राप्त होता रहता है।

कहते हैं ऊपर वाला उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। खुद अपनी सहायता करने का अर्थ है स्वयं में अपना सर्वश्रेष्ठ तलाशना। हम सब में जो सर्वश्रेष्ठ निहित है वो है अंतरात्मा, जिसमें अंश होता है परमात्मा का। अपनी अंतरात्मा को पहचानने का अर्थ है ईश्वर को सदैव अपना मार्गदर्शक बनाए रखना।

जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सदैव भक्ति की अवस्था में रहें, अर्थात ईश्वर को हमेशा अपने समक्ष स्वीकारते रहें। परिणाम यह होगा कि हमारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो पाएगा जो प्रकृति के विरुद्ध हो, मानवता के विरुद्ध हो। यही ईश भक्ति का परिणाम है और यही परमात्मा की भक्ति का उद्देश्य है।

0: आज के इस कार्यक्रम में आपने समूह स्वर में देशवंदना के बाद अनुराधा पौडवाल, रतन मोहन शर्मा, बिजानी घोष दस्तीदार और सुमन कल्याणपुर की गायी भक्ति रचनाएं सुनी। इसके साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 6:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने

पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख जेबी सिंह का है।
1: एक जिज्ञासु ने किसी ज्ञानी से पूछा, सभी मनुष्यों की बनावट तो एक जैसी है, फिर उनमें से कुछ पतन के गर्त में गिरकर डूब क्यों जाते हैं। ज्ञानी के पास दो कमंडल थे। उसने एक कमंडल तालाब में फेंका, वह लगातार पानी में तैरता रहा, डूबा नहीं। कुछ देर बाद उसने दूसरा कमंडल पानी में फेंका, वह कुछ ही देर में डूब गया। ज्ञानी ने सहज भाव से बताया कि यद्यपि दोनों कमंडल देखने में एक जैसे हैं, किंतु एक के पेंदे में छेद है, दूसरे के नहीं। जिसके पेंदे में छेद था उसमें तालाब का जल भर गया और वह डूब गया। ज्ञानी ने इसी उदाहरण का हवाला देते हुए समझाया कि जिस मनुष्य में चरित्रगत दोष होते हैं, वे अपने ही दुर्गुणों के कारण पतन के गर्त में गिरकर डूब जाते हैं। कर्म और उसका प्रतिफल, समूचे धर्मशास्त्र, तत्वज्ञान, नीतिशास्त्र तथा विश्व व्यवस्था का आधार माना जाता है। स्वर्ग और नरक की संरचना भी इसी एक प्रयोजन के निमित्त बन पड़ी है। दर्शन शास्त्र ने नैतिकता एवं सामाजिकता के पक्ष में लोकमानस को ढालने के लिए इसी हेतु अनेकानेक तर्कों और तथ्यों का आश्रय लिया है। परमात्मा का सबसे बहुमूल्य उपहार मनुष्य जन्म प्राप्त करने के सौभाग्य के उपरांत दूसरा सौभाग्य एक ही है, उसका सदुपयोग। जीवन एक चौराहा है, उसमें

0: उत्थान और पतन दोनों ओर रास्ते जाते हैं, उनमें से कोई भी पकड़ा जा सकता है। यह चयन मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर छोड़ दिया गया है, वह प्रगति अधोगति या स्थिरता में से कोई भी मार्ग चुन ले और उस चुनाव एवं प्रयास के कड़वे मीठे फल भोगे। मनुष्य जन्म धारण करने के उपरांत स्वयं करने योग्य कार्य इतना ही रह जाता है कि वह अपने सौभाग्य और सामर्थ्यों को पहचाने और आंतरिक दुर्बलताओं से लड़े। उसे चाहिए कि वह विवेक को मान्यता दे और औचित्य को अपनाए और इसकी चिंता न करे कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। सुख सुविधाओं की, समृद्धि की और प्रगति की आकांक्षा सभी करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अच्छे बीज बोने और समुचित खाद पानी देने के उपरांत ही अच्छी फसल काटने और धन धान्य से कोठे भरने का अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार सत प्रवृत्तियां ही समृद्धि और प्रगति के रूप में फलित होती हैं और प्रसन्नता भरे वातावरण का सृजन करती हैं। दुष्प्रवृत्तियों को अपनाकर कभी कभी लुटेरे और उठाई गिर भी जेब भारी कर लेते हैं, पर स्पष्ट है कि अनीति जन्य उपार्जन न तो अधिक देर तक ठहरता है और न ही सुखद संभावनाओं का मार्ग खोलता है। दूषित जल नालियों में बहते बहते अंततः दुर्गंध ही उत्पन्न करता है। बुद्धिमानों को नीति निष्ठा अपनाने और सत परिणामों को सदा ध्यान में रखना चाहिए। संसार में जितने भी अनुकरणीय तथा अभिनंदनीय व्यक्तित्व वाले सज्जन प्रकाश में आए हैं, उन सभी को अनिवार्य रूप से अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार की रीत नीति अपनानी पड़ी है। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाते ही असंख्य समस्याओं में से एक के भी पैर टिक नहीं सकेंगे। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं इतनी अधिक नहीं हैं कि उनकी पूर्ति परिश्रम और ईमानदारी की कमाई से सरलतापूर्वक संभव न हो सके। वस्तुतः इंद्र और कुबेर जैसा वैभव बटोरने के लिए ही उन्मत्त हुआ व्यक्ति कुकर्मों पर उतारू होता है और नीति अनीति का विचार किए बिना कुछ भी कर बैठता है। यदि इस उन्माद पर अंकुश लगाया जा सके तो वे तमाम ऐशनाएँ भी नियंत्रण में आ सकती हैं जिनके कारण भ्रष्टाचार और दुष्प्रवृत्तियां अपनानी पड़ती हैं। मनुष्य की महत्ता का मापदंड उसका विपुल वैभव नहीं अपितु उसके चिंतन और चरित्र की शुचिता है।
1: ये था आज का चिंतन। विषय था नैतिकता और आलेख था जेबी सिंह का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:45 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। वार्ताकार हैं डॉक्टर रत्नेश नारायण श्रीवास्तव और विषय है वर्षा जल संरक्षण।
2: आज की कृषि चर्चा में हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा जल संरक्षण के लिए हम क्या करें। भाइयों, वर्षा हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, प्रतिदिन छुटपुट छुटपुट जो है वो छींटे पड़ रहे हैं और मानसून बहुत दूर नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि मानसून हर साल आता है एक समय पर और चला जाता, तो इस पानी से ही हमको पूरा वर्ष भर जो है गुजारा करना है। तो इस जल का हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण कर सकें उतना हमारे लिए आवश्यक होगा। अब प्रश्न ये आता है कि हम संरक्षण कैसे करें। गर्मी में किसान भाई हमारे गहरी जुताई कर चुके होंगे। अब जो भी हमारे अपने खेतों में मेड़े हैं उन मेड़ों का हम दुरुस्तीकरण कर लें, यानी मेड़े अगर कहीं से हमारी टूटी फूटी हैं तो उन मेड़ों को हम ठीक कर लें, ताकि जिन खेतों में अगर हम खरीफ में कोई फसल नहीं ले रहे हैं तो उनमें हम पानी की फसल लें, यानी हम उनको पानी भरा रहने दें और इसके बाद में हमारे खेत में उससे रिचार्जिंग होगी, हमारा जो है कचरा नहीं होगा और बाद में हमको रबी की फसल बहुत अच्छी प्राप्त होगी। वो क्षेत्र जहाँ काली मिट्टी है और अच्छे ऊँचे बंधान हैं उनके लिए यह तकनीकी बहुत अच्छी है। जो लोग सोयाबीन की बोनी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये सुझाव है कि आप मेड़ नाली पद्धति से ही सोयाबीन की खेती करें। इससे आपका जो है अगर पानी भरने की समस्या भी नहीं आएगी और यदि कोई लंबा सूखा समय आता है तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके खेत के आजू बाजू में कहीं पर नाले हैं तो उन नालों के मुहाने पर जो है आप कोई भी प्रकार संरचना कुछ नहीं है

0: तो आपके पास में जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं और लकड़ी की बल्लियाँ, ये आप नाले के मुंह पर डाल दें और उसमें बोल्डर, बजरी, रेत इत्यादि चीज़ें रख दें, तो नाले का कटाव आगे बढ़ने से रुक जाएगा। पानी के साथ जो मिट्टी बह कर के आएगी वह मिट्टी आपकी वहाँ पर रुकेगी, पानी आगे बढ़ेगा तो आपके नाले का कटाव रुक जाएगा, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। इसमें सिद्धांत की बात यह है कि पानी को हमको रोक रोक करके बहाना है और सुरक्षित वेग से बहाना है। सुरक्षित वेग मतलब जो हमारी मिट्टी को ना काटे। जो हमारे पास में वर्तमान में हमारे तालाब हैं तो तालाबों में मिट्टी बह करके आ जाती है, इससे उनकी जो है जल भरण क्षमता कम हो जाती है। तो अभी समय है हम अपने तालाबों को गहरा कर लें और जहाँ से उनके पास पानी आ रहा है, उनमें पानी आ रहा है, वह मार्ग यदि कहीं से बाधित हो रहा है तो हम उस मार्ग को ठीक कर लें, ताकि वर्षा का पूरा जल जो है वो हमारे तालाब में आए और आगे वर्षा जाने के पश्चात में हम उसका उपयोग कर सकें। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि पानी ज़मीन में रुकता नहीं है, मतलब पानी हमने भरा, रेतीली मिट्टी है, कंकड़ीली मिट्टी है, मुरुम है, तली में, वो क्षेत्र जो है वो परकोलेशन तालाब के लिए बहुत उपयुक्त तो होते हैं। यानी वह पानी इकट्ठा हमारा हुआ और नीचे ज़मीन में बैठ गया तो वह ज़मीन के पानी को रिचार्ज करता है। तो जहाँ ऐसी स्थितियाँ हों वहाँ किसान भाई परकोलेशन तालाबों का निर्माण कर लें तो हमारा जो भूजल है वह समृद्ध होता जाएगा, रिचार्ज होता जाएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि जो भी पानी वर्षा के जल के रूप में हमारे पृथ्वी पर, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में आ रहा है, उसको हम अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक मात्रा में मिट्टी में बैठने दें, कम से कम मात्रा में बाहर जाने दें, क्योंकि यही वह पूंजी है, यही वह हमारे भूजल में जमा करने की बात है। क्योंकि हम पानी लगातार तो निकालते जा रहे हैं, ट्यूबवेल की तकनीक हमारे पास आ गई है, एक एक खेत में दो दो ट्यूबवेल हैं, तो पानी हम निकाल रहे हैं लेकिन उसमें कुछ जमा करने की यानी भूजल रिचार्ज की हम कोई बात नहीं करते। इसलिए भूजल रिचार्ज जिसका एकमात्र सोर्स वर्षा जल ही है वह बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जहाँ जैसा हमको बन जाए रिचार्ज की व्यवस्था हमको करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो भी खेत हैं, जो भी तैयारियां हैं, उनकी हम अच्छे से खेतों की तैयारी कर चुके हैं और कहीं पर भी हमारी फसल में पानी ना भरे इस बात की हमको व्यवस्था करना होगी। जल निकास की उचित व्यवस्था, जल निकास मार्ग हमारा, जैसे हमारे खेत से जैसे हम अगर उड़द बो रहे हैं, हम सोयाबीन बो रहे हैं, ऐसी फसलें जिनको पानी से नुकसान हो सकता है, वहाँ पर उचित जो है जल निकास की व्यवस्था कर दें। हमारे खेत से नाली बना करके बड़ी नाली से जोड़ दें, उसको आगे जा करके किसी नदी या किसी नाले से जोड़ दें, तो हमारे खेत में पानी नहीं भरेगा और हमारी फसल का नुकसान नहीं होगा। तो मित्रों, आप इन सुझावों पर अमल करेंगे और वर्षा जल को अपने खेत से, अपने गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्षा जल संरक्षण विषय पर डॉक्टर रत्नेश नारायण श्रीवास्तव से कृषि चर्चा। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: सेना, भारतीय सेना।
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
2: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्यां अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अंतर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अंतर्गतम् उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणम् एव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1,000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2,700 प्रतिभागी हिस्सा ले

0: होंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, यानी आज दिन भर प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज के नमस्कार भोपाल के आकर्षण है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर CA अंकुर जैन से चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा से बातचीत। और भोपाली बटुए को मिला GI टेक पर डिजाइनर ताजबर खान से बातचीत। ये थे आज के नमस्कार भोपाल के आकर्षण। और अब हम बढ़ते हैं आगे। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आशुतोष पाठक के गाए गीत आप सुन सकते हैं 9:15 पर। प्रदेश की सुर्खियों में 9:30 पर। और 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे जिले की चिट्ठी। दस बजकर 5 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम महिला संसार। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे राजा काले का गायन। राग होगा अलैया बिलावल।

11 बजे आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। 12 बजे और 2:30 पर आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश। 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहिनी की 13वीं कड़ी। एक बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति हैं।

फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं शाम 5:33 पर और रात 8:15 पर। 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा 7:21 पर होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 10 बजे का समय है नाटक का और आज रात में आप नाटक सुनेंगे केकड़ा। लेखक हैं ससीन कुमार बाड़े और प्रस्तुतकर्ता दानिश इकबाल। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे अमित मलिक का वायलिन पर बजाया राग जोग।

0: हम आपको याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, जिसमें आज के आकर्षण हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विषय पर सीए अंकुर जैन से चर्चा और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा से चर्चा और भोपाली बटुए को मिले जीआई टेक पर डिजाइनर ताजबर खान से बातचीत। ये था आज दिन भर प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया, कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। वीबी जी राम जी अधिनियम आज से होगा लागू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति भयावह है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने स्थिति का जायजा लिया है और इसके लिए चर्चा की है। संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है।
2: यहाँ भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश में जो संकट पैदा हुआ है, स्थिति भयावह है, संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी तत्परता पूर्वक कदम उठाए गए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि
1: कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री को यहां की स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी और हर संभव सहयोग भारत सरकार करेगी। श्री चौहान ने आज भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लेने का आश्वासन दिया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा।

0: मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर नए ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। महोत्सव में कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण, 494 करोड़ से अधिक लागत के 629 विकास कार्यों को लोकार्पण एवं भूमि पूजन और हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव राज्य के कोदो कुटकी उत्पादक 3,941 किसानों के बैंक खातों में 2,82,99,300 रुपये की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। ये राशि किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रदान की जा रही है, जिससे श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद भारती पारदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल से ही जीवन है और जीवन के लिए पानी की बचत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीते 3 वर्षों से यह अभियान वृहद रूप से जन सहयोग से चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार किया है। कल राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल अलनीनो के प्रभाव से कम बारिश का अनुमान है, इसलिए प्रदेश में अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी संरक्षण जैसे जल स्रोतों के संरक्षण कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि
2: मुझे इस बात की प्रसन्नता है 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सब का पुनरुद्धार किया।
0: रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है। बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने माइक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं और बाहरी झटकों से निपटने की ज्यादा क्षमता प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून तक प्रदेश भर में 5,48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 4,68,000 से अधिक विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 2,93,257 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक कुल 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इनके बैंक खातों में 1,010 करोड़ 25 लाख रुपए की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है।

अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ICC महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में उसने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कल मानसून जबलपुर, भोपाल, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक में बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर पात्र लोगों को तुरंत लाभ पहुंचाया जाए। मानसून के चलते नर्मदापुरम का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और शिवपुरी का माधव टाइगर रिजर्व आज से 30 सितंबर तक अगले 3 महीनों के लिए पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सतपुड़ा के मढ़ई और चूरना कोर क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। झाबुआ जिले में साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के 7वें दिन साइबर सुरक्षा रैली, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर के 100 सरकारी स्कूलों में ONGC, CSR फंड और सांसद सेवा संकल्प के सहयोग से करीब 70 लाख रुपए की लागत से RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 29 स्कूलों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बड़वानी जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी आज से शुरू हो गई है। ये खरीदी आगामी 10 अगस्त तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। VBG रामजी अधिनियम आज से होगा लागू। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

सभी सुनने वालों को विकास तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के नमस्कार भोपाल में, और आज का ये सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो मित्र विकास तिवारी के साथ।

श्रोताओं, बारिश की पहली फुहार के साथ ही धरती हरियाली की नई चादर ओढ़ने लगी है। यही समय है जब पूरे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 1950 में शुरू हुआ यह अभियान आज जन भागीदारी का बड़ा उत्सव बन चुका है। पेड़ हमारे जीवन के अनमोल साथी हैं। वे हमें शुद्ध हवा देते हैं, गर्मी में ठंडी छांव प्रदान करते हैं, फलों और औषधियों का स्रोत बनते हैं और पक्षियों को आश्रय देते हैं। पर्यावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर वे जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे वृक्ष बनने तक

सहेजना भी उतना ही जरूरी है जिस तरह से हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। उसी तरह से एक पौधे को भी प्यार, पानी और संरक्षण की आवश्यकता होती है। आज बढ़ते शहरीकरण के दौर में यदि हर परिवार अपने घर, मोहल्ले, स्कूल, खेत या कार्यालय के आसपास एक पौधा लगाने और उसकी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और हरा भरा वातावरण मिल सकेगा। तो आइए हम वन महोत्सव पर केवल पौधरोपण का फोटो खिंचवाने तक सीमित ना रहें, बल्कि एक पौधे को जीवन भर का साथी बनाने का संकल्प लें, क्योंकि एक वृक्ष केवल प्रकृति की शोभा नहीं बल्कि हमारे बच्चों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।

और श्रोताओं, आज के नमस्कार भोपाल में क्या कुछ खास है, आइए आपको जानकारी दे दें। भोपाली बटुए को जीआई टैग मिला है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे डिज़ाइनर ताजवर खान से। और श्रोताओं, आज राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है, इस मौके पर हम बातचीत करेंगे सीए अंकुर जैन से। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी है, इस मौके पर हम बात करेंगे सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा से। आपकी पसंद के नए पुराने फिल्मी तराने तो होंगे ही, समाचार पत्रों पर होगा हमारा क्रम सुर्खियां। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अखबारों की कुछ खास खबरों पर। समाचार पत्र ने जिस खबर को प्रमुखता से स्थान दिया है, उसका शीर्षक है फ्यूल कास्ट सरचार्ज 1.10% हुआ, बिजली बिल में राहत, 200 यूनिट पर 30 रुपए तक बचेंगे। प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली

उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मामूली राहत मिलने जा रही है। बिजली बिल में प्रति यूनिट अलग से वसूला जाने वाला फ्यूल कॉस्ट एंड पावर परचेस एग्रीमेंट सरचार्ज घटाकर 1.10% कर दिया गया है। मई में यह 3.91% था, यानी इसमें 2.81% की कमी की गई है। एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों को मिला जीआई टैग। प्रदेश की 12 उद्यानिकी फसलों को जीआई टैग मिला है, देश में पहली बार हुआ है। इसमें गुना का कुमराज, धनिया, नरसिंहपुर बरमान घाट का बैंगन, बैतूल का गजरिया आम, खरगोरी की लाल मिर्च, मांडू की कुरसानी इमली, जबलपुर का मटर, सिवनी का सीताफल, मालवी आलू और गराड़ू, नरसिंहपुर का गुड़, जबलपुर का सिंघाड़ा, अलीराजपुर का नूरजहां आम, बुरहानपुर का केला, इंदौरी जीरावन, रतलाम के सैलाना की बालम ककड़ी और छतरपुर का पान शामिल है। और एम्स भोपाल का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1 जुलाई को माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस सेशन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य लोगों को खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। विशेषज्ञ प्रतिभागियों को माइंडफुल ईटिंग की तकनीक सिखाएंगे, जिसमें भोजन को समझकर और सजगता के साथ धीरे धीरे खाने का अभ्यास कराया जाएगा। और मासिक पत्रिका आदित्य संस्कृति के डॉक्टर विकास दवे व्यक्तित्व एवं कृतित्व विशेषांक का लोकार्पण बुधवार को शाम 5 बजे दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के राज सभागार में होगा। एक और बड़ी खबर है, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई। सरकार का फैसला, पदोन्नति पर हाईकोर्ट का स्टे नहीं, प्रमोशन देंगे 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जीएडी का सभी विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों को निर्देश, पात्रों की लिस्ट बना कर दें। और हाल मौसम का, 8 दिन से रुका मानसून 8 और जिलों में पहुंचा, भोपाल से अभी 48 घंटे दूर। मौसमवाणी, प्रदेश में अब तक 24 जिलों में दस्तक, 32 जिलों में येलो अलर्ट। मानसून ने दूसरे चरण में मध्य प्रदेश के सिर्फ 8 जिलों में ही दस्तक दी। इसकी उत्तरी सीमा अब सागर सीधी तक पहुंच गई है। भोपाल समेत प्रदेश का बड़ा मध्य और पश्चिमी हिस्सा अभी भी मानसून की औपचारिक सीमा से बाहर है। भोपाल में मानसून की एंट्री इस महीने हो जाएगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में तीसरी बार होगा जब भोपाल में मानसून जुलाई में पहुंचेगा। और एक और अच्छी खबर है, कमाई में भोपाली आगे, इंदौर से सिर्फ 50 मिनट ज्यादा काम लेकिन वेतन में 15,000 रुपए प्रति माह का भारी अंतर। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के मेट्रो सिटी पर किए हुए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। केंद्र के राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने देश के 46 शहरों में श्रम और रोजगार सर्वे किया है, जिसके दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। इसमें सामने आया है कि प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल के लोग कमाई के मामले में आर्थिक राजधानी इंदौर से बहुत आगे हैं। भोपाल के लोग सप्ताह में मात्र 50 मिनट अधिक यानी कुल 47 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के नियमित कर्मचारियों और स्वरोजगारियों की कमाई इंदौर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और शहर से जुड़ी हुई एक और खबर है, वोट क्लब रोड की डिजाइन बदलेगी। सीएम हाउस के तीखे ढलान पर बनेगा आइलैंड, मैनेट एक्सपर्ट की सलाह पर पीडब्ल्यूडी करेगा बदलाव। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ खास खबरें सुर्खियों में। यहीं समेटते हैं सुर्खियों को। और अब वक्त है आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो लीजिए पेश है ये प्यारा सा नगमा।

0: श्रोताओं, भोपाल के प्रसिद्ध बटुए को हाल ही में जीआई टैग मिला है। यह उपलब्धि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगी और पारंपरिक कला शिल्पियों की आय को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। इस पारंपरिक हुनर पर अंतर्राष्ट्रीय मुहर लगने से इससे जुड़े कारीगर, डिजाइनर, कारोबारी बेहद खुश हैं। यह उपलब्धि भोपाल के खाते में कैसे आई, आइए जानते हैं जरी जरदोजी और बटुए के लिए डिज़ाइन बनाने और कारीगरों को जोड़कर इस हुनर को संरक्षित कर रही डिज़ाइनर ताजवर खान से। ताजवर खान जी, पहले तो आपको भोपाली बटुए को जीआई टैग मिलने की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विकास जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और हमारे भोपाल के लिए।
0: ताजवर जी, भोपाली बटुए को जो जीआई टैग मिला है, इसके पीछे किस तरह की मेहनत है, किस तरह के प्रयास हैं जिनके कारण ये उपलब्धि भोपाल को हासिल हुई है?
1: विकास जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो उपलब्धि हमने प्राप्त करी है, ये किसी एक इंसान की उपलब्धि नहीं है, ये हमारे पूरे भोपाल की उपलब्धि है। और इस भोपाल की उपलब्धि में हमारे सारे वो आर्टिजन, वो कारीगर, वो शिल्पकार जुड़े हुए हैं जो लगातार इस कला को करते हुए जा रहे हैं। हमारे 6,500 कारीगर जो इस पे लगातार काम करते जा रहे हैं और इस कला को विलुप्त नहीं होने दिया, और आज भी वो पैसा कम मिलने के बावजूद भी इस कला को बरकरार रखे हैं और करते जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा श्रेय हमारे कलाकार, हमारे शिल्पकारों को जाता है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जिन्होंने इस कला को बचा के रखा है।
0: यदि भोपाली बटुए की बात करें तो ये कला कितनी पुरानी है और किस तरह से इसमें समय के साथ बदलाव हुए, पहले किस तरह की चुनौतियां थी और अब किस तरह का बदलाव आ चुका है?
1: जी विकास जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भोपाली बटुआ जहां से आया, बेसिकली अगर हम इसके इनोवेशन की बात करें तो जब हमारी महारानी कमलापति जी और हमारे बेगम्स थी, उस टाइम पे ये बटुआ एज अ एक काम के लिए यूज होता था, जिसमें अपने डेली रूटीन के सामान रखने के लिए, गिफ्ट देने के लिए आपस में एक छोटा सा बटुए के रूप में उसको स्टिच करके और वो दिया जाता था। अब इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल बटुए थे, ब्रोकेड के होते थे, बनारसी फैब्रिक के होते थे या फिर तंछोई के होते थे, लेकिन कैसे उसे एक्सक्लूसिव बनाया जाए या और सुंदर कैसे बनाया जाए, तो उसके ऊपर सोने चांदी के तारों से काम होता था, जो कि हमारा बीडवर्क और जरदोजी वर्क कहलाता है, जिसकी मदद से उसको और खूबसूरत बनाया जाता था और आपस में एक दूसरे को गिफ्ट किया जाता था या फिर रोजमर्रा की रूटीन में उसको यूज किया जाता था। लेकिन बदलते

0: समय और बदलती चीजों के दौरान सोना महंगा हुआ, चांदी महंगी हुई, और ये जो काम है ये मेटल के तारों पे शिफ्ट हो गया, जो कि इसे आज जो कारीगर इसको बनाने के लिए यूज कर रहे हैं वो मेटल के तार, जैसे हम जरदोजी कहते हैं, जर मीन्स गढ़ना, दोजी मीन्स करना, तो जरदोजी का मतलब बेसिकली बटुओं पे सुंदर मोती का और जरदोजी का काम करना है, जरदोजी वर्क। तो इस तरीके से ये हमारे कल्चर को जोड़े रखा और आज तक वो चलता हुआ आ रहा है, जिसको लोग मतलब पूरी दुनिया में से लेने आते हैं और यहाँ से लेकर जाते हैं स्पेशल भोपाल का समझ के, कि ये भोपाल की एक स्पेशल चीज है जो हमारे पास जरूर होना चाहिए।
1: ताजवर जी, अब जबकि जीआई टैग भोपाली बटुए को मिल चुका है, तो किस तरह से इसकी बिक्री में, इसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, इसका जो काम कर रहे हैं कलाकारों के जीवन में बदलाव आएगा, किस किस तरह के बदलाव आने वाले हैं?
0: मैं भी पिछले लगभग 17-18 सालों से इसमें काम कर रही हूँ। जो हम लोगों ने चैलेंजेस देखे एज अ डिजाइनर, मैंने चैलेंजेस देखे अपने कारीगरों के साथ, जो चैलेंजेस देखे वो ये था कि बहुत बार ऐसा होता था कि हम उतना काम करते थे, हम उतनी चीजें करते थे, लेकिन हमें उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं मिलता था। लेकिन मुझे विश्वास है और मुझे भरोसा है कि जब हमारा ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा, इंटरनेशनली हम इसको बेच पाएंगे, हम और डेफिनेटली एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि हमारा ODOP का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी हमें ख्याति प्राप्त है, जो कि हम जरी जरदोजी के नाम से जाने जाते हैं। अब बटुआ भी हमारा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा काम करेगा और हमें इंटरनेशनली पहुंचने में कोई तकलीफ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सरकार ने इसे GI टैग दे दिया है। GI टैग का मतलब ये होता है ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, जिसमें आप अपने मतलब बेसिकली अब ये एक ऐसी कला जो भोपाल के लिए फिक्स हो गई है, जो हमेशा नाम से जानी जाएगी कि भोपाल किस चीज़ के लिए फेमस है, तो नाम आएगा बटुआ। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है जो GI टैग से हम सबको मदद मिलेगी इस कला को आगे बढ़ाने में।
1: अब जो भोपाली बटुआ तैयार हो रहा है उनमें किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है, कितनी तरह के बटुए तैयार होते हैं, किस तरह की उनकी खास चीजें रहती हैं?
0: अगर विकास जी हम बात करें इसके मटेरियल की जो इसमें लगता है, जो कि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, इसमें सोने चांदी के तार पहले यूज होते थे, अब इसमें मेटल वायर यूज होते हैं। इसके साथ इसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए इसमें, जिसे आपने भी सुना होगा, सलमा सितारे, सितारे कटदाने, मोती, इसके अलावा हमारा जरी का धागा, ये सब इसमें यूज होता है। और ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, मतलब अगर मैं कपड़े की बात करूं तो जिसे मैं हम शनिल बोलते हैं, जिसे हम वेलवेट बोलते हैं आज के जमाने में, उसे वेलवेट बोलते हैं। जब ये पहले बनता था तो ये प्योर आता था शनिल, उस पे ये बनाया जाता था, क्योंकि क्या होता था, फैब्रिक सरफेस जितना थिक होता था ना, पर जब उस पर जरदोजी की जाती थी ना तो वो दब जाती थी, सेट हो जाती थी, तो वो ऊपर जब हाथ उस पर फेरो या फिर किसी चीज से वो टकराता था तो वो खुलता नहीं था। तो वो दबके का जो काम है, दबा हुआ जो काम है, वो बहुत खूबसूरत लगता है और बटुए पे खासकर वही चीजें की जाती हैं। और रही बात डिजाइनिंग और अलग अलग टाइप की, तो बटुओं में आजकल वेरिएशंस जो हो रहे हैं, पहले ऐसा था कि सिर्फ पोटली बैग्स बनते थे, आजकल तले वाली, राउंड तले वाले बैग्स भी बन रहे हैं, इसके अलावा आजकल खाके पर भी बैग बन रहे हैं, इसके अलावा उनके शेप्स चेंज हो गए हैं जिस पे वो काम हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि भोपाली बटुआ का जो स्टाइल है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसको कभी नहीं बदला जा सकता, और जो खूबसूरती उसमें है वो एक अलग ही बात है।
1: बिल्कुल ताजवर जी, भोपाली बटुए की तो बात ही कुछ और है, और अब GI टैग मिलने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि भोपाली बटुआ पूरी दुनिया भर में छाएगा और इन बटुओं पर काम कर रहे जो कारीगर हैं, जो शिल्पी हैं, जो फैशन डिजाइनर हैं, उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा और इसके साथ ही साथ भोपाल की विरासत दूर दूर तक पहुंचेगी।
0: थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच।
2: यानी तुम जा रही हो?
1: अभी आप सुन रहे थे डिजाइनर ताजवर खान से भोपाली बटुए को मिले GI टैग पर बातचीत। तो श्रोताओं, GI टैग मिलने के बाद इस काम से जुड़े हुए भोपाली कारीगरों की जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसमें काफी सुधार आने वाला है।

0: श्रोताओं, आज पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन राष्ट्र निर्माण, वित्तीय पारदर्शिता और आर्थिक सांख्यिकी आर्थिक विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट के अमूल्य योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में और विस्तार से हमें बता रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकुर जैन।
1: देखिए, ये हमारा 78th फाउंडेशन डे है। जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट इंडिया में जो आया था वो 1 जुलाई 1949 को आया था, और इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि ये हमारे देश की एक बहुत ही गरिमामय संस्था है जिसमें कि जो कि अटेस्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो रोल दिया गया है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया गया है, तो उनकी स्थापना क्योंकि एक कानून के तहत हुई थी इसीलिए इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इस डेट में ये कानून आया था, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इस देश को अपनी संस्था का फाउंडेशन के डे के रूप में मनाते हैं।
0: किस तरह से देश के आर्थिक विकास में या देश की औद्योगिक गतिविधियों में और अन्य गतिविधियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका होती है?
1: देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तो भूमिका बिजनेस और इंडिविजुअल्स के भी हर फाइनेंशियल क्षेत्र में होती है। बिना अर्थ के कुछ अर्थ नहीं निकलता। तो हम ये समझें कि अगर हम वैश्विक स्तर पे माने तो हर एरिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक रोल रहता है, लेकिन अगर आपके सवाल के हिसाब से अगर ये देखा जाए कि जो कॉरपोरेट्स में कहाँ कहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रोल प्ले करते हैं, तो पूरा फ्लो ऑफ फाइनेंस आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अधीन आ गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज में CFO जो नियुक्त होते हैं, जो कि उनके पूरे सारे फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करते हैं, भले वो लोन हो, भले पूरे कंपनी की अर्थव्यवस्था हो, ये सब कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ही अधीन हो गया है। इसके अलावा टैक्सेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पूरा रोल हो गया है। जो कंपनीज में सिस्टम्स बनते हैं जिसके तहत अप्रूवल्स होते हैं, जिसके तहत ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, ये सारी गतिविधियों पर भी आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नियुक्ति होती है, क्योंकि हर जगह पर पैसे का लेन देन और पैसे का फ्लो होता है, और बिना ऐसे व्यक्ति को एंगेज करे बगैर जिसको पूरे फाइनेंस का आइडिया हो, इस नज़र से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक्सपर्ट्स के तौर पर देखा जाता है। इसलिए उनका हर एरिया में आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है।
0: अंकुर जी, जो भी युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह से उन्हें प्रयास करना चाहिए, पहली सीढ़ी उसकी क्या है?
1: देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो ट्रेडिशनली जो हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उनसे बहुत हटकर चलता है। इसकी तैयारी पूरी तरीके से, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो आपका 12th क्लास के बाद होता है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी जो एग्जामिनेशन का जो स्कोप है वो आपकी 11th और 12th की पढ़ाई के आधार पर होता है। इसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट समय समय पर, जैसा कि दुनिया भर में फाइनेंस की एक्टिविटीज़ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उसके हिसाब से हमारे इंस्टीट्यूट हमारा कोर्स CA कोर्स को डेवलप करता जाता है, अपग्रेड करता जाता है। जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके से पूरे कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब

0: सीए तैयार होता है तो वो फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह निकल कर आए, और पूरा कोर्स जो है लगभग 5 साल का रहता है। सीए कोर्स आज की डेट में भी, इतनी महंगी पढ़ाई के दौर में भी, सबसे ज़्यादा सस्ते कोर्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पूरा कोर्स करस्पॉन्डेंस कोर्स रहता है। पूरे कोर्स में किसी भी तरीके की कोई एडिशनल फीस नहीं लगती है। आप आर्टिकलशिप जब करते हैं तो आपको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है, तो आप खर्च करने से ज़्यादा आप पैसा बनाते हैं, और आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पर इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं।
1: सीए का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसके बेहतर भविष्य की क्या संभावनाएं हैं जो सीए बन चुका है?
0: सीए कोर्स करने के बाद बहुत सारे विकल्प आपके पास खुल जाते हैं। जब आप सीए की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय पर भी आपको ये समझ में आता है कि आपके किस किस एरियाज में आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे सीएस डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब में चले जाते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं। बहुत सारे सीएस प्रैक्टिस में चले जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे सीएस ऐसे भी रहते हैं जिनको ये लगता है कि हम अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को और आगे दूसरी डिग्रीज को हासिल करने में लोग उपयोग में लाएं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल नॉलेज इतना रहता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल सर्विसेज में भी जाकर अपना योगदान देते हैं। बहुत सारे सीए फर्दर लॉयर बनकर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं जब उनको लगता है कि हमारे फाइनेंशियल नॉलेज और लीगल नॉलेज को कम्बाइन करके इकोनॉमिक लॉयर्स के तौर पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जब लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो वे इंडस्ट्री में अलग अलग डोमेन्स में जाते हैं। अलग अलग डोमेन से मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग टैक्सेशन में इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, कुछ लोग इंटरनल ऑडिट में चले जाते हैं, कुछ लोग सीएफओ लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ जहाँ पैसे का फ्लो होता है वहाँ वहाँ सीए की आज की डेट में भूमिका है। लोग अपने स्वतः अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से अपना एरिया चूज कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर एक डायमेंशन चूज कर लिया तो आपको उसी में रुके रहना पड़ेगा। बहुत ही डायनामिक फील्ड है, और कभी भी लोग शेयर मार्केट में भी जाते हैं क्योंकि जितने अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैलेंस शीट का एनालिसिस कर सकता है उतने अच्छे से और कोई नहीं कर पाता। तो आप देखिए, जितने भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहे हैं, जो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं, लोग आईआईएम्स में जाते हैं वहां पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी संख्या में जाते हैं आज की डेट में। तो ये एक ऐसा लॉन्च पैड है जिसके आगे बहुत सारे आयाम खुलते जाते हैं। जो
1: अभी आप सुन रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकुर जैन से बातचीत।

0: श्रोताओं, आमजन के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए निस्वार्थ प्रयास करने और मरीजों की जान बचाने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले चिकित्सक धरती पर किसी भगवान से कम नहीं हैं। इन चिकित्सकों के सम्मान में पूरे भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में आइए जानते हैं भोपाल के CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा से। शर्मा जी, पहले तो आपको राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी।
0: हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है?
1: 1 जुलाई को जो डॉक्टर BC रॉय थे, उनका जन्म और मृत्यु भी सेम तारीख को हुई थी, और ये काफी रिनाउंड डॉक्टर थे और साथ में वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे 1948 से 1962 तक के दौरान। उनका काफी नाम था।

0: के नाम से कई कॉलेज वॉलेज भी थे, शहर भी हैं, इनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है।
1: डॉक्टर लोगों की सेहत का ध्यान रखते हैं, लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस पर डॉक्टरों का फोकस रहता है। तो जैसे ही बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, इस धरती पर आता है, तो उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए किस तरह के काम होना चाहिए, किस तरह के टीकाकरण उसके लिए होना चाहिए?
0: हाँ बिल्कुल, आपको पता है जैसे डॉक्टर के साथ में ये रहता है कि जब हम लोग अपनी डिग्री पूरी कंप्लीट करते हैं उसके बाद से फिर हम लोग को काफ़ी लोगों का अपने सबका ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में जैसे कि आप बता रहे हैं टीका वगैरह लगाने के, तो कुछ होते हैं जैसे बीमारी हम लोग को जिनको जैसे कि हेपेटाइटिस बी वगैरह की होती है तो उसका प्रिकॉशन लगवाते हैं, प्रोफाइलेक्सिस हम लोग उनको इंजेक्शन लगवाते हैं, और भी कई प्रकार के होते हैं जिनके बचाव के लिए हम लोग उनको सीख दी जाती है। लेकिन अब आने वाले समय में अभी तो दूसरी चीज़ हो रही है कि डॉक्टरों को इसके साथ साथ मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित दिखे जा रहे हैं, बीपी के, डायबिटीज़ के, ऐसे भी डॉक्टरों में केस बहुत आयात में पाए गए हैं।
1: जब बात डायबिटीज़ और बीपी की हो रही है तो आजकल ये बीमारियां युवाओं में भी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इनसे बचने के लिए चाहे ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे डायबिटीज़ की बात हो, या

0: समय में अभी तो दूसरी चीज हो रही है कि डॉक्टरों को इसके साथ साथ मानसिक रूप से काफी ज्यादा पीड़ित दिखे जा रहे हैं, बीपी के, डायबिटीज के, ऐसे भी डॉक्टरों में केस बहुत आयात में पाए गए हैं।
1: जब बात डायबिटीज़ और बीपी की हो रही है तो आजकल ये बीमारियां युवाओं में भी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इनसे बचने के लिए चाहे ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे डायबिटीज़ की बात हो, या एक और बीमारी है जो तेज़ी से बढ़ रही है वो है थायराइड, वो भी युवाओं में तेज़ी से बढ़ रही है, तो इनसे बचने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
0: नहीं बिल्कुल, ये समय जितने भी हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ती बोलते हैं, इनका दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा प्रचलन पाया गया है, और जो इन्फेक्शियस बीमारी थी वो कुछ हद तक कम हो गई है, लेकिन ये लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही थी। इसका कारण ही है लाइफ स्टाइल में अपना बहुत ज़्यादा मूलभूत परिवर्तन आ गया है, कि खाने पीना, रहन सहन, आपका तनाव और एक्सरसाइज का कम होना, ये सब कुछ कारण है जिनके कारण से ये सब बीमारियां पाई जाती हैं। अगर हम इन सब चीज़ का समय रहते कंट्रोल कर लेते हैं तो हम लोग को इन बीमारियों से बच सकते हैं, और भगवान ना करे अगर किसी को वो भी आती है तो नियमित दया का दवा का उपचार करते रहें और डॉक्टर का से अपनी जाँच कराते रहेंगे तो इन बीमारियों से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं।
1: खास तौर पे जो बुजुर्ग होते हैं, जो वृद्धावस्था में लोग पहुंच जाते हैं, उस समय कई तरह की बीमारियां बुजुर्गों को घेर लेती हैं, और जो गंभीर बीमारियां होती हैं उसके ऑपरेशन और इलाज कराना भी उम्र के उस पड़ाव पर थोड़ा कठिन माना जाता है। तो बुजुर्गों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, किस तरह से वो सामान्य बीमारियों से बचे रहें और जो गंभीर किस्म की बीमारियां हैं उनको भी वो पास ना आने दें?
0: बिल्कुल, जैसे जितने भी हमारे बुजुर्गों से मेरी सलाह यही रहेगी कि जो अपने नियमित कार्य हैं उसको जहाँ तक हो सके करते रहें बिल्कुल, क्योंकि अपने हाथ पाँव चलते रहेंगे तो आदमी स्वस्थ बना रहता है। खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि उम्र के हिसाब से अपनी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, तो उस हिसाब से अपने शरीर और अपनी उम्र के हिसाब से अपना भोजन करें। और माननीय प्रधानमंत्री की ओर से एक बहुत अच्छी व्यय वंदना योजना चालू की गई है, 70+ वालों से सभी लोग अपना आयुष्मान बनवा लें। अभी भोपाल में भी करीब 37,000 लोगों का अभी बाकी रह गए हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा जो भी 70 साल से ऊपर है वो अपना मुफ्त में जाके आयुष्मान कार्ड भी बनवाएं और उसके योजना का लाभ लें।
1: आयुष्मान योजना में कितने रुपए तक के इलाज हो सकते हैं एक साल में?
0: जी, ये 5 लाख तक का है पूरा, एक अपने साल भर में उसका उपचार कर सकते हैं। आयुष्मान से एम्पैनल जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर जाके ये कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
1: और किस तरह की बीमारियां इसके अंदर कवर होती हैं?
0: काफ़ी हद तक बहुत सी बीमारियां कवर होती हैं, बस उसमें ये रहता है कुछ अस्पताल में कुछ कवर है, कुछ अस्पताल में कुछ कवर है। एक अस्पताल के अंदर सारी बीमारियां कवर होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए अलग अस्पतालों में अलग अलग प्रकार का एम्पैनलमेंट रहता है, उसमें बीमारियाँ कवर है, लेकिन काफ़ी हद तक जो बुजुर्ग में होती है बीमारियाँ वो कवर रहती हैं आयुष्मान।
1: जो भी युवा इस पेशे को अपना रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या डॉक्टर बनने के लिए कतार में आ गए हैं, वो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से ईमानदारी के साथ इस पेशे को में अपना काम करें?
0: ये एक बहुत एक नेक पेशा है, और मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी हमारे युवा आ रहे हैं इसमें दो ही उद्देश्य के साथ काम करें, कि एक तो ये सेवा का काम है, मानव सेवा का एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि अपने शास्त्र में बोला गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो आप सोचिए एक मनुष्य जाति को निरोगी रखने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग अपना हेल्प करते हैं, तो इस सेवा के भाव से आए। और दूसरी चीज़ ये है कि सीखते रहें हमेशा, क्योंकि मेडिकल साइंस एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपको लगातार सीखने को अवसर मिलता है, तो लगातार सीखते रहेंगे तो अपने पेशे में हमेशा आगे रहेंगे।
1: सर, हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर बातचीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक

0: एक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ESI अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक

0: संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
1: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
1: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। श्रोताओं, जब भी हम बात करते हैं या किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले इंसान की जो सूरत हमें दिखाई देती है और वो सूरत जो होती है वो उसमें एक रूप होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम पहली बार मिलते हैं, जिन्होंने हमारा कोई फ़ायदा नहीं किया, उसके बाद में भी हमें वो लोग अच्छे लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमारा कुछ भी बुरा नहीं किया, उसके बाद में भी वो हमें अच्छे नहीं लगते। दरअसल ये एक इंसान के अंदर की एक अटैचमेंट होता है जिसे ओरा कहा जाता है। ओरा हर इंसान का अलग अलग होता है, जिसमें उसके मिजाज का इंसान उससे मिलता जुलता होता है। यही हमारा विषय है आज के फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा पे, और हमारा विषय है रूप यानी सूरत। अब आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि यह खूबसूरत गाना।

इंसान की सूरत या रूप ईश्वर की अनमोल देन है। जी हाँ, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का सांवला, कोई व्यक्ति लंबा होता है तो कोई छोटा। हर इंसान की अपनी अलग पहचान है, विशेषता है। इसलिए ये कहना उचित नहीं कि खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग या आकर्षक चेहरे में है। आज के समय में लोग बाहरी सुंदरता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हों, लेकिन सोशल मीडिया, फिल्मों और विज्ञापनों में सुंदर दिखने की होड़ लोगों में भले ही लगी हो, लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन महंगे सौंदर्य प्रसाधन या फैशन या कृत्रिम सजावट को सुंदरता का पैमाना मान लेना यह भी बिल्कुल ठीक नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि बाहरी रूप समय के साथ बदल जाता है, लेकिन अच्छे विचार और उसकी सोच, व्यवहार, नेक चरित्र जीवन भर इंसान के साथ रहता है।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: अक्सर कहा जाता है और बात सच भी है कि सूरत से ज़्यादा सीरत कीमती होती है। अगर कोई इंसान या व्यक्ति जिसका स्वभाव बहुत ज़्यादा मधुर है, व्यवहार बहुत अच्छा है, दिल का इंसान है और नरम दिल है, और वो साधारण रंग रूप का होने के बावजूद भी सबका चहेता बन जाता है, और इसके उलट अगर कोई इंसान देखने में भले ही कितना ही खूबसूरत हो और उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अहंकारी हो, उसमें गुरूर हो, मगरूरियत हो और स्वार्थी हो, तो उसकी सुंदरता भी काम नहीं आती, वो लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता। तो हम गीत सुनेंगे, बाद में पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
5: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
4: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन

0: के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: πολύ από σένα.
1: हमारे समाज में कई बार रूप और शारीरिक बनावट के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव हो जाता है। ये एक गलत तरीका है। हर इंसान को समान सम्मान मिलने का अधिकार है। किसी का रंग, कद, चेहरे का या शरीर की बनावट का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, न उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहिए, बल्कि समाज में हीन भावना और असमानता को बढ़ावा देना रोकना चाहिए। इसलिए इंसान जब भी मिले तो अपने विचारों को व्यक्त करे, विचारों से हमें तालमेल होना चाहिए, उसकी बाहरी शक्ल से नहीं, क्योंकि विचार हम खुद सुधार सकते हैं, जबकि शक्ल, कद, काठी और रहन सहन

0: पीला रंग चुराया तूने पीली सरसों से,
1: पीला रंग चुराया तूने पीली सरसों से।

हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब में सुंदरता का संबंध केवल चेहरे से नहीं बल्कि विचारों से है, संस्कारों से है, आचरण से है। महान व्यक्तियों ने हमेशा आंतरिक सुंदरता, करुणा, ईमानदारी, प्रेम, सौंदर्य और सेवा भाव, दूसरों की खिदमत, इसी को सबसे बड़ा आभूषण या जेवर बताया। मधुर वाणी यानी अच्छा बोलना, मुस्कान यानी लोगों को देखकर आप मुस्कुराएं, उनको देखकर अगर आपको किसी से मिलकर खुशी होती है तो लाजमी है कि सामने वाला भी आपको देखकर खुश होगा। लेकिन अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं और आपके चेहरे पे उदासपन है तो लाजमी है कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी किसी से मिलें तो चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, ऐसी हो कि मिलकर खुशी महसूस हो। यही ज़िंदगी का सार है और यही खूबसूरती का राज भी है।

0: इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सफेरा। इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे इस घंटे की खास खबरों के बाद।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। भारत की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। महोत्सव में कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने

नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून तक प्रदेश भर में 5,48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में प्रवेश में 42.03% की रिकॉर्ड वृद्धि है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दोस्तों, जब बात होती है सूरत की तो सूरत से ज़्यादा सीरत पर अक्लमंद लोग गौर करते हैं, जबकि जो जिनमें अक्ल की कमी होती है वो सिर्फ सूरत देखकर मुतमईन हो जाते हैं या संतुष्ट हो जाते हैं किसी के बारे में ज्ञान या किसी के बारे में जानकारी लेने में। आखिर में हम ये बात निष्कर्ष निकालें कि रूप और सूरत ज़िंदगी का केवल एक पक्ष है, वास्तविक सुंदरता या खूबसूरती की पवित्रता जो मन की पवित्रता से जुड़ी हुई है, अच्छे संस्कार, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और उत्तम चरित्र में शामिल होती है। यानी कि आपके अखलाक बहुत अच्छे होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये चरित्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें कभी भी किसी का मूल्यांकन केवल उसके चेहरे को देखकर या रंग रूप को देखकर नहीं करना चाहिए। यदि हम अपनी सूरत और सीरत को सुंदर बनाएं तो हमारी सूरत भी अपने आप प्रभावशाली दिखाई देने लगती है। यही तो सच्ची सुंदरता है, जो समय के साथ कम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा निखरती है।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: So, your place or mine?
2: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
1: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

दोस्तों, अगर चेहरे की रौनक बढ़ानी है तो सिर्फ एक ही काम सबसे अच्छा है। केवल चेहरे के सौंदर्य पर ध्यान न देते हुए अच्छी सोच, मुस्कान, सादगी, सेहत, खुश मिजाजी को बढ़ाइए, संतुलित आहार लीजिए, अपने आप आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, आपकी चमक चेहरे पर अपने आप उतर आएगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिल की खूबसूरती चेहरे पर नज़र आने लगती है, सिर्फ थोड़ा ख्याल बदलने की ज़रूरत होती है।

अभी आप सुन रहे थे सुरमई सवेरा, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं आशुतोष पाठक, उनके गाए गीत सुनिए।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशुतोष पाठक के गाए गीत। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में।
1: नमस्कार, कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम चर्चा करेंगे भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक वस्तु और सेवा कर यानी GST पर। GST ने देश की कर व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ शुरू हुई ये व्यवस्था आज भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। आपको बता दें कि GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये सुधार केंद्र और राज्यों के अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने के उद्देश्य से लाया गया, जिससे कर प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनी। GST लागू होने के बाद व्यापार, उद्योग, उपभोक्ताओं और सरकार सभी पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसकी उपलब्धियां क्या रहीं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आगे इसकी क्या संभावनाएं हैं, इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनीष शर्मा, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। आप IEHE भोपाल में पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर।
2: धन्यवाद मैडम।
1: और हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री संजय वर्मा, GST एवं कर मामलों के एडवोकेट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम।
1: कार्यक्रम की शुरुआत मनीष सर आपसे करते हैं। पहला सवाल, हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि GST लागू करने की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस हुई।
2: सबसे पहले मैं ये बताऊं, जब 1 जुलाई 2017 के पहले GST के बदले पहले तरह तरह के टैक्सेस सिस्टम थे, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटी लगता था, ऑक्टराय लगता था और भैट लगता था। तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता था, इसको फाइल करना भी ज़रा कठिन होता था। और सबसे बड़ी बात, कलेक्शन के बाद में जो सेंट्रल स्टेट में जो अपने वित्तीय ढांचे के तहत जो डिवीज़न ऑफ रेवेन्यू होता था वो ज़रा कठिन हो जाता था और बड़ा असंतोष सा रहता था और संघीय ढांचा के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो उसी समय से इस बात को बल दिया जाने लगा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते एक देश एक कर की पद्धति पर प्रणाली पर चले। दुर्भाग्यवश उस समय उसको लागू नहीं किया जा सका, लेकिन बहुत मंथन के बाद में जाकर के 2017 में फिर ये GST हमारे यहाँ लागू किया गया।
1: सही कहा सर। संजय वर्मा सर, GST आने से पहले कर व्यवस्था किस प्रकार थी, यानी कैसी थी और इसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी, चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से समझाएं।
3: जैसे कि सर ने बताया अभी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, थोड़ा इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स में कोई छेड़ नहीं हुई है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते थे, जैसे कि पहले वेट होता था, उससे पहले सेल्स टैक्स होता था, तो वेट, कस्टम ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो एक्साइज ड्यूटी, इन सभी टैक्सेस को मिलाकर एक राष्ट्र और एक कर का जो नारा लेकर आया था, उन सब टैक्सेस को मिलाकर ही GST किया, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से किया है। और इसके आने से हमको ये फ़र्क पड़ा, पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे सभी के, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सबसे संपर्क करना, सबसे रिटर्न फाइलिंग अपने अपने जो उनकी कंप्लाइंसेज है वो सब करना, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नॉलेज के लिए आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उसकी चूँकि एक्ट ही अलग था। अब जब सब एक्ट को मर्ज किया, एक GST लेकर आए, तो हर तरीके से, चाहे व्यापारी हो चाहे वो कंसल्ट

0: प्रेसिडेंट वर्ग हो चाहे एक कोई भी वर्ग हो, सबके लिए ऐसा नहीं हुई, सब एक ही उसमें लेकर आने पर कंबाइन करके फिर उसको टैक्स किया।
1: उपभोक्ता को भी पारदर्शिता मिली, क्योंकि उस समय जो 17 डिफरेंट सेंटर्स थे तो उस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्थिति बन चुका था। धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती जा रही वो बड़ा कठिन सा समस्या बनता जा रहा था।
2: जी बिल्कुल सही कहा सर। सर क्या आपको लगता है कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा व्यवहार में सफल रही है?
1: बिल्कुल, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आंकड़े तो ये कह रहे कि आप देखिए अप्रैल 2026 में ही भारत ने इतिहास रच दिया। अकेले एक महीने में 2,42,00,00,000 रुपये का कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से हुआ। मई में भी 1.94 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो 2017 में जब जीएसटी कलेक्शन शुरू हुआ था तब औसत कलेक्शन 85,000 करोड़ रुपया जाता था, जो 90,000-85,000 ऐसा, उसके पहले इससे भी कम। तो जब से जीएसटी आया और हम सिंप्लीफाइड तरीके से यूनिफाइड तरीके से इसको आगे बढ़ते गए तो कलेक्शन भी हमारा बढ़ा, व्यापारियों का भरोसा भी शासन पर बढ़ा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलेक्शन है रेवेन्यू वो भी हमारा बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हो पाया। जो असंतोष था राज्यों के बीच वो भी घटा। तो जीएसटी अगर हर एक दृष्टिकोण से, कलेक्शन के दृष्टिकोण से देखें या वित्त और संघ, वित्त और राज्य और संघ के बीच में जो डिस्प्यूट के दृष्टिकोण से देखें, व्यवसायियों के विश्वास के दृष्टिकोण से देखें, उपभोक्ता के विश्वास के दृष्टिकोण से देखें, तो हर दृष्टिकोण से, हर डायमेंशन से, हर एंगल से ये सक्सेसफुल पद्धति कर प्रणाली है जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
2: वाकई मनीष सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीएसटी आने के बाद कर के कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है। संजय वर्मा सर, जीएसटी लागू होने के बाद कर संग्रह में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, इसके पीछे के प्रमुख कारण आपसे जानना चाहेंगे।
0: इसके पीछे सबसे पहला कारण जो मैं इसमें कहना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले जो होता था, जो अलग अलग टैक्सेस थे उनका मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम में जो रिटर्न्स मैंने फाइल किया, जो फिगर्स मैंने दिए, उस पर कई बार गवर्नमेंट को भरोसा ही करना पड़ता था। कुछ केसेस में जहाँ की बहुत ज़्यादा डाउट होता था तो वो सर्वे या इस तरह की एक्टिविटीज़ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे, अदरवाइज़ तो उनको व्यापारी पे भरोसा करना पड़ता था। लेकिन जैसे जीएसटी चालू हुआ तो जीएसटी के बाद पूरी तरह से AI बेस्ड है ये, इस तरह से इनका क्या GST प्लस कस्टम प्लस IT तीनों सॉफ्टवेयर कम्बाइंड है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स में गई है वो GST में भी रहेगी, कस्टम्स में भी रहेगी। मान लीजिए आपका कोई बाहर से माल आया है या कोई भी आपने जो वो सब चीज़ कम्बाइंड होने से गवर्नमेंट के पास भी इन्फॉर्मेशन पूरी रहती है और व्यापारी भी इस बात से क्लियर रहता है कि उसको भी किस तरह डाउट नहीं रहता। वो अगर कोई चीज़ बाई चांस इंटेंशनली नहीं छूट रही है, अनइंटेंशनली भी छूट रही है, तो वो उसको याद करके उसको कम्बाइंड करके रिटर्न में अपने शो कर सकता है।
1: सर्विलियंस बढ़ रहा है और सर्विलियंस बढ़ने से आपका ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ रहा है। जैसे आप जानते हैं कि GSTN जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है उसके कारण ये सिस्टम एक सेकंड में लाखों इनवॉइस को प्रोसेस करता है और टैक्स चोरी रोकने में सरकार ने ई इनवॉइसिंग जो काम कर रहा है जिसके कारण बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो रियल टाइम में सरकारी पोर्टल पर बिना बिल जनरेट किए ये काम कर सकता है। तो इस तरह की जो प्रावधान GST में आजकल GSTN के कारण हो रहा है तो इसके कारण अब सुविधाएं हर के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। और बार बार एक ही बात को कहना कि हमारा GST बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि।
2: जी सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि डिजिटल टैक्स सिस्टम, ई इनवॉइस, ई वे बिल जैसी व्यवस्थाओं ने पारदर्शिता बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, आप देखिए मैंने पहले भी कहा कि जब सेकेंड्स में लाखों इनवॉइस प्रोसेस होता है जो पहले नहीं हो पाता था, ये GSTN के कारण ही हो पाया है। और इसके कारण जो हम 5 करोड़ से जो ज़्यादा का इनकम है उसको रियल टाइम में हम मैनेज कर पा रहे हैं और 5 करोड़ से कम वाले को रियल टाइम में निकल उनको भी मैनेज इस नेटवर्क के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो इसके कारण कोई भी जो सप्लायर साइड है या फिर रिटेलर्स हैं ये कोई भी इससे बच नहीं पा रहा है क्योंकि GST आपने एक बार आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब GST के पोर्टल पर आ जा रहा है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी, जैसा सर ने बताया कि GST और टेक्नोलॉजी और टैक्सेशन जो सिस्टम है ये सब इंटीग्रेटेड रूप में काम करके इसको बहुत ही ज़्यादा वायबल और आपको कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। शब्द प्रॉफिटेबल सही नहीं शासन के लिए, लेकिन फिर भी
0: प्रॉफिटेबल ही कह सकते हैं क्योंकि एक सबके हिसाब से सबको सुविधाजनक है, सब लोग उस पर कर सकते हैं काम।
2: जी जी, संजीव वर्मा सर, क्या GST का प्रभाव

0: विदेशी निवेश और इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी देखने को मिला है?
1: बिल्कुल मिला है। जब तक कि हमारी कर प्रणाली पारदर्शी नहीं होगी, जब तक बाहर के लोगों को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, टैक्सेशन हमारा अगर हायर रेट होगा तो बाहर की कोई भी हम किसी को भी बुला नहीं सकते, क्योंकि उसको सबको मालूम है कि वहाँ टैक्स हमारा कम लगना है। अभी भी कई कंट्रीज़ में देखा जाए तो हमारे यहाँ से कम टैक्स है, लेकिन फिर भी हम उनके रेशो के हिसाब से देखा जाए, रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो हम काफ़ी ऊपर हैं, हमारे सबसे कम रेट हैं, तो हम उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अगर हमारा ज़्यादा रेट होगा टैक्स का तो हम नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को।
2: मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ, एक बड़ी दिलचस्प सा आंकड़े जो दिखने को मिल रहे हैं आजकल, जो है इम्पोर्ट लेट जो विदेश मतलब कि विदेशों से आने वाले सामानों पर मिलने वाला टैक्स जो है, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि इससे देखिए 19 से 22% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। और एक मजे की बात है कि रियल इस्टेट सर्विसेज में टैक्स कलेक्शन 50% और होटल रेस्टोरेंट मैंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 41% से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। इसका मतलब लोग खुलकर खर्च कर रहे हैं और विदेशी जो इम्पोर्टेड सामान आ रहा है उस पर भी लोग खर्च कर रहे हैं, जिससे कि जो तो मैंने हम विदेशों का निवेश भी और विदेशों में निवेश भी दोनों से हमारा जो है GST बढ़ रहा है।
0: सर आप ये जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान GST ढांचे में अभी भी कुछ सुधारों की आवश्यकता है जिनसे सिस्टम और बेहतर हो सकता है और उद्यमी और करदाताओं को फायदा मिले?
1: अभी जो सुधार हुआ अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि जब GST आज से 9 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, उसकी व्यवस्था के और आज की व्यवस्था में काफ़ी कुछ फर्क हुआ। जैसे कि पहले 5 रेट ऑफ टैक्स होते थे, 5, 12, 18 और 28, अब रेट ऑफ टैक्स ही कुल स्लेब ही 2 कर दिए, 5 और 18, बाकी एक हायर स्लेब की बात नहीं कर रहे हैं वो कुछ आइटम्स पे। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती थी, रेट ऑफ टैक्स कम हुए, जैसे कि कई आइटम ऐसे थे जो 12% वाले रेंज में आते थे, तो 90% आइटम ऐसे जो 12% से कम होके 5% की रेंज में आ गए। तो एक तो ये फ़र्क पड़ा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डीजल पेट्रोल है जो कि GST से बाहर है, सुधार की आवश्यकता की अगर बात करते हैं तो डीजल पेट्रोल को भी हमको इसमें शामिल करना चाहिए, करेंगे तो इस पे भी फर्क पड़ेगा, काफ़ी इकोनॉमी पे अंतर है।
0: मनीष सर आपकी क्या ओपिनियन है इस मामले पर?
2: मेरा इसमें ऐसा कहना है कि ये ट्रायल एरर है, क्योंकि GST जब लागू किया गया था उसमें बड़ा हंगामा हुआ था संसद में कि अभी ये फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ, टेक्नोलॉजी बदलने के साथ, फैशन ट्रेंड वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के साथ साथ चेंज होने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कोर्ट केसेस से आपने देखा होगा कि जो ऐसे ऐसे सवालों को जवाब देने पड़े जिससे आपको हंसी आती है। जैसे मान लीजिए परोठा बनाम रोटी, रोटी पर आपका टैक्सेशन 5% है, रोटी सिर्फ 5% टैक्स लगना चाहिए GST, अथॉरिटी ने कहा नहीं परोठा और रोटी में बराबर नहीं, रोटी में 5% लगेगा लेकिन परोठा लग्जरी है,
1: घी लगेगा एक्स्ट्रा उसमें इसलिए लग्जरी है।
2: तो ये उस समय लागू करते समय ऐसा नहीं सोचा गया। चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें जो आप रॉ लेके आ रहे हैं तो उसमें 0% है, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसमें फिर आपको 5% GST लगता है। तो ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ऐसे जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब लागू की गई थी तो इस तरह के एनोमली आ सकता है, ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं तब हमें समझ में आता है। और बहुत सारे कोर्ट केसेस है, बहुत सारे RTI लगे हुए हैं जिसके कारण और सुधार आ रहा है, और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, किसी दिन नहीं कह सकते कि आज हम फुल प्रूफ। हमारा
1: अपडेशन तो होता ही रहता है हर चीज़ में, कई चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसमें कि अगर उसको करें तो रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग, पहले अपील फाइलिंग मैनुअल होती थी, फिर अपील फाइलिंग होगी, रिटर्न फाइलिंग, इवन अब हियरिंग भी वर्चुअल होने लगी है। पहले हियरिंग के लिए डिपार्टमेंट में जाना है, डिपार्टमेंट जाने में कई प्रॉब्लम्स आती थी, कुछ अपने इश्यूज आते थे, अब जब से वर्चुअल हियरिंग होने लगी तो हमको फिर डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं, हम अपने बैठे काम कर सकते, टाइम की बचत होती है, प्लस हम अपना काम और ढंग से कर पाते हैं, तो वो फर्क पड़ता है।
2: गब्बर सिंह टैक्स, और इसको कहते हैं VIP, जो सर ने कहा कि डीजल पेट्रोल और शराब ये VIP मेहमान है, क्योंकि राज्य शासन नहीं चाहता ये GST के दायरे में आए, ये राज्य शासन खुद के दरों से ही इसका नियंत्रण, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्हीं से आता है। तो ये जो सुधार की बात कह रहे हैं, सुधार होना चाहिए लेकिन कब होगा कैसे होगा ये बड़ा प्रश्न है।
0: संजय सर, चूंकि आप GST एडवोकेट हैं इसलिए आम जन के ओर से आपसे जानना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा देखने को भी

0: मिलता है कि जीएसटी टाइम पर दिया गया है फिर भी ईमेल्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है?
1: ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कई जगह आ जाती है। वैसे तो जो मैंने देखा है 75 क्या बल्कि 90% तो ऐसा होता है जिनमें कि अगर नोटिस आया है या इनकम टैक्स से कोई मैसेज आया कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं चूके हैं। लेकिन कुछ केसेस में हुआ है कि जिनमें रिटर्न फाइल आपने कर दी लेकिन उनके डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं हो पाई, तो उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन वहाँ फिर एक सिस्टम है कि जैसे आपने उनको बता दी कि हमने इस तारीख को फाइल कर दी, आपके पास भी रिसीट होती है, आपने बता दी कि हमने इस तारीख को फाइल कर दी, तो फिर उसको कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर परसेंटेज में तो ये है कि अगर नोटिस आया तो आप ये मान के चलिए कि आपकी रिटर्न में फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम है। कहीं कुछ बहुत सारी स्टेप्स होती है, लोग क्या करते हैं रिटर्न फाइल करी, वो मान लेते हैं फाइल वो स्टाफ रहता है जूनियर रहते हैं, कई बार फाइल कर दी उसका वेरीफाई करना होता है, अब वेरीफाई करना छोड़ दिया तो फिर वो स्टाफ समझ लेता है हमने फाइल कर दिया, या जो उपभोक्ता होता है व्यापारी होता है वही समझ लेता हम तो फाइल कर चुके, पता लगा कि वो वेरीफाई नहीं कर पाते, रिटर्न रह जाती अधूरी रहती, तो उसको भी इनकम्प्लीट रिटर्न मान के नोटिस आया।
0: तो उम्मीद है कि जो भी श्रोता इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे होंगे उन्हें ज़रूर इसका समाधान मिला होगा आपके ज़रिए। मनीष सर, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए शुरुआती दौर में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई?
2: देखिए, छोटे व्यापारी शुरुआत पे ऐसा है कि वो समझ ही नहीं पाए जीएसटी है क्या, और इसमें चूंकि आईटी जुड़ा हुआ है तो आईटी के जुड़ते साथ ही ऐसा एक मानना हो जाता है कि जो अनपढ़ है, जो छोटे किसान है, छोटे व्यवसायी है, वो कैसे जीएसटी फाइल करेंगे, उनको एक अलग से आदमी रखना पड़ेगा जो उनके प्रॉफिटेबिलिटी को घटा देगा, तो ऐसे बड़ा अड़चन उनको एक बड़ा अलग सा, क्योंकि ऐसे में उनको पहले जो सिस्टम था उस सिस्टम में उन्होंने जितने रुपए का बिजनेस किया उस पर वो टैक्स दे के चले आते थे, अब ये पूरा आईटी इनेबल्ड काम गतिविधि हो गया, तो ऐसे में उनको अड़चन आते रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब तो 10 साल होने को आ गए, तो अब इस तरह का अड़चन जो व्यवसायी वर्ग है वो नहीं सोचता, वो गब्बर सिंह नहीं बोलता है।
1: पहले इसमें मैं एक बात तो जोड़ना चाहूँगा, एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई जो होता है बड़ा इनिशियल स्टेज वाला बिजनेस है, मतलब बहुत छोटा छोटा बिजनेस होता है, उसमें उनके कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो लोग इस बात से बचना चाहते हैं कि वो टैक्स, पहले का नियम ये था कि टैक्स से बचना चाहते थे, क्योंकि मुझे अगर मान लो किसी से परचेज करना है और जिसके पास टैक्स का बिल देगा तो मेरे भी एक नंबर में शो होगा, पहले एक नंबर दो नंबर बहुत चलता था, अब जब से ये सिस्टम आ गया कि सभी को बिल लेना कंपलसरी है, बिल देना कंपलसरी है और वन टाइम टैक्स लगता है, पहले वो अलग अलग पॉइंट पे हर पॉइंट पे टैक्स लगता था, तो अब वन पॉइंट पे टैक्स लगता है तो बिल देना ईजी हो गया, बिल लेना ईजी हो गया, तो वो वाली जो प्रॉब्लम होती थी वो खत्म हो चुकी है, क्या लोग एम एस सी बच्चे कह रहे हैं वो मैं जीएसटी में अगर नंबर ले लूँ तो लोग मुझसे परचेज ना करेंगे, अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है, तो अब सभी को देना है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती,
2: ट्रैकिंग भी हो जाता
1: है, ट्रैकिंग भी हो जाता है,
2: और एमएसएमई वालों को सरकार की तरफ से जीएसटी कैसे भरा जाता है इसका समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो अब उस तरह की समस्या एमएसएमई सेक्टर को नहीं है।
0: संजय सर, जीएसटी रिटर्न और अनुपालन प्रक्रिया पहले की तुलना में और कितनी सरल हो गई है?
1: अगर पहले की बात करें तो पहले तो जो रिटर्न फाइल होती थी वो तो मेन मतलब ऑनलाइन ही होती थी, बाकी इसके अलावा जो अनुपालन की बात, पूरे प्रोसेस जो था, हमको अगर डिपार्टमेंट से नोटिस आया तो डिपार्टमेंट जाकर रिप्लाई देना है, वहाँ पेपर सबमिट करना है, जब से जो नया जो GSTR जो नया चेंज किया है, GST 2 जो रिफॉर्म्स लिया है उसके उन्होंने ये चेंज कर दिया कि टोटल ऑनलाइन काम है, मैनुअल कोई काम है ही नहीं, हमको डिपार्टमेंट में अगर चाहे तो हमको डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत है, झांकने की जरूरत नहीं है किसी ना किसी एडवोकेट को, ना कंसल्टेंट को, ना सीए को और ना ही किसी उपभोक्ता को, वो पूरा काम अपने घर बैठ के अपने लैपटॉप पे, इवन अगर उसके मोबाइल उसके पास वो है तो मोबाइल पे भी कर सकता है, अभी हर एक चीज़ के लिए उसको ई वे बिल के लिए इसके लिए किसी के पास जाना, तो उसके पास ऐप दिया हुआ, ऐप में वो सब काम कर सकता है। और जैसे अपील फाइलिंग मैंने बताया था, अभी पहले ही बताया था कि अपील फाइलिंग के लिए पहले फाइल करने के लिए जाना पड़ता था डिपार्टमेंट में, फिर हियरिंग होती थी, अब अपील फाइल भी हम अपने डेस्क अपने टेबल पर बैठ के कर सकते हैं और हियरिंग भी हम अपने ही सीट पर बैठ के कर सकते हैं, हमको कहीं डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है।
2: बिल्कुल, बहुत छोटा सा, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और रियल टाइम जो बिल जनरेट कराना है बहुत कम समय में, मतलब आपको ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय, आधा दिन एक दिन पूरा बैठ करके, ऐसा नहीं है।
1: अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो मेरे ख्याल से विद इन मिनट्स आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि GST आने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई, आप घर बैठे अपने सिस्टम से ही सब कुछ कर सकते हैं। मनीष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अलग अलग टैक्स स्लैब को भविष्य में कम किया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है?
2: कम किया जाना चाहिए, तो मैं अभी

0: कुछ नहीं कह सकता इस पर, क्योंकि
1: जी
0: अभी ही जो है वो कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कम करने से किस किस कैटेगरी में कम करेंगे? अभी जो है 0% जो है एसेंशियल गुड्स के लिए, 5% है, 18% और 3% जो रखा गया सोना चांदी के लिए रखा, वो एक्सेप्शनल है। तो ऐसे में गुंजाइश कहाँ होता है इसको और कम करने का?
1: जी
0: तो डिमांड जरूर उठ रहा है, हम तो चाहेंगे एज ए कंज्यूमर कि
1: जी
0: हमारे ऊपर जीएसटी कम से कम लगे, लेकिन
1: जी
0: शासन जरूर चाहता है कि वो किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाए। तो जो लग्जरियस गुड्स पर जो टैक्स है वो तो लगेगा ही लगेगा। अलबत्ता जैसा सर कह रहे थे कि शराब और पेट्रोल डीजल को भी इस परिधि में लाना चाहिए, तो वो लाने से तो ये और बढ़ जाएगा, स्लैब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भले उसका टैक्स उसका रेट ये 18 नहीं रहेगा, उससे 40 भी नहीं रहेगा, 18-40 के
2: बीच
0: बीच
2: का
0: में
2: कोई हो
0: रहेगा,
2: सकता है
0: तो
1: जी।
0: वो लाने से शायद बढ़ जाए, एक स्लैब और बढ़ जाए, घटने का तो सवाल नहीं उठता, और ना ही मेरे को लगता है, क्योंकि हमें बजट में पैसा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, तो वो जनरेट करने के लिए जो फिजिबल तरीके जो रेट्स है वो यही है ऐसा लग रहा है।
2: मनीष सर, अभी आपने कुछ बहुत रोचक तथ्य बताए थे कि जब आप बेसिक्स लेते हैं तो उन पे जीएसटी बहुत ही मिनिमम या फिर नहीं होता है, जब हम लग्जरी की ओर बढ़ते हैं तो हमें अच्छा टैक्स पे करना पड़ता है। तो चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों से अवगत कराएं।
0: जैसे मान लीजिए कि आपको कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है बाहर, तो आपको कॉफ़ी में एक कॉफ़ी को भी एक जैसा नहीं, चाय और कॉफ़ी को भी एक जैसा नहीं समझा जाता है।
1: जी
0: अगर आप दुकान से चाय पत्ती और कॉफ़ी बीन्स खरीद के लाते हैं तो सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन
1: जी
0: जैसे ही आप किसी कैफ़े में जाकर बनी बनाई कड़क चाय या एक्सप्रेसो ऑर्डर करेंगे, तो वो सामान्य गुड्स से सेवा सामान गुड्स और सेवा बढ़ के 18% हो जाता है।
1: जी
0: उसी तरह से एसी रेस्टोरेंट और नॉन एसी रेस्टोरेंट में कोई अंतर
1: जी
0: नहीं है, लेकिन वो सर्विस के नाम पर आपको एसी सर्विसेज दे रहे, तो उसका बिल, तो वो टोटल बिल पर एसी सर्विसेज देने का जो बिल है उस बिल पर फिर 18% आपका लग्जरी टैक्स लग जाता है, और नॉन एसी वाले में सर्विस में एसी का चार्ज नहीं लगाते हैं, बिल में हालांकि नहीं लिखा रहता है कि एसी का चार्ज लगाया, वो सर्विस लिखते हैं। तो इस तरह से कई जगह आपको हमारे लग्जूरियस लाइफ स्टाइल या कंजम्पशन के कारण टैक्स रेट का चेंज होता है और हमको ज़्यादा पैसा।
2: संजय सर, आम करदाताओं और व्यापारियों के लिए आपका क्या संदेश है?
3: मैं उनको सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि अब वो टाइम ख़त्म हो गया कि अगर हम कोई ऐसा सोच के चल रहे हैं कि हमारी कोई हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज हमारी कुछ भी हो रही है और वो हम छुपा पा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारी हर चीज़ की, इवन हमारा बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, हमारा कोई हम परचेस करते हैं कोई छोटी चीज़, हम कार परचेस कर रहे हैं जिसपे कि हम टैक्स नहीं दे के आते हैं, कोई परचेस कर रहे हैं कोई ऐसी भी चीज़ जिसमें हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी हर एक्टिविटीज़ जो है नज़र में है एआई के थ्रू या किसी भी तरीके, उसको हम ये भूल ना करें कि हम उसको छोड़ देंगे, नहीं, ये तो किसी को मालूम नहीं है, ऐसी भूल ना करें, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर बना रखें सिस्टम कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया तो मुझे ने रिसीव किया है मुझे, पहले कई लोग क्या करते थे, आज अभी ख़त्म हो गया, कि जैसे एक शॉप है, शॉप पे दो क्यूआर कोड लगा रखे हैं, एक उनने खुद का लगा रखा है, एक बच्चे का लगा दिया, उनको मेरा अकाउंट चलता नहीं है, मेरे अकाउंट में ऑपरेट नहीं हो पाता, या कि कोई प्रॉब्लम, बुजुर्ग हैं प्रोवाइडर एजेड है नहीं चला पाते, तो उन्होंने बच्चे का लगा दिया, अब बच्चे जो लगाए वो तो जो फिगर बच्चे के उसमें आए वो उन्होंने छोड़ दिया, जो उनका खुद का था कैश फिगर रिटर्न फाइल कर दिया। अब इन डिपार्टमेंट जीएसटी ने नोटिस दिया डिपार्टमेंट ने कि आप ये बच्चे के अकाउंट में सेविंग अकाउंट में इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो आराम से समझ में आ जाता है कि वो ट्रांजेक्शन किसी शॉप का ही है, टुकड़ों टुकड़ों में रहता है, डेली डेली रहता है, तो जब पूछा तो पता लगा उसके 20-40 लाख रुपये उसके ट्रांजेक्शन हो गए इस अकाउंट में। इस तरह की भूल कई लोगों ने करी, तो इस तरह की भूल ना करें। अगर आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर का अकाउंट यूज़ वैसे तो करना ही नहीं चाहिए अपनी शॉप पे दूसरे का यूज़, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी या तो अपने साथ पार्टनर बना लें या उसका भी नाम से कोई आपका शॉप होनी चाहिए जो आप इनकम टैक्स में जीएसटी में आप शो कर पाएँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती, कई लोगों को इस चीज़ के कारण नोटिसेज आए।
2: मनीष सर, आने वाले 5 वर्षों में जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिल सकते हैं?
0: सबसे पहले तो बजट में हमारा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो एक्सपेंडिचर की संभावना हमारी बढ़ेगी, जिससे कि जिस तरह से हम जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना कर रहे हैं, वो परिकल्पना तभी हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं जब हमारा रेवेन्यू बढ़े, और रेवेन्यू बढ़ने के कारण हम अपने बजट में एक्सपेंडिचर का प्रावधान रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगले जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा तो लोगों को ये समझ में आएगा कहाँ हमें पैसा खर्च करना है, कहाँ हमें पैसा बचाना।

है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि बुनियादी चीज़ों में 0% टैक्स है। तो जो जैसे बिना ब्रांड वाला अगर खुला अनाज लेते हैं, जैसे ताज़ी सब्जियां ले लिए, चावल दाल गेहूं ऐसा कुछ भी लिए, दूध लिए, लस्सी लिए, यहाँ तक कि हाथ से बने मिट्टी के दिए, झाड़ू भी लिए, तो वहाँ पर ये टैक्स फ्री है। लेकिन जैसे जैसे हम ब्रांडेड की तरफ बढ़ेंगे, इन्हीं आइटम्स को अगर हम ब्रांडेड आइटम्स खरीदेंगे तो हमारा टैक्स बढ़ेगा। और कुछ जगह है, कुछ जैसे आपने MSME कहा, तो कुछ MSME सेक्टर में भी हैंडमेड, जैसे चंदेरी की साड़ी है तो मिल से अगर बन रही मशीन से, तो उसमें GST बढ़ेगा, और जो हैंडमेड है उस पर GST नहीं रहेगा। तो हम 5 वर्षों में अपने

0: किस टेक्निक को हम यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें प्रोग्रेस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देखना है। तो एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट को दे पाते हैं, इसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। और आज जैसा लग रहा है, जिस तरह से हमारे यूथ जो बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर फ्रेंडली होते जा रहे हैं, तो उससे GST जितना ज़्यादा उपभोग उतना ज़्यादा GST।
1: मनीष सर, आपका क्या संदेश रहेगा आम करदाताओं और व्यापारियों के लिए?
0: करदाता और व्यापारियों, देखिए GST का आवश्यकता है, देश को रेवेन्यू की जरूरत है, तो हमें GST से बचना नहीं चाहिए। आप जैसे पहले कह रहे थे कि कुछ स्लैब ज़्यादा है, स्लैब कम किया जा सकता है क्या? बहुत सारे देशों में सिंगल स्लैब भी है, लेकिन भारत की जो डेमोग्राफी है, जिस तरह से यहाँ 85% पॉपुलेशन जो है गरीब है और 60% पॉपुलेशन गांव में रहता है, तो ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उस स्ट्रक्चर को देखकर कि GST की दरें बनाई जाती हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमको और तरीके अपनाने पड़ेंगे। सिर्फ GST जो कम हायर GST वाले प्रोडक्शन को बढ़ाकर, कंजम्पशन को बढ़ा करके GST नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि प्रोडक्शन बढ़ा करके भी GST को हम बढ़ा सकते हैं, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड।
2: जैसा कि पहले कह सकते थे, GST जो था टैक्स, एक जंगल था जहाँ कि जो जाता था वो भटक जाता था, इतने सारे वो है रस्ते हैं, वो भटक जाता था। अब वो जंगल साफ हो गया है और एकदम सब चीज़ क्लियर है सामने में, जो आज चेंज हुआ है उसके साथ उसको इस तरह से देख सकते हैं।
0: उपभोक्ता का भी, व्यवसायी का भी, उद्योगपतियों का भी, सबका यह नैतिक दायित्व है कि GST प्रॉपरली भरे, और GST से ही देश का विकास होना संभव है। GST अगर हम प्रॉपर GST बचाते हैं, कर चोरी करते हैं, तो हम राष्ट्र के साथ राष्ट्रद्रोही का काम कर रहे हैं। कंज्यूमर के लिहाज से भी हमें हर बिल, हमको GST वाला बिल का ही भुगतान करना चाहिए। अगर GST बिल नहीं तो हम भुगतान ना करें।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की बातचीत से स्पष्ट हो गया है कि GST केवल एक कर व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, एकीकृत और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए हैं और आगे भी इसे और सरल तथा प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए।
2: धन्यवाद,
0: आपका आभार, आपने इस कार्यक्रम में बुलाया।
1: इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मानसून और प्रशासनिक तैयारियों की। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस वर्ष जिले में जून माह में औसतन 743.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश की शुरुआत होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नगर पालिका परिषद बड़वानी द्वारा मानसून के दौरान शहर में संभावित जल भराव, बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। नगरवासियों को सूचित किया गया है कि बारिश में यदि शहर के किसी भी क्षेत्र में जलभराव या अन्य कोई समस्या होती है तो नागरिक सतर्कता बरतें और तत्काल राहत व बचाव दल से संपर्क करें। अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य की, जिसके तहत बड़वानी में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 2,61,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं मृदा परीक्षण और कृषि विकास के क्षेत्र में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिले को इस वर्ष 7,718 मिट्टी परीक्षण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अभी तक 7,178 मिट्टी नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब बात नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता की, जिसके तहत पिछले दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह के दौरान गाँवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर युवाओं और समुदाय को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 24 मार्च से जिले भर में चलाया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय जेल बड़वानी में 10 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रतिदिन 100 कैदियों की टीबी की स्क्रीनिंग की। अब बात आपदा प्रबंधन और युवा शक्ति की। पिछले दिनों 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के तीसरे सत्र का समापन हुआ। इस सत्र के दौरान जिला आपदा प्रबंधन के आदेश से बाढ़ बचाव व सिंहस्थ कुंभ के लिए 231 युवाओं को संभागीय सेनानी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं खेल जगत और बड़वानी के गौरव की। हॉकी इंडिया द्वारा ओमान में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए अंडर 18 महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें बड़वानी शहर की स्नेहा दावड़े को पुनः भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं व्यापार और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता की, जिसके तहत पिछले दिनों दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में सेंधवा में SC/ST उद्यमिता जागरूकता एवं स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं सिकल सेल नियंत्रण की, जिसके तहत पिछले दिनों विश्व सिकल सेल दिवस पर आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एड ऑन थेरेपी के रूप में सिकल सेल से प्रभावित 201 रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण घर घर जाकर किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें तो पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रामकुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर जयति सिंह, SP पदम विलोचन शुक्ल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र व नागरिक उपस्थित थे। वहीं पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में पिछले दिनों दुग्ध उत्पादकों की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिले में किया गया। कार्यशाला के दौरान उपसंचालक डॉ. दिनेश पटेल ने पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, संतुलित आहार बनाने की विधि और दुग्ध उत्पादन के लाभ तथा साइलेज की ई मार्केटिंग व गोरस एप्लीकेशन की जानकारी प्रदान की। बड़वानी जिले की चिट्ठी में अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता की। साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने, आमजनों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिले में 15 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और अंत में बात जल संरक्षण और जलगंगा संवर्धन अभियान की, जिसके तहत बड़वानी जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन सहित विभिन्न कार्यों को संपादित किया गया। वहीं कल यानी 30 जून को जलगंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय समापन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। जिले में कुल 5,666 विकास कार्यों को पूरा किया गया है, जिसके चलते जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। तो श्रोताओं, ये थी बड़वानी जिले की चिट्ठी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का था और वाचक थे अभिषेक कटियार। मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

सखियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला संसार में। मैं हूं आपकी रेडियो सखी प्रेक्षा सक्सेना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है। प्रकृति ने हरियाली की संगति कर ली है और आज से ही प्रारंभ हो गया है वन महोत्सव सप्ताह, जो प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। सखियों, हरियाली केवल धरती का श्रृंगार ही नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। एक पौधा लगाना, उसकी देखभाल करना, प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेना, यही इस पर्व का वास्तविक संदेश है। यह सप्ताह हमें प्रेरणा देता है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं, उनका संरक्षण करें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि पर्यावरण के प्रति हमारी ये जागरूकता ही आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है। सखियों, आज है बुधवार और आज हमारा क्रम होता है शीर्षक गीत का। कहते हैं पलकों का उठना और झुकना भी बहुत कुछ कह देता है। कभी शर्म से झुकती हैं तो कभी खुशी, प्रेम और उम्मीद की चमक उठती हैं। इन्हीं अनकहे एहसासों को समर्पित है आज बुधवार का हमारा शीर्षक गीत पलकें। तो आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

पलकें केवल हमारी आँखों की सुंदरता नहीं बढ़ाती बल्कि उनका सुरक्षा कवच भी होती है। धूल मिट्टी तेज रोशनी छोटे छोटे कणों से आँखों की रक्षा करने में पलकों की अहम भूमिका होती है। शायद यही कारण है कि प्रकृति ने इन्हें आँखों का स्नेहमयी पहरेदार बनाया है। हम कह सकते हैं कि पलकें प्रकृति का दिया हुआ कोमल पहरा है जो बिना कुछ कहे अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। सच तो यह है कि जो मौन रहकर भी सुरक्षा दे उसी का महत्व सबसे अधिक है। तो सुनिए ये अगला मधुर गीत।

पलकें मन की उस खिड़की जैसी है जहां अनकहे भाव आकर ठहर जाते हैं। खुशी हो, इंतज़ार हो, संकोच हो या अपनापन, हर एहसास सबसे पहले पलकों पर दस्तक देता है। कभी झुककर विनम्रता का संदेश देती हैं, कभी उठकर आत्मविश्वास की चमक बिखेरती हैं। पलकें जीवन के हर रंग की साक्षी होती हैं। पहली मुस्कान, पहला सपना, पहली बारिश, पहली विदाई, हर याद का एक अक्स पलकों पर ठहर जाता है। इसीलिए कवियों ने पलकों को भावनाओं का सबसे सुंदर आशियाना कहा है। आइए सुनते हैं ये सुमधुर गीत।

सखियों, अब समय हो गया है एक पौष्टिक व्यंजन विधि साझा करने का। तो आपको बताते हैं झटपट बनने वाला प्रोटीन और पोषण से भरपूर सोयाबीन बेसन चीला। सामग्री में आप लीजिए 50 ग्राम सोयाबीन बड़ी या चंक्स, 150 ग्राम बेसन, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, चुकंदर सब बारीक कटा हुआ। सोयाबीन को गलाकर रख लें कुछ देर तक, फिर उसे बारीक पीस लें। फिर बेसन और सोयाबीन को मिलाकर चीले बनाने लायक घोल तैयार कर लें। उसमें सारी बारीक कटी सब्जियां मिला दें। फिर स्वादानुसार नमक, मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला इस घोल में मिलाएं। फिर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद नॉनस्टिक तवे पर गर्मा गर्म चीले बनाएं। इसमें आपके 4 से 5 चीले बनकर तैयार हो जाएंगे। सखियों, हमें उम्मीद है स्वाद और सेहत से भरपूर ये चीले आपको अवश्य पसंद आएंगे। तो अब पलके बंद करके सुनिए ये सुमधुर गीत।

हम एक मिनट में लगभग 15-20 बार पलके झपकाते हैं। इससे आँखों की नमी बनी रहती है और वे स्वस्थ रहती हैं। पलके झपकाना आँखों के लिए एक प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया है। इससे आंसू पूरी आँख में फैलते हैं और आंखें तरोताज़ा रहती हैं। तो सुनिए अब ये सुमधुर गीत।

तो सखियों, आज के कार्यक्रम ने हमने पलकों का महत्व जाना और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आंखें दिल की जुबान होती हैं, तो पलकें उसका विराम। मन की कोमल भावनाओं के साथ साथ हमें पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहना है, जिससे ये वन महोत्सव सप्ताह सार्थक हो सके। आज का हमारा समय भी पलक झपकते ही बीत गया है। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। प्रतिक्रिया हेतु पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम महिला संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462002। और अब समय हो चला है तो मैं प्रेक्षा सक्सेना आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।

रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुर भोपाल द्वारा अनुबंधित सजी फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 को दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजी फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस संबंध में श्रोता जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 को रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन व समय एक बार पुनः सुन लीजिए, 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हमारे फ़ोन नंबर है 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग मालम है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजा काले का गायन। राग है अलैया बिलावल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला संसार, मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और एक कार्यक्रम संबंधी सूचना, गठिया रोग एवं अर्थराइटिस और

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे राजा काले का गायन, राग था अलैया बिलावल। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सक दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत हुई है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और रीवा तथा सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच रात 10 बजे से चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश के गीत और आपको हमें करना होता है फोन। तो हमारे फोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। साथ ही कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार, फोन करें गीत सुने।
2: नमस्कार मैम
1: जी, किनसे बात हो रही है?
2: रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
1: रानू गुप्ता जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ मैम, आपकी क्या हालचाल?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या करती हैं रानू जी?
2: मैम मैं हाउस मेकर हूँ।
1: और क्या चल रहा है अभी आपका?
2: फिलहाल तो मैं घर में ही हूँ। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे।
1: क्या नाम है आपके बेटे का?
2: मेरे बेटे का अश्विन गुप्ता।
1: अश्विन, अश्विन को हमारी ओर से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: थैंक यू मैम। अभी क्या है, मतलब करीबन 6 महीने से हम लोगों ने कॉल नहीं किया, मैंने और नंदिनी ने, बट आज मेरे बेटे का बर्थडे था तो हमने सोचा चलो कॉल कर लेते हैं। और एक जो जबलपुर की श्रोता है वंदना दीदी, उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 6 महीने से कॉल नहीं किया बट वो हमें याद करती है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे वाह, वेरी नाइस। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
2: मूवी का नाम मुझे नहीं पता, बट गाने के बोल बता देती हूँ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते,
1: खून भरी मांग का गीत है मुझे लगता है ये।
2: जी जी बिल्कुल सही बात है, ये सही है। बस यही सॉन्ग सुना दीजिए।
1: हंसते हंसते कट जाए रस्ते, खून भरी मांग का ये गीत आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो,
0: जी नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने।
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: जी, मैं शिवपुरी जिले के रामखेड़ी मारोरा से मोतीलाल परिहार बात कर रहा हूँ।
0: मोतीलाल परिहार जी,
1: और दीदी कैसी हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया। इस समय एक खेती का काम चल रहा है, टमाटर की कौरमा तैयार कर रहे हैं।
0: अच्छा, टमाटर की खेती कर रहे हैं अभी आप?
1: जी,
0: अरे वाह, अरे वाह। तो अभी क्या क्या चल रहा है उसके अंदर?
1: अभी तो पौधा मतलब छोटे छोटे पौध करी है, अभी तो पौध तैयार हुई है।
0: अच्छा,
1: अब बरसात हो जाएगी, 2-4 दिन में तो लगाते हैं।
0: हाँ,
1: जी,
0: अरे वाह, बहुत अच्छा। और क्या क्या लगाते हैं आप?
1: टमाटर, मिर्ची, सब्जी होती है हमारे इधर बहुत।
0: तो सभी तरह की सब्जियां लगाते हैं।
1: जी, बाहर से गाड़ी आती है और टमाटर चालू हो जाता है हमारा से बाहर की गाड़ी
0: अच्छा
1: पर। जी
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मौसम हो रहा है बारिश का?
1: मैडम, अभी क्या है, 1-2-4 दिन में होने वाली है बारिश, तो एक आध दिन बरस गया है, थोड़ा कम कम बरसा है अभी।
0: हाँ, अभी थोड़ा सा बारिश उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, है ना?
1: जी, ऐसे ज्यादा बारिश हो जाती है ना, उसमें गर्म ठंडक आ जाती है, उसमें अच्छी सब
0: हाँ
1: पौधे लगाए जाते हैं।
0: जी। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: आई मिलन की रात को सुना जी, कितने दिनों के बाद आई।
0: जी, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, साथ ही मोहम्मद अजीज की आवाज़ में ये गीत है।
1: जी,
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं, गीत उपलब्ध है हमारे पास।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: दीदी नमस्कार,
0: नमस्ते।
1: मैं ग्राम बाबूपुरा तहसील खोद जिला जालौन से सुरेंद्रपाल सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: सुरेंद्र पाल सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी सब बढ़िया है, अच्छे आनंद में है खूब।
0: क्या चल रहा है?
1: इस समय कुछ नहीं, धान की वो चल रही है बुवाई।
0: और क्या लगाते हैं आप?
1: और इस समय तो केवल धान लगाते हैं खरीफ में।
0: अच्छा,
1: जी
0: और रबी में क्या लगाते हैं?
1: रबी में गेहूं है, मटर है, मसूर है, सरसों है, ये सब लगाते हैं।
0: तो अभी आप खेत में ही हैं?
1: नहीं अभी खेत से आए, घर पे हैं।
0: अच्छा, ठीक है।
1: तो मैंने सोचा लगा ले फोन, शायद लग जाए।
0: हाँ, देखिए लग गया।
1: जी
0: अच्छा सोचा आपने।
1: अमृत
0: तो कौन सा गीत सुनेंगे बताएं?
1: का सुनवा दीजिए, दुनिया
0: अमृत।
1: में कितना गम है, अपना गम कितना कम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनवा देते हैं। मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत है,
1: जी
0: तो ठीक है, बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं। आपके रेडियो सेट्स पर आएगा, और कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो हेलो, फोन करें, गीत सुने।
0: जी नमस्कार।
1: हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुर जिला रायसेन से भगत जी बात कर रहे हैं।
0: भगत जी कैसे हैं आप?
1: जी हम बहुत बढ़िया। दीदी आप कैसे बरसा हो रहा है?
0: अभी मौसम बना हुआ है, अभी हो नहीं रही लेकिन।
1: अच्छा मतलब भोपाल में अच्छा मौसम बना हुआ है?
0: हाँ मौसम बन रहा है, हो जाएगी मुझे लगता है आधे घंटे में।
1: दीदी हम प्रवचन करते हैं।
0: अच्छा आप प्रवचन करते हैं?
1: जी हम आपको एक लाइन सुना रहे, सुनो।
0: बताएं।
1: राम

0: से छूट।
1: अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। क्या आप राम
0: जी
1: कथा करते हैं?
0: जी जी हम राम कथा करते हैं।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया बात है भगत जी।
0: जी
1: और गीत कौन सा सुनेंगे आज, बताएं?
0: जी हमारे गांव में है वो बिनु साहू की मोड़ी दीक्षा को ब्याह, मतलब दीक्षा साहू को ब्याह हो तो हमें सुनने हैं वो गाना। फिल्म का नाम है विवाह,
1: क्या फिल्म का नाम है?
0: विवाह फिल्म को गाना, वो गाना हम बता रहे हैं
1: अच्छा, विवाह
0: वो।
1: फिल्म।

0: वाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पामेला जैन और श्रेया घोषाल की आवाज में
0: हाँ, पोमेला जैन और श्रेया घोषाल की आवाज में जुगाना।
1: विवाह फिल्म का ये गीत। और आपने बताया दीक्षा साहू के लिए गीत आप बजवाना
0: हाँ,
1: चाहते
0: दीक्षा साहू की आज बारात आ रही है, तेज
1: हैं।
0: है, हमें जुगाना सुनने हैं।
1: बहुत बहुत बढ़िया। तो आपका गीत आपको सुनवाते हैं आप कार्यक्रम में। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दीदी आपको भी धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हेलो मैम,
0: जी नमस्कार।
1: मैं हीरू बोल रही, बाग से मैम,
0: हीरू
1: हीरू प्रयाग।
0: हीरू परिहार बोल रही हैं, कहाँ से?
1: हाँ, आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम बढ़िया हैं मैम।
0: कहाँ से बात कर रही हैं हीरू जी?
1: मैं बाग जिला धार।
0: जिला धार से बात कर रही हैं।
1: हाँ,
0: अच्छा, क्या चल रहा है?
1: सब बढ़िया है, अभी तो मौसम भी ठंडा है। आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप क्या करती हैं हीरू जी?
1: मैं यहाँ दुकान लगाती हूँ, यहाँ सोचती नहीं, देखती हूँ।

0: अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं फिर हीरू जी?
1: सुना दो, पति मेरा देवता है, जैसा भला है बुरा है, जैसा मेरा पति देवता है, वो वाला।
0: नसीब अपना अपना फिल्म से ही गीत है।
1: हाँ,
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में ये गीत है।
1: धन्यवाद
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने
1: जी। नमस्कार नमस्कार दीदी जी। कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं, और जहां मैंने फोन लगाया है उसके ही हम प्रवासी हैं।
0: बढ़िया, बहुत अच्छा। किनसे बात हो रही है?
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ दीदी जी को, और सत सत राम राम भेज रहा हूँ चित्रकूट धाम से।
0: दिनकर जी चित्रकूट से
1: जी। और बहन जी का भी नाम जानना चाहूँ दीदी जी।
0: जी मेरा नाम रक्षा है।
1: जी रक्षा जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। हम धन हो गए आपके जो है आपसे बात करके।
0: जी जी जी हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो क्या चल रहा है दिनकर जी?
1: बिल्कुल इस समय जो है नर्सरी पर बैठा हूँ, धान की नर्सरी तैयार हो रही है और यहाँ पर छाया भी है।

0: चारपाई में बैठा हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
1: अरे वाह।
0: जी जी जी बिल्कुल, और रेडियो में गीत भी चल रहा है और आपका फोन भी जो है आपके साथ बात भी कर रहा हूँ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो फिर बताएं कौन से गीत सुनेंगे आप?
0: मुझे फिल्म जीत का गीत सुनना है, जीत का, JEET।
1: जीत फिल्म से कौन सा गीत?
0: अभी साथ लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो।
1: चलिए आपको सुनवाते हैं।
0: और ये मेरे पास जो है बब्बू वर्मा जी बैठे हैं, वो उनके साथ और प्रेम दास बाबा फूलचंद मनकारी से जो है उनके उनके साथ सुनूंगा ये गीत।
1: कार्यक्रम में ये गीत अब आपको सुनवाए देते हैं फिल्म जीत से।
0: जी नमस्कार दीदी जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने
1: हेलो
0: जी। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं आज?
0: जी। मैं रक्षा बात कर रही हूँ, मेरी बात किन से हो रही है?
1: मैं सतना से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश सतना से। कविता
0: कविता जी सतना से बात कर रही हैं।
1: जी, बढ़िया,
0: कैसी हैं आप कविता जी? क्या
1: बहुत बढ़िया।
0: चल रहा है कविता जी? मौसम कैसा है?
1: वो मैं पता है, दो मैंने 16 तारीख को फोन लगाया था तब लग गया था, और आज फिर मतलब 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी तो वो लग ही नहीं रहा था। फिर आज मैंने फिर देखा, अभी लगा के देखूं अब लग गया।
0: बहुत बहुत बधाई हो जी
1: हाँ, मैं बहुत अच्छा लगता है बात करने में।
0: जी जी जी वो तो आपकी आवाज़ सुन के हमें पता चल रहा है कि आपको बहुत खुशी हो रही है, हमें भी बहुत खुशी होती है आप जैसे सभी श्रोताओं से बात करके।
1: वो पता है, मैंने अपनी बेटी को बताया कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ और मैं अपने गीत बताती हूँ। वो
0: जी
1: बोल रही है, मम्मी मेरे को भी रेडियो लेके दो।
0: अरे वाह, क्या नाम है आपकी
1: हाँ,
0: बिटिया का?
1: मेरी बेटी का पूजा, पूरब
0: पूजा। पूजा, अच्छा जी। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
1: और पश्चिम का, वो ये है प्रीत कहाँ की रीत सदा।

0: पूरब और पश्चिम फिल्म का।
1: हाँ
0: बिल्कुल, ये गीत तो हमारे पास उपलब्ध है, ये सुनवा देते हैं आपको महेंद्र
1: हाँ
0: कपूर की
1: हाँ
0: आवाज़ में। बिल्कुल,
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए।
1: बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत खुशी।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा कविता जी, ऐसे ही हमें फ़ोन करते रहा कीजिए।
1: हाँ वही 15 दिन के बाद किया है मैंने।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो अब आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं कविता जी की पसंद का ये गीत फिल्म पूरब और पश्चिम से, आवाज़ है महेंद्र कपूर की।
2: जब

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करने गीत सुने।
1: हेलो
0: जी हेलो।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: जी दीदी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी
0: बेटा सिंह यादव जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बढ़िया है, अच्छा है, और हमने सोचा बातचीत कर लिया जाए, फोन करें गीत सुने में, तो आज फोन लग भी गया है।
0: अरे वाह, तो क्या चल रहा है बेटा सिंह जी?
1: जी दीदी जी, वैसे तो अभी घर बनवा रहे थे, तो वही काम कर रहे थे और ट्राई भी कर रहे थे, तो फोन भी लग गया, तो आपसे बातें भी हो रही हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा सीरी 420, और गीत की बोल रहेगा रमैया बस्ता भैया, मैंने दिल तो इसको दिया।
0: बहुत बहुत अच्छा गीत, मुझे भी बहुत पसंद है ये गीत।
1: जी दीदी, कौन दीदी बात कर रही हैं आप?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी दीदी बिल्कुल, और हमारी आपसे बात अक्सर हुआ करती थी जब एकदम लाइव कार्यक्रम चलता था,
0: जी
1: और बिल्कुल आपका बात करने का तरीका है कि यार एक जो अंदाजा है, बहुत सचमुच मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको गीत सुनवा देते हैं आपकी पसंद का, श्री 420 से।
1: ओके दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए हैं। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक हैं। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी हुई है। UPI अब दुनिया के 8 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध है। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, रीवा तथा सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का सबसे पहला ये गाना हम ले रहे हैं फिल्म शान का एक गीत। आवाजें हैं RD बर्मन, मोहम्मद रफी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, संगीत RD बर्मन का ही है। सुनते हैं ये गीत और इस गाने को पसंद किया है। गाना सुनने के बाद हम आपको बताएंगे। सुनिए ये गीत।

चंद फिल्में अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन और साथियों को, और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आर डी बर्मन का। इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है वो इस तरह से है, लक्खड़ बाज़ार खंडवा से लिखने वाले हैं मोहम्मद रफ़ीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाज़ार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, विनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ने, और ग्राम छेगांव देवी ज़िला खंडवा से लिखने वाले हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, ईश्वर बाघे, तनुश्री, आरोही और कान्हा बाघे। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमिता राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। अगला गाना लिया है हमने आशा भोसले की आवाज़ में, इसमें दूसरी आवाज़ शशि कपूर की है, फिल्म का नाम है सुहाग। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को संगीत से सजाया है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत। और इस गाने की और पिछले गाने की दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है, भोपाल से लिखने वाले हैं बिंदु नारायण गौतम, लक्ष्मी ध्रुवपाल सिंह, मदन गोपाल शुक्ला, चित्रकला सेन, अरविंद शर्मा, इंद्रजीत बिश्नोई और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया, शोएब, मुश्तबा, रऊफ और शाहिद। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गांधी बाग अकोला से, लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और इसी गाने की फरमाइश के लिए हमारे पास में जो ख़त आया है ये है, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ, बस स्टैंड बंडा, ज़िला सागर से लक्ष्मण रेखवार, विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते ही ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म अब्दुल्ला से, आवाज़ किशोर कुमार की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है घंटाघर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गाने की फरमाइश आए है शाहू नगर यवतमाल से, लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और जाकर समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस आई तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर सम्राट ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप कर स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट के दिए अलग महल में रह रही भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। भुवन मोहिनी की हत्या की कोशिश करने के अपराध में विजय श्रवा ने उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया। सम्राट ने एक दिन भुवन मोहिनी को बुलवाया और चंद्रहासिनी के पिता और इंद्रप्रस्थ महाराज आदित्य सेन की शर्त को बताया। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं और अंतिम कड़ी में।

0: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
1: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
0: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
1: टाला जा सकता है।
0: कैसे?
1: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।
0: मैं सहर्ष अपना शीश देने को तत्पर हूं।
1: इसका अर्थ है कि मैं भी अपने जीवन से हाथ धो लूं?
0: नहीं सम्राट, यदि देश दासत्व की श्रृंखला से जकड़ा गया तो भावी संतान अपने पूर्व पुरुषों पर हंसेगी। इतिहास के पन्ने साक्षी होंगे उस अधा पतन के जिसका हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। सम्राट, क्या भविष्य में भारतीय संतानें सम्राटों के नाम पर घृणा और तिरस्कार की वर्षा न करेंगे, जब वे इतिहास के पृष्ठों में अतीत के संस्मरणों पर एक दृष्टि डालेंगे तो उन्हें विलासी सम्राटों की काली करतूतों के प्रति घोर विरक्ति नहीं होगी? भावी संतानें न कहेंगी कि इंद्रिय लोलुप शासकों ने सुरा और सुंदरी की उपासना में भारतीय वीरता को कलंकित किया है? इससे तो कहीं अच्छा है कि आज का सम्राट अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करे। जो सम्राट अपनी साम्राज्ञी को भयानक दंड दे सकता है, वो राष्ट्र में एक नर्तकी के मुंह में पड़कर निरपराध प्राणियों की हत्या द्वारा रक्त वैतरणी में क्यों निमग्न होना चाहता है?

0: मैं निवेदन करना चाहती हूं कि युद्ध के आमंत्रण को स्वीकार करने से कहीं अधिक श्रेयस्कर ये है कि महाराज आदित्य सिंह को सूचना भेज दी जाए कि शीघ्र ही उनकी सेवा में भुवन मोहिनी का शीश भेजा जाएगा।
1: नहीं भुवन मोहिनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
0: सम्राट, आपको स्मरण होगा कि इंद्रप्रस्थ के आश्रम में आपने मुझे दो पुरस्कार देने की बात कही थी। एक पुरस्कार तो मैंने ले लिया था, परंतु दूसरा पुरस्कार?
1: मुझे स्मरण है भुवन मोहिनी।
0: तो आज दूसरा पुरस्कार देने का समय आ गया है मेरे प्राण प्रिय। मुझे मृत्युदान दीजिए। मैं नहीं देख सकती कि एक गलित और पतित नर्तकी के जीवन का मोह आपको कर्तव्य कर्म से विलग करता जा रहा है। सत्य ये है कि एक सम्राट के दृष्टि में समस्त शासित प्रजा एक समान है। यदि मेरे तुच्छ शरीर का मोह राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बना तो आपके पवित्र और राष्ट्राभिमानी चरित्र पर कलंक लग जाएगा। एक ओर धर्मपत्नी का न्याय के नाम पर क्रूरतापूर्वक विनाश और दूसरी ओर एक नर्तकी की आसक्ति के कारण राष्ट्र का सर्वनाश। प्रियतम, मैं तुम्हारे चरणों में गिरती हूं। मैं इस जीवन में तुम्हारी बनकर भी अपवित्रतावश तुम्हें स्पर्श करने तक से हिचकती रही हूं। मेरी शून्य छाया तुम्हारे उदास जीवन और चरित्र के लिए मुझे महान कलंक के समान रही है। यदि जनता के सामने अपनी तलवार से मेरा शीश काटकर महाराज आदित्य सेन के समीप भिजवा सके तो इससे अधिक निश्चल चरित्र इतिहास के पन्नों में ढूंढने पर भी मिल सकेगा, मुझे संदेह है।
1: इसका अर्थ है कि मैं अपना हृदय पिंड निकालकर फेंक दूं, अपने जीवन की अकेली वासना जिसके सहारे मैं आज तक जीता रहा हूं, आज कुचलकर देहाभिमान और आसक्ति से विरक्त हो जाऊं और अपने हाथों अपने मृत्यु की आज्ञा प्रदान करूं। जिन आशाओं के तिनके चुनकर मैंने अपने प्राण पखेरु के बसने के लिए स्नेह का नीर बसाया था, उसे न्याय की निष्ठुर दीप शिखा द्वारा छुलसा दूं, भस्म कर दूं।
0: सम्राट, यदि मेरे सर्वनाश से राष्ट्रव्यापी महासमर की अग्नि प्रज्वलित होने के पूर्व ही बुझाई जा सकती हो तो भुवन मोहिनी का शीश धड़ से विलग होने को प्रस्तुत है। महाराज आदित्य सेन की तुष्टि के लिए आपको मेरी मृत्यु का आदेश देना ही होगा।
1: और इसके साथ ही मुझे स्वयं के लिए अपनी चिता को अपने हाथों प्रज्वलित भी रखना होगा। प्रिय, विधि विधान के क्रूर निर्णय को स्वीकार करने से पूर्व एक बार जीवन की महान अतृप्ति की तुष्टि के लिए मृग जल का सहारा ही मिलता, क्या ऐसा संभव नहीं था?
0: संभव था प्रिय, किंतु इससे सम्राट के जीवन की महत्ता धूल में मिल जाती। इसलिए यदि जन्मांतर सत्य है, यदि वासना का अस्तित्व जीव को पुनर्जन्म के लिए बाध्य करता है, तो इस जीवन में नहीं। सम्राट, फिर कभी हमारा मिलन तो होगा ही, तभी जन्म जन्मांतर के वासना की तुष्टि के क्षण उपस्थित होंगे और मिलन की आशा की शुभ घड़ियां अंतिम मुक्ति की वरदायिनी सिद्ध होंगी।
1: यदि मैं आज सम्राट ना होता तो कितना अच्छा होता। आह, इस महत्ता ने मुझे साधारण मनुष्य के जीवन से भी वंचित कर दिया। जीवन का प्रत्येक क्षण अभिशापित, उत्तप्त और प्रिय के अभाव में बीत गया। सम्राट बनकर भी अपनी आकांक्षाओं को तुष्टि के जल से शीतल न कर सका और मिलन की छलना ने चिर वियोग के सम्मुख ला खड़ा कर दिया। अच्छा प्रिय, हमने जाने अनजाने जिस वृक्ष को पाला पोसा था, स्नेह का जल पिलाकर जिस तरह उसे पल्लवित और कुसुमित किया था, उसी वृक्ष

0: फल प्राप्त करने से पूर्व ही जड़ से काट कर नष्ट कर देने का पवित्र कर्तव्य मैं करूंगा। तुम मुझे सम्राट बनाकर साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहती। भले ही उभय प्राणियों का जीवन मृत्यु की नीरव गोद में धराशायी हो जाए, मुझे स्वीकार है। आज उस मोहमयी मदिरा के प्रभाव का अंतिम क्षण महान जागरण का संदेश लेकर आया है। स्वागत है उस क्षण का। हम दोनों हृदय के सन्निकट रहकर भी एक दूसरे के न हो पाए, अब एक दूसरे के अंत का कारण बनेंगे। दुनिया की दृष्टि से ओझल होकर महान मिलन सागर में विलीन हो जाएंगे। जाओ, मेरे जीवन के स्नेह की प्रतिमा, आज तक मैं तुम्हारे रक्षक होने का अभिमान हृदय में भरता आया था, किंतु ये क्षण स्नेह के अंतिम मिलन के अंतिम क्षण है। अब तुम्हारा ये रक्षक विजयश्रवा तुम्हारे जीवन के भक्षक के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा।
1: आपके चरणों को प्रणाम प्रियतम। जीवन भर के संचित अपराधों की क्षमा याचना का ये क्षण मूल्यवान है। इस पाप संताप में जीवन को मैं स्वयं जीवित रखने में असमर्थ हो चुकी थी, इसलिए मेरे शीश को अपनी तलवार के झटके से काटना। मैंने सब कुछ पा लिया प्रीतम, प्यार का प्रतिदान, विदा।
0: ठहरो प्रिय, तुम जानती हो वीर की तलवार एक नारी की गर्दन में शोभा नहीं देती। दूसरे, नारी हत्या जघन्य अपराध है।
1: सब कुछ है मेरी प्रीतम, किंतु अंतिम लालसा फिर भी बची है। मैं चाहती हूं कि पाप पुण्य के द्वंद से उठकर मेरे प्रियतम स्वयं मेरी गर्दन पर वार करें, ताकि मेरा लाल लहू प्रियतम के चरणों पर गिरे और मेरा अपवित्र जीवन पवित्र हो जाए। अब अंतिम बार मुझे निराश न करना मेरे देवता।
0: अच्छा प्रिय, तुम्हारे अंतिम आग्रह को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा।

0: महामंत्री।
1: आज्ञा सम्राट।
0: हमने ये दो पत्र तैयार करवा दिए हैं। प्रथम उत्तराधिकार पत्र है, जिसके अनुसार मेरा 5 वर्षीय राजकुमार अखिल भारत का सम्राट होगा, और द्वितीय पत्र महाराज आदित्य सेन के लिए है, जिसमें उनके प्रतिशोध पूर्ण भावना की पूर्ति का अंतिम आश्वासन भुवन मोहिनी का शीश भेजने का समाचार है। महामंत्री, कल प्रभात काल के पश्चात एक जनसाधारण और सामूहिक जनता की सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें महाराज आदित्य सेन के वैर विग्रह पूर्ण पत्र के आधार पर धारा नगरी के सम्राट की ओर से दोनों राज परिवार के बीच स्नेह संबंध स्थापित रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा, और महाराज आदित्य सेन की आंतरिक तुष्टि के लिए भुवन मोहिनी का रक्त से लथपथ शीश। आज तक मैंने गद्दी की सेवा निश्चल और न्यायपूर्ण हृदय से की है, किंतु अब मेरा मनुष्यत्व मुझसे विदा ले रहा है और उसके स्थान पर एक ऐसी निष्क्रियता प्रवेश

0: कर रही है जो श्वासों के बचते हुए तार को किसी भी क्षण निश्चेष्ट कर देगी। इस राज सिंहासन को प्रणाम करता हूं जिसके प्रति मेरे पूर्वज सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और व्रती रहे हैं। मैंने इस परंपरा को स्थापित रखने का मात्र अकिंचन प्रयास किया है।
1: धारा नगरी के सम्मानीय नागरिक गण, आज इस अति विशेष जनसभा में स्वयं सम्राट विजय श्रवा उपस्थित हैं और उपस्थित हैं देवी भुवन मोहिनी। आपको ज्ञात है कि देवी भुवन मोहिनी की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में सम्राट ने अपनी पत्नी चंद्रहासिनी और उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला को मृत्युदंड दिया था। इससे कुपित होकर चंद्रहासिनी देवी के पिता इंद्रप्रस्थ नरेश महाराज आदित्य सेन ने हमारे राज पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी है। महाराज आदित्य सेन ने चेतावनी दी है कि या तो सम्राट विजयश्रवा देवी भुवन मोहिनी का विच्छेदित शीश भिजवाएं या फिर उनका आक्रमण सहने के लिए तैयार रहें। प्रिय नागरिकों, हमारे जनप्रिय सम्राट विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ नरेश की इस चेतावनी से चिंतित हो गए कि यदि भारत की इन दो शक्तिशाली राज्यों में आपस में युद्ध हुआ तो इसका लाभ हूण अवश्य उठाएंगे। इसीलिए हमारे सम्राट युद्ध को टालना चाहते थे, परंतु इसके पहले कि वो कोई निर्णय लेते, देवी भुवन मोहिनी ने स्वयं अपने आप को आत्मबलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया है। देवी भुवन मोहिनी लगातार राष्ट्रहित में अपने आप को समर्पित करती आई हैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भुवन मोहिनी को मत मारिए सम्राट।
3: हम भुवन मोहिनी का बलिदान नहीं चाहते।
2: ये बलिदान नहीं होना चाहिए।
3: हाँ, ये बलिदान नहीं होना चाहिए। मत मारिए महाराज, मत मारिए।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, आप जो कह रहे हैं हम भी वही चाहते। ऐसा करते समय हमारी आत्मा फट रही है, हमारा हृदय चीत्कार कर रहा है, परंतु हम विवश हैं। हमारे और देवी भुवन मोहिनी के बीच क्या संबंध है आप भली भांति जानते हैं। यथार्थ है कि राज परिवार की प्रतिष्ठा और राष्ट्र के व्यापक हित में हमने सदैव भुवन मोहिनी को दुखी दिए, सुख कभी नहीं। देवी भुवन मोहिनी ने भी कभी सुख के बारे में नहीं सोचा। कभी नारी मर्यादा तो कभी राज परिवार की मर्यादा, इन मर्यादाओं के व्यवहार में उन्होंने सदा अपने आप को व्यय ही किया है, अर्जित कुछ नहीं किया। देवी भुवन मोहिनी आज भी चाहें, अब भी चाहें तो मुझसे लिए गए वचन से मुझे मुक्त कर सकती है। हम कैसे भी सही भावी परिस्थितियों से निपटने में जुट जाएंगे, अपने राष्ट्र की एकजुटता को बनाए रखेंगे। भुवन मोहिनी, एक बार फिर से मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे द्वारा दिए गए वचन से मुझे मुक्त करो।
4: नहीं सम्राट, मैं स्थित प्रज्ञ हूं और आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी रहिए। मुझे गर्व है कि मेरे रक्त का प्रत्येक बिंदु हिंसा के अपार सागर को रोक पाने में समर्थ हो रहा है। पूज्य सम्राट, मेरे जीवन के समस्त अपराधों को क्षमा करें और अपनी तीक्ष्ण कटार से मेरा पतित शीश काट कर मुझे गौरवपूर्ण मृत्यु का दान दें।
0: आज मैं ये क्या करने चला हूं? मेरे हाथ में ये कटार और मेरे समक्ष अपना शीश कटाने के लिए अवनत तुम भुवन मोहिनी। एक ही पल में क्या से क्या हो जाएगा। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी जिह्वा, सब कुछ शांत हो जाएगा।
4: मेरे स्वामी, परीक्षा की गहनतम घड़ी में आपका

0: विचलन शोभा नहीं देता। आपकी दुर्बलता कहीं मुझे लज्जित न कर दे मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहती। वार करिए मेरे प्रभु, वार करिए।
1: जिस शरीर को मैंने अपने हृदय से भी बढ़कर प्यार किया, आज उसी के विनाश का कठोर दायित्व निभाने की शक्ति दो ईश्वर। वन मोहनी,

0: महामंत्री, पूर्व निश्चित सैनिकों को आदेश दीजिए कि इसी क्षण भुवन मोहिनी का मुंड रुंड लेकर महाराज आदित्य सेन की सेवाओं में उपस्थित हों।
1: आज्ञा सम्राट।

आज मेरी प्रियतमा नश्वर जीवन से सदा के लिए विदा ले चुकी है। अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं बचा। एक मानव सम्राट बनकर कर्तव्य के लिए मुझे जिस तरह निर्मम बनना पड़ा, मानो मेरा मनुष्यत्व सदा सदा के लिए छिन गया हो। संज्ञा शून्य, भावनाहीन और ये नीरस जीवन लेकर मैं करूंगा ही क्या? मेरे अटके हुए ममता के धागे तो उसी समय टूट गए थे जब मेरी तलवार भुवन मोहिनी की गर्दन पर वार करने के लिए उठी थी। जीवित भुवन मोहिनी की आवश्यकता तो जीवित विजय श्रवा के लिए थी। जब भुवन मोहिनी ही नहीं रही तब विजय श्रवा ही क्यों जीवित रहे? आह, भुवन मोहिनी के बिना पंख विहीन पक्षी की भांति हो गया हूं मैं। अब भुवन मोहिनी का चित्र मात्र एक वस्तु है जिसे मेरी आंखें स्वीकार कर सकती हैं। जब तक सांसों की डोर बनी है, भुवन मोहिनी मेरी आंखों के सामने तुम ही रहोगी, मात्र तुम। जैसे तुम निष्प्राण, कठोर, प्रस्तर, वैसा ही मैं भी हो रहा हूं, निष्प्राण,

0: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। इन लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। ये पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 देशों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।
2: महिला सभा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त ज्योति आपके साथ। करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गर्मी की छुट्टियां अब समाप्त हो चुकी हैं, मतलब बच्चों की गर्मी की छुट्टी। पर सखियों, ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी भी छुट्टियां चल रही थी, क्योंकि रूटीन ही कुछ ऐसा होता है कि स्कूल बच्चे जाते हैं,

पर तैयारी हमारी होती है। सखियों, छुट्टियों में अक्सर ही हम लोग बाहर प्राकृतिक स्थलों पर घूमने जाते हैं, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में हरे भरे वन और बर्फीले स्थान राहत देते हैं, जहां हम सुकून के कुछ दिन बिता सकते हैं। सखियों, चमत्कार शब्द की उत्पत्ति शायद इन्हीं स्थानों से हुई थी, क्योंकि यदि हम इन जगहों पर जाते हैं ना, तो हम खुद महसूस करते हैं कि मन एकदम शांत और प्रसन्न होने लगता है, क्योंकि हम रम जाते हैं तन और मन से अपनी प्रकृति की सुंदरता में। पर सखियों, क्या होगा यदि ये सुंदरता ना रहे, यदि ये वन ये पहाड़ ना रहें? पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पर्यावरण बचा रहे हैं ना। हर साल हम पर्यावरण के ऊपर वनों, जंगल, वायु, पानी, इन सभी को बचाने के प्रोग्राम करते हैं, भाषण देते हैं, सोशल मीडिया और अन्य मीडिया पर कार्यक्रम करते हैं। पर सखियों, क्या ये सब करना ही काफ़ी होता है? इससे सब बच जाएगा या बच रहा है? जितना हम पर्यावरण और वन रक्षण की बातें करते हैं ना, जागरूकता फैलाते हैं ना, उतना ना तो संरक्षण हो रहा है, ना ही पेड़ पौधे वन बच रहे हैं, बल्कि शायद नष्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम सभी का जवाब यूजुअली यही होता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या ही है। तो सखियों, जवाब ये है कि जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं। हम सभी मिलकर एक ताकत बन सकते हैं, पर शुरुआत अपने आप से ही, बल्कि अपने घर से ही होगी। सबसे पहले अपने घर में या घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं। सिर्फ लगाना ही काम नहीं होता, उनकी देखभाल भी करें। कागज़ का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करें। जहाँ भी उसका अनावश्यक प्रयोग लगे ना, वहाँ उसका विरोध करें, पर विरोध मर्यादित हो। पेड़ों की अनावश्यक कटाई का विरोध करें, क्योंकि सुख सुविधा से पहले हमें जीने के लिए सांसें चाहिए, और सांसों के लिए शुद्ध हवा चाहिए, और शुद्ध हवा के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, जो कि हमें हरे भरे वन ही दे सकते हैं। पर्वतीय और वन स्थलों पर जाकर पॉलीथीन प्लास्टिक का कचरा ना फैलाएं। ये और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जिनसे बेशक हम अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति को बचाने में योगदान दे सकते हैं। इसलिए ये ना कहें कि हम क्या कर सकते हैं। सखियों, हम एक ताकत बनकर, संकल्प लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और सखियों, हमारी धरा सुरक्षित रहे, हमारे वन्य और हमारे जंगल, हमारे पहाड़ सुरक्षित रहे, इसे बचाने की मुहिम को लेकर ही हम मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। और सखियों, इस उत्सव की शुरुआत हुई थी सन 1950 में, उस समय केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा की गई थी। सखियों, सोचिए ना उस चित्रकार की कला के बारे में, जिसने इतनी सुंदर प्रकृति को रचा है।

0: सखियों कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। पर सखियों हम ये कहते हैं कि मानवता की सेवा और रक्षा करने के लिए उसने डॉक्टर्स को भी बनाया। सखियों 1 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। इस उपलक्ष्य में हमने अपने शहर के कुछ डॉक्टर्स के संदेश लिए हैं, तो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं वो संदेश।
1: आप सभी को नमस्कार और डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर दीप्ति बुनकर रेडियोलॉजिस्ट हूँ। जब लोग डॉक्टर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर स्टेथोस्कोप या क्लिनिक की छवि आती है, लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में हमारा काम थोड़ा अलग और बेहद संवेदनशील है। हम अक्सर पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं ताकि दूसरों के जीवन में उजाला ला सकें। चाहे रात का कोई भी वक्त हो, एक्सीडेंट का केस हो, स्ट्रोक या कोई गंभीर इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में हमारा रोल सबसे पहले शुरू होता है। जब हर एक सेकंड कीमती होता है, तब हमारी त्वरित सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट ही सर्जनों और इमरजेंसी डॉक्टरों को सही रास्ता दिखाती है। हम मेडिकल जगत के वो जासूस हैं जो शरीर के भीतर छिपे सच को तुरंत सामने लाते हैं। भले ही हर मरीज से सीधे तौर पर ना मिले, लेकिन आपातकाल की हर घड़ी में और हर सटीक डायग्नोसिस में हमारी प्रतिबद्धता शामिल होती है। आज मुझे अपने सभी चिकित्सकों और 24 घंटे सेवा देने वाले योद्धाओं के साथ खड़े होने पर बेहद गर्व है। मेरे सभी बेहतरीन सहकर्मियों को हैप्पी डॉक्टर्स डे। धन्यवाद।
2: डॉक्टर्स डे पर सभी शहरवासियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर श्वेता सहाय, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के रूप में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। पिछले 20 सालों से इस संस्थान को मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। इस डॉक्टर्स डे पर मैं सभी शहरवासियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि ये शहर हमारा अपना है। इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में हम सबका सहयोग होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना, थूकना इत्यादि, इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि सफाई केवल सफाई कर्मी का कार्य नहीं है, वह हम हर एक नागरिक का कर्तव्य है। पिछले कई सालों से मैं अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में देकर के यह समझ पाई हूँ कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों की कमी नहीं होता है। स्वास्थ्य अर्थात मन एवं तन दोनों में एक प्रफुल्लित होने की का आभास, वही सही स्वास्थ्य होता है। इसीलिए सिर्फ बीमारी की कमी को आप स्वास्थ्य ना समझें, आप ये समझिए कि अपने आप को, अपने शरीर को एक अच्छी कंडीशन में रखना, नियमित व्यायाम करना, स्वच्छ एवं सादा आहार लेना, स्वच्छ और भरपूर पानी पीना, इन सब चीजों में ही असली स्वास्थ्य निहित है। हम इससे कई बीमारियों से बच सकते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से अनेक अनेक स्वास्थ्य कामनाएं। धन्यवाद।
3: मेरा नाम डॉक्टर गौरव भारद्वाज है और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरी खुद एक बार सर्जरी हुई थी और उसके बाद मैं बहुत इंस्पायर हुआ डॉक्टर बनने के लिए। मुझे लगा कि डॉक्टर ने मुझे बहुत मदद की थी मेरे बीमारी से बाहर आने के लिए, और उसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा। मुझे बार बार लगता था कि ना शायद मैं डॉक्टर ही बन सकता हूँ और जीवन में और कुछ नहीं बन सकता, और मैंने ये रास्ता पूरा किया। डॉक्टर बनने का सफ़र बहुत ही कठिन रहा,

0: बहुत ही जूझना पड़ा। 10 साल 15 साल लगातार मेहनत, अलग अलग तरह के इम्तिहान, और उसके बाद वो मुकाम में हासिल कर पाया। मेरा उद्देश्य था मानवता की सेवा करना और उनको उनकी परेशानियों से मुक्त कराना। मैं काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहा उस रास्ते में, लेकिन मैंने खुद को भी खोजना शुरू किया और अपने बारे में जानना शुरू किया, और मुझे लगा कि मैं जितना अपने बारे में जान पाऊँगा शायद मैं उतनी ही अच्छा सब जनता की सेवा कर पाऊँगा। इस डॉक्टर्स डे पर मैं सभी मेरे डॉक्टर साथियों को और श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और जो लोग भी डॉक्टर बनने की राह में हैं उन सबको शुभकामनाएं कि वो इस राह में सफल रहें और एक अच्छे डॉक्टर बनके देश की और मानवता की सेवा करें।
1: प्रिय श्रोताओं और सभी डॉक्टर मित्रों को मेरा नमस्कार एवं डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर कृति है, मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। बचपन से ही मेरा सपना डॉक्टर बनने का रहा है। मुझे विज्ञान विषय में विशेष रुचि रही है और मानव शरीर के बारे में जानने की इच्छा ने ही मेरा यह सपना पूरा किया। डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं उन सभी श्रोताओं को संदेश देना चाहूँगी जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं कि यदि हम सच्ची लगन और मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। डॉक्टर केवल एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि मानवता की सेवा का एक महान माध्यम है। मेरी यही इच्छा है कि मैं भविष्य में भी अपना काम ईमानदारी और समर्पण के साथ करती रहूं। डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: मैं डॉक्टर अनुराग चौहान, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं जया रोग के अस्पताल समूह जनरल सर्जरी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पिछले 25 साल से जया रोग के अस्पताल एवं गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
3: आज आप सभी लोगों को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे पर बधाई देता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहता, तो मेरा जवाब है हाँ। मैं हमेशा से ही लोगों की पीड़ा देखकर अपने आप को भी पीड़ित महसूस करता था, और मेरे अंदर का एक व्यक्ति हमेशा ये चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से लोगों को पीड़ा मुक्त कर सकूं। इस कारण मुझे हमेशा मेरे मन में एक ये लालसा थी कि मैं सफ़ेद कोट पहनूं और लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। जब भी किसी मरीज को हम लोग देखते हैं कि वो ठीक होता है तो एक अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है और सेटिस्फेक्शन महसूस होता है जो किसी भी और चीज़ से नहीं मिलती। हमेशा ये कहना चाहूँगा चिकित्सा डॉक्टरों के प्रति सद्भावना और उनके विश्वास पे चलती है, और आप सभी को भी मैं आज डॉक्टर्स डे पे अपने चिकित्सक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और हमेशा बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को अब मरीजों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनके लिए जो बन सकता है हमें करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि इसी भावना से मैं हमेशा आगे करता रहूँ। धन्यवाद।
4: नमस्कार, सलाम। मैं डॉक्टर नाजिया खान, आयुर्वेद चिकित्सक और पूर्व चिकित्सा अधिकारी। मैं पिछले 16 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन और आप सभी को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी कष्ट, दुख, तकलीफ में गिरे इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की जो खुशी होती है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे इसी संतुष्टि के एहसास ने इस तरफ आकर्षित किया। हालांकि सफ़र आसान नहीं होता, ये सभी साथी लोग जानते हैं। खासकर छोटे शहर के ऑर्थोडॉक्स एरिया से निकली हुई एक लड़की, घर से बाहर निकलना, अंतहीन दिन और रातें, भारी भरकम किताबें, कड़ा अनुशासन और बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, वो इस सफ़र का हिस्सा हैं। लेकिन जब पहली बार हम वो वाइट एप्रन पहनते हैं ना, उस एक पल में जो गर्व और जिम्मेदारी का एहसास होता है वो सब कुछ बदल देता है। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरत से विकार प्रशमन उसके बाद आता है। मतलब पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, वो बीमार पड़े ही ना, बीमारी को दूर करना उसके बाद की बात है। और जिस सेवा भावना के उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में आई थी वो हर दिन तब पूरा

0: है जब कोई मरीज ठीक होकर मुस्कुराते हुए घर जाता है। हालांकि हर तबके तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना मेरा उद्देश्य है और उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक ज़िंदगी कम है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर को सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि एम्पैथेटिक भी होना ज़रूरी है, उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, कम से कम सुने वो। सुनना हमारे पेशे में, हमारे फील्ड में बहुत ज़रूरी गुण है और पेशेंट के प्रति सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं यही कहूँगी कि आखिरी में सबसे मेरा यही संदेश है कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।
1: नमस्कार ग्वालियर, मैं डॉक्टर नीतू प्रसाद, आयुर्वेदिक चिकित्सक। डॉक्टर डे के अवसर पर आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर डे हम सभी बंगाल के डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने अपना पूरा जीवन स्वास्थ्य सेवा में लगा दिया। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही था कि सभी स्वस्थ रहें, और ईश्वर ने इस विशिष्ट सेवा के लिए ही हम सभी डॉक्टर्स को बनाया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अस्वस्थ व्यक्ति के विकारों का को दूर करना ही चिकित्सा है। हम अपने वर्क प्लेस पर यही प्रार्थना करते हैं रोज़ कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। कहा भी जाता है कि निरोगी काया ही जीवन में सबसे बड़ा सुख है। तो हम सभी आज इस अवसर पर ये प्रण लें कि हम अपना और अपनों का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। अपने हेल्थ चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं। इससे हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, फिर भी हमें कुछ और होने वाली बीमारियां या किसी और कमी के बारे में पता लगता है तो हम उसका निराकरण कर पाते हैं। कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पुनः आप सभी को डॉक्टर डे की शुभकामनाएं देती हूं। थैंक यू।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार रेडियोलॉजिस्ट। डॉक्टर्स डे के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और विश्वास का माध्यम है। एक डॉक्टर का उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना ही नहीं बल्कि रोगी को आश्वस्त करना, उसे सही दिशा देना और उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी है। मैं रेडियोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। चिकित्सा विज्ञान में अक्सर कहा जाता है कि सही उपचार की शुरुआत सही निदान से होती है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक तकनीकों ने रोगों की पहचान को अधिक सटीक और शीघ्र बनाया है, जिससे अनेक गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाना संभव हुआ है। आज का चिकित्सा तंत्र एक टीम वर्क है, जिसमें चिकित्सक, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मिलकर रोगी की सेवा करते हैं। हम सभी का लक्ष्य एक ही है, रोगी को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन प्रदान करना। डॉक्टर्स डे हमें महान चिकित्सक भारत रत्न डॉक्टर बीसी राय के योगदान की भी याद दिलाता है, जिन्होंने चिकित्सा सेवा को मानवता की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम माना। आइए इस अवसर पर हम सभी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और चिकित्सा कर्मियों के प्रति सम्मान एवं विश्वास बनाए रखने का संकल्प लें। आप सभी को डॉक्टर्स डे की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
3: सखियों, अभी आप सुन रही थी चिकित्सा दिवस पर डॉक्टर से प्राप्त संदेश। सखियों, चुनौतियों की यदि बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये दौर चुनौतियों का दौर कहला सकता है। कहते हैं ना कि ये वक्त है बदलाव का, विकास का। तो सखियों, जब हम बदलाव में विकासशीलता से विकसित अवस्था में प्रवेश करते हैं तो समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। और सखियों, मुझे लगता है कि इस समय बड़ी बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है पेरेंटिंग की। सखियों, यदि पहले के समय की बात की जाए तो कम साधन में 3-4 बच्चे पल जाते थे। खुद हमारे बुज़ुर्ग हमसे कहते हैं कि हमने तो इतने इतने बच्चे पाल लिए, तुम लोग एक या दो बच्चों को पालने में परेशान हो रहे हो। सखियों, सच भी है, हम लोग हर रोज़ एक नए पेरेंटिंग के चैलेंज को लेकर चलते हैं। सखियों, वर्तमान में बच्चों की परवरिश आसान की जगह चुनौतीपूर्ण बन गई है और इसकी कोई एक वजह देना ठीक नहीं है।

क्योंकि इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है परिवारों का बिखरना। सखियों, आज के समय में करियर और नौकरी के लिए अक्सर बच्चे अपना घर छोड़कर दूसरे शहर और दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, मतलब परिवार और समाज से दूर, बस काम करते हैं और रिश्तों के नाम पर सिर्फ दोस्त होते हैं। तो सखियों, ऐसे में तो बच्चों के पालन पोषण पर फ़र्क पड़ता ही है। एक भरे परिवार में बच्चा जो अपने दादा दादी, बुआ चाचा, नाना नानी, मामा मौसी से सीखता है, वो रिश्तों को जानता है, वो समझता है, वो इतने रिश्तों में पलकर बड़ा होता है कि फिर वो और लोगों को देखकर हिचकता नहीं है। उसे सबके साथ में रहना आता है, उसे सामाजिकता आती है, उसे शेयर करना आता है। पर सखियों, अकेले पल रहे बच्चों को ये रिश्ते समझ नहीं आते, इसलिए क्योंकि परिवार में वो कुछ समय के लिए ही मेहमान बनकर आते हैं, वार त्यौहार या किसी कार्यक्रम में। ऐसे में बच्चा बाहरी दुनिया से खुलकर तालमेल नहीं बना पाता। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है भाई, मम्मी पापा बच्चे सभी मोबाइल में व्यस्त हैं, कम समय मिलता है, और बच्चों को तो इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाते हैं तो वो उसमें व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन इतना कम हो जाता है पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में कि बच्चों की एक अलग दुनिया बनती जाती है। ऐसे में बच्चे के अभिभावक सोचते हैं कि हम क्या करें, हम बच्चों के पेरेंट्स बने या बच्चों के दोस्त बने। ऐसे समय में बच्चों और माता पिता के बीच जब बातचीत नहीं हो पाती तो दुनिया बन जाती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों की परवरिश की, जिसे हमें ही पार पाना है। अपने रूटीन वर्क और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के समय को मैनेज करके, बच्चों के दोस्त बनकर और समय पड़ने पर उनके माता पिता बनकर भी सभी कुछ बैलेंस करके चलना होगा, तभी तो हम बेहतर पेरेंटिंग की मिसाल बन पाएंगे।

सखियों, हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो, या हम कहीं घूमने जाएं, यात्रा पर जाएं, या फिर हम शॉपिंग पर जाएं, पर इन

0: सभी में सखियों सफलता तभी मिलती है जब हम इनकी प्लानिंग करते हैं और उसका बजट बनाते हैं, क्योंकि बिना बजट बनाए शॉपिंग करना या यात्रा करना या कोई कार्यक्रम करना, इसका पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। क्योंकि यदि हम पहले बजट बना लेते हैं ना सखियों, तो हमें पता रहता है कि कहाँ पर कितना खर्च करना है, और इससे हमारा पैसा अनावश्यक खर्च नहीं होता और हमारी बचत भी हो जाती है और हम आर्थिक तनाव से बच जाते हैं। इसलिए सखियों, जब भी कहीं घूमने जाएं या कोई कार्यक्रम हो या आप शॉपिंग के लिए जाएं, तो बजट ज़रूर बना कर जाएं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपकी यात्रा सुखद हो, आपके कार्यक्रम भी खुशी खुशी संपन्न हो और आपकी शॉपिंग का मज़ा भी दुगना हो जाए। सखियों, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि अपनी सखी ज्योति को दें अनुमति कार्यक्रम महिला सभा संपन्न करने की। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं देवकी नंद केवट के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है। पहले आप सुनेंगे दादरा और उसके बाद लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे देवकी नंद केवट के स्वर में कुछ लोकगीत। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार स्वाति पराशर, इनके स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे ग्वालियर केंद्र का योगदान है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति बाराशर के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत प्यासा सावन फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की हैं। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब हम आपको सुनवाते हैं चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत। आवाजें येशुदास और हेमंती शुक्ला की हैं, बोल इंदु जैन के और धुन राजकमल की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकारी सहायता पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुँच रही है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कोदो कुटकी उत्पादक करीब 4 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की जाएगी। किसानों को ये राशि 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी जा रही है। महोत्सव स्थल पर कृषि यंत्रों, मिलेट्स उत्पादों और स्व सहायता समूहों के उत्पादों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला।

0: दिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। पिछले वर्ष की तुलना के प्रवेश में 42.03% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 3 महत्वपूर्ण दिवसों पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर कहा कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के समर्पण को असंख्य परिवारों के लिए आशा और नवजीवन का आधार बताया। वहीं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पर उन्होंने कहा कि डाक कर्मचारियों की कर्म निष्ठा ने डाक व्यवस्था को जनता के विश्वास का सशक्त माध्यम बनाया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देवास, हरदा, बैतूल, पांडुर्णा और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है। करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर की टीम जीत के साथ नई शुरुआत करेगी। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर भी चर्चा तेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने जिले के समस्त रेत खदानों में मॉनसून अवधि के दौरान खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आगरमालवा के अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एक दूध डेयरी संचालक पर 1,50,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया और लोक निर्माण विभाग मंत्री और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल 100 दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से लगातार चलने वाला जन अभियान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकार सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल

0: प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा

0: कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
4: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। की योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में

बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मौसम बदल रहा है, कहीं बादलों की आवाजाही है, कहीं बारिश का इंतजार, तो कहीं रिमझिम सी फुहार। ऐसे सुहाने से मौसम में आपकी कुछ चिट्ठियां चलकर हम तक पहुंची हैं और जिनमें लिखे हैं आपके फरमाइशी गीत। ये गीत हम पहुंचाएंगे आप तक। ये खत है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट का। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। और पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सबने सुनना चाहा है कुदरत फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की है। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

फिर वही दिल लाया हूँ। कार्यक्रम का अगला गीत हमने इस फिल्म से लिया है। गायिका हैं आशा भोसले, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। फरमाइश आप सबकी है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को पसंद करते हैं। मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता और नितिन, साथ में है वंशिका दिवाकर। मोटक्का माफी जिला खंडवा से इसी गीत को सुनना चाहा है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु 5 जुलाई रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और दूसरा नंबर है 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड 0755। दिन और समय एक बार फिर सुन लें, 5 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। सूचना समाप्त हुई और अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। हिमालय की गोद में, ये फिल्म का नाम है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, शब्द रचना इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अनुरोध आप सबका है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, दुर्गापारा, संतोषी नगर, रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, भिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य, सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से इसी गीत को पसंद करते हैं, योगेश्वर सिंह भारती, डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, भैरव प्रताप सिंह भारती, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई, दुर्गा और अमिता भारती।

हरियाली और रास्ता, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। पसंद आप सबकी है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु 5 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 077 0755, दूसरा नंबर 2660902। दिन और समय एक बार फिर सुन लें, 5 जुलाई दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड 0755। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है द ट्रेन, आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन का है। पसंद आप सबकी है। प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है, करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में, चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। आप सुनेंगे रात 9:30 पर, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। केकड़ा ये नाटक आप सुनेंगे रात 10 बजे, प्रस्तुतकर्ता दानिश इकबाल। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे अमित मलिक का वायलिन वादन राग जोग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा के साथ की गई भेंटवार्ता, जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए देवकी नंद केवट के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है। पहले आप सुनेंगे दादरा और उसके बाद लोक भजन।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल वेब्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हुए हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। ये आकाशवाणी भोपाल है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं। गायिका हैं स्वाति पाराशर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति पाराशर के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हेमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से।

मेरे हमदम मेरे दोस्त कार्यक्रम का अगला गीत हमने इस फिल्म से लिया है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की हैं।

0: श्रोताओं, फिल्मी गीतों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव, कोदो कुटकी बोनस वितरण और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है।

समीर का लिखा ये गीत है, जतिन ललित का संगीत, फिल्म का नाम है गुलाम, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, संग्रहालय से कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं कड़ी।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और जाकर समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस आई तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर सम्राट ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप कर स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट के दिए अलग महल में रह रही भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला

चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। भुवन मोहिनी की हत्या की कोशिश करने के अपराध में विजय श्रवा ने उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया। सम्राट ने एक दिन भुवन मोहिनी को बुलवाया और चंद्रहासिनी के पिता और इंद्रप्रस्थ महाराज आदित्य सेन की शर्त को बताया। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं और अंतिम कड़ी में।

0: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
1: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
0: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
1: टाला जा सकता है।
0: कैसे?
1: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।
0: मैं सहर्ष अपना शीश देने को तत्पर हूँ।
1: इसका अर्थ है कि मैं भी अपने जीवन से हाथ धो लूं?
0: नहीं सम्राट, यदि देश दासत्व की श्रृंखला से जकड़ा गया तो भावी संतान अपने पूर्व पुरुषों पर हंसेगी। इतिहास के पन्ने साक्षी होंगे उस अधा पतन के जिसका हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। सम्राट, क्या भविष्य में भारतीय संतानें सम्राटों के नाम पर घृणा और तिरस्कार की वर्षा न करेंगे, जब वे इतिहास के पृष्ठों में अतीत के संस्मरणों पर एक दृष्टि डालेंगे तो उन्हें विलासी सम्राटों की काली करतूतों के प्रति घोर विरक्ति नहीं होगी? भावी संतानें न कहेंगी कि इंद्रिय लोलुप शासकों ने सुरा और सुंदरी की उपासना में भारतीय वीरता को कलंकित किया है? इससे तो कहीं अच्छा है कि आज का सम्राट अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करे। जो सम्राट अपनी साम्राज्ञी को भयानक दंड दे सकता है, वो राष्ट्र में एक नर्तकी के मुंह में पड़कर निरपराध प्राणियों की हत्या द्वारा रक्त वैतरणी में क्यों निमग्न होना चाहता है? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि युद्ध के आमंत्रण को स्वीकार करने से कहीं अधिक श्रेयस्कर ये है कि महाराज आदित्य सेन को सूचना भेज दी जाए कि शीघ्र ही उनकी सेवा में भुवन मोहिनी का शीश भेजा जाएगा।
1: नहीं भुवन मोहिनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
0: सम्राट, आपको स्मरण होगा कि इंद्रप्रस्थ के आश्रम में आपने मुझे दो पुरस्कार देने की बात कही थी। एक पुरस्कार तो मैंने ले लिया था, परंतु दूसरा पुरस्कार?
1: मुझे स्मरण है भुवन मोहिनी।
0: तो आज दूसरा पुरस्कार देने का समय आ गया है मेरे प्राण प्रिय। मुझे मृत्युदान दीजिए। मैं नहीं देख सकती कि एक गलित और पतित नर्तकी के जीवन का मोह आपको कर्तव्य कर्म से विलग करता जा रहा है। सत्य ये है कि एक सम्राट के दृष्टि में समस्त शासित प्रजा एक समान है। यदि मेरे तुच्छ शरीर का मोह राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बना तो आपके पवित्र और राष्ट्राभिमानी चरित्र पर कलंक लग जाएगा। एक ओर धर्मपत्नी का न्याय के नाम पर क्रूरतापूर्वक विनाश और दूसरी ओर एक नर्तकी की आसक्ति के कारण राष्ट्र का सर्वनाश। प्रियतम, मैं तुम्हारे चरणों में गिरती हूं। मैं इस जीवन में तुम्हारी बनकर भी अपवित्रतावश तुम्हें स्पर्श करने तक से हिचकती रही हूं। मेरी शून्य छाया तुम्हारे उदास जीवन और चरित्र के लिए मुझे महान कलंक के समान रही है। यदि जनता के सामने अपनी तलवार से मेरा शीश काटकर महाराज आदित्य सेन के समीप भिजवा सके तो इससे अधिक निश्चल चरित्र इतिहास के पन्नों में ढूंढने पर भी मिल सकेगा, मुझे संदेह है।
1: इसका अर्थ है कि मैं अपना हृदय पिंड निकालकर फेंक दूं।

0: अपने जीवन की अकेली वासना जिसके सहारे मैं आज तक जीता रहा हूं, आज कुचल कर देहाभिमान और आसक्ति से विरक्त हो जाऊं और अपने हाथों अपने मृत्यु की आज्ञा प्रदान करूं। जिन आशाओं के तिनके चुनकर मैंने अपने प्राण पखेरों के बसने के लिए स्नेह का नीर बसाया था, उसे न्याय की निष्ठुर दीप शिखा द्वारा झुलसा दूं, भस्म कर दूं।
1: सम्राट, यदि मेरी सर्वनाश से राष्ट्रव्यापी महासमर की अग्नि प्रज्वलित होने के पूर्व ही बुझाई जा सकती हो तो भुवन मोहिनी का शीश धड़ से विलग होने को प्रस्तुत है। महाराज आदित्य सेन की तुष्टि के लिए आपको मेरी मृत्यु का आदेश देना ही होगा
0: और इसके साथ ही मुझे स्वयं के लिए अपनी चिता को अपने हाथों प्रज्वलित भी रखना होगा। प्रिय, विधि विधान के क्रूर निर्णय को स्वीकार करने से पूर्व एक बार जीवन की महान अतृप्ति की तुष्टि के लिए मृग जल का सहारा ही मिलता, क्या ऐसा संभव नहीं था?
1: संभव था प्रिय, किंतु इससे सम्राट के जीवन की महत्ता धूल में मिल जाती। इसलिए यदि जन्मांतर सत्य है, यदि वासना का अस्तित्व जीव को पुनर्जन्म के लिए बाध्य करता है तो इस जीवन में नहीं। सम्राट, फिर कभी हमारा मिलन तो होगा ही, तभी जन्म जन्मांतर के वासना की तुष्टि के क्षण उपस्थित होंगे और मिलन की आशा की शुभ घड़ियां अंतिम मुक्ति की वरदायिनी सिद्ध होंगी।
0: यदि मैं आज सम्राट ना होता तो कितना अच्छा होता। आह, इस महत्ता ने मुझे साधारण मनुष्य के जीवन से भी वंचित कर दिया। जीवन का प्रत्येक क्षण अभिशापित, उत्तप्त और प्रेम के अभाव में बीत गया। सम्राट बनकर भी अपनी आकांक्षाओं को तुष्टि के जल से शीतल न कर सका और मिलन की छलना ने चिर वियोग के सम्मुख ला खड़ा कर दिया। अच्छा प्रिय, हमने जाने अनजाने जिस वृक्ष को पाला पोसा था, स्नेह का जल पिलाकर जिस तरह उसे पल्लवित और कुसुमित किया था, उसी वृक्ष को फल प्राप्त करने से पूर्व ही जड़ से काट कर नष्ट कर देने का पवित्र कर्तव्य मैं करूंगा। तुम मुझे सम्राट बनाकर साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहती, भले ही उभय प्राणियों का जीवन मृत्यु की नीरव गोद में धराशायी हो जाए, मुझे स्वीकार है। आज उस मोहमयी मदिरा के प्रभाव का अंतिम क्षण महान जागरण का संदेश लेकर आया है, स्वागत है उस क्षण का। हम दोनों हृदय के सन्निकट रहकर भी एक दूसरे के न हो पाए, अब एक दूसरे के अंत का कारण बनेंगे। दुनिया की दृष्टि से ओझल होकर महान मिलन सागर में विलीन हो जाएंगे। जाओ, मेरे जीवन के स्नेह की प्रतिमा, आज तक मैं तुम्हारे रक्षक होने का अभिमान हृदय में भरता आया था, किंतु ये क्षण स्नेह के अंतिम मिलन के अंतिम क्षण है। अब तुम्हारा ये रक्षक विजयश्रवा तुम्हारे जीवन के भक्षक के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा।
1: आपके चरणों को प्रणाम प्रियतम। जीवन भर के संचित अपराधों की क्षमा याचना का ये क्षण मूल्यवान है। इस पाप संताप में जीवन को मैं स्वयं जीवित रखने में असमर्थ हो चुकी थी, इसलिए मेरे शीश को अपनी तलवार के झटके से काटना। मैंने सब कुछ पा लिया प्रीतम, प्यार का प्रतिदान, विदा।
0: ठहरो प्रिय, तुम जानती हो वीर की तलवार एक नारी की गर्दन में शोभा नहीं देती, दूसरे नारी हत्या जघन्य अपराध है।
1: सब कुछ है मेरी प्रीतम, किंतु

0: अंतिम लालसा फिर भी बची है। मैं चाहती हूं कि पाप पुण्य के द्वंद से उठकर मेरे प्रियतम स्वयं मेरी गर्दन पर वार करें, ताकि मेरा लाल लहू प्रियतम के चरणों पर गिरे और मेरा अपवित्र जीवन पवित्र हो जाए। अब अंतिम बार मुझे निराश न करना मेरे देवता।
1: अच्छा प्रिय, तुम्हारे अंतिम आग्रह को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा।

0: महामंत्री।
1: आज्ञा सम्राट।
0: हमने ये दो पत्र तैयार करवा दिए हैं। प्रथम उत्तराधिकार पत्र है, जिसके अनुसार मेरा 5 वर्षीय राजकुमार अखिल भारत का सम्राट होगा, और द्वितीय पत्र महाराज आदित्य सेन के लिए है, जिसमें उनके प्रतिशोध पूर्ण भावना की पूर्ति का अंतिम आश्वासन भुवन मोहिनी का शीश भेजने का समाचार है। महामंत्री, कल प्रभात काल के पश्चात एक जनसाधारण और सामूहिक जनता की सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें महाराज आदित्य सेन के वैर विग्रह पूर्ण पत्र के आधार पर धारा नगरी के सम्राट की ओर से दोनों राज परिवार के बीच स्नेह संबंध स्थापित रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा, और महाराज आदित्य सेन की आंतरिक तुष्टि के लिए भुवन मोहिनी का रक्त से लथपथ शीश। आज तक मैंने गद्दी की सेवा निश्चल और न्यायपूर्ण हृदय से की है, किंतु अब मेरा मनुष्यत्व मुझसे विदा ले रहा है और उसके स्थान पर एक ऐसी निष्क्रियता प्रवेश कर रही है जो श्वासों के बचते हुए तार को किसी भी क्षण निश्चेष्ट कर देगी। इस राज सिंहासन को प्रणाम करता हूं, जिसके प्रति मेरे पूर्वज सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और व्रती रहे हैं। मैंने इस परंपरा को स्थापित रखने का मात्र अकिंचन प्रयास किया है।
1: धारा नगरी के सम्मानीय नागरिकगण, आज इस अति विशेष जनसभा में स्वयं सम्राट विजय श्रोवा उपस्थित हैं, और उपस्थित हैं देवी भुवन मोहिनी। आपको ज्ञात है कि देवी भुवन मोहिनी की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में सम्राट ने अपनी पत्नी चंद्रहासिनी और उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला को मृत्युदंड दिया था। इससे कुपित होकर चंद्रहासिनी देवी के पिता इंद्रप्रस्थ नरेश महाराज आदित्य सेन ने हमारे राज पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी है। महाराज आदित्य सेन ने चेतावनी दी है कि या तो सम्राट विजयश्रवा देवी भुवन मोहिनी का विच्छेदित शीश भिजवाएं, या फिर उनका आक्रमण सहने के लिए तैयार रहें। प्रिय नागरिकों, हमारे जनप्रिय सम्राट विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ नरेश की इस चेतावनी से चिंतित हो गए कि यदि भारत की इन दो शक्तिशाली राज्यों में आपस में युद्ध हुआ तो इसका लाभ हूण अवश्य उठाएंगे। इसीलिए हमारे सम्राट युद्ध को टालना चाहते थे, परंतु इसके पहले कि वो कोई निर्णय लेते, देवी भुवन मोहिनी ने स्वयं अपने आप को आत्मबलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया है। देवी भुवन मोहिनी लगातार राष्ट्रहित में अपने आप को समर्पित करती आई हैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भुवन मोहिनी को मत मारिए सम्राट,

0: मोहिनी का बलिदान नहीं चाहते।
1: ये बलिदान नहीं होना चाहिए।
0: हाँ, ये बलिदान नहीं होना चाहिए। मत मारिए महाराज, मत मारिए।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आप जो कह रहे हैं हम भी वही चाहते। ऐसा करते समय हमारी आत्मा फट रही है, हमारा हृदय चीत्कार कर रहा है, परंतु हम विवश हैं। हमारे और देवी भुवन मोहिनी के बीच क्या संबंध है आप भली भांति जानते हैं। यथार्थ है कि राज परिवार की प्रतिष्ठा और राष्ट्र के व्यापक हित में हमने सदैव भुवन मोहिनी को दुखी दिए हैं, सुख कभी नहीं। देवी भुवन मोहिनी ने भी कभी सुख के बारे में नहीं सोचा। कभी नारी मर्यादा तो कभी राज परिवार की मर्यादा, इन मर्यादाओं के व्यवहार में उन्होंने सदा अपने आप को व्यय ही किया है, अर्जित कुछ नहीं किया। देवी भुवन मोहिनी आज भी चाहें, अब भी चाहें तो मुझसे लिए गए वचन से मुझे मुक्त कर सकती हैं। हम कैसे भी सही भावी परिस्थितियों से निपटने में जुट जाएंगे, अपने राष्ट्र की एकजुटता को बनाए रखेंगे। भुवन मोहिनी, एक बार फिर से मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे द्वारा दिए गए वचन से मुझे मुक्त करो।
3: नहीं सम्राट, मैं स्थित प्रज्ञ हूं और आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी रहिए। मुझे गर्व है कि मेरे रक्त का प्रत्येक बिंदु हिंसा के अपार सागर को रोक पाने में समर्थ हो रहा है। पूज्य सम्राट, मेरे जीवन के समस्त अपराधों को क्षमा करें और अपनी तीक्ष्ण कटार से मेरा पतित शीश काटकर मुझे गौरवपूर्ण मृत्यु का दान दें।
2: आज मैं ये क्या करने चला हूं? मेरे हाथ में ये कटार और मेरे समक्ष अपना शीश कटाने के लिए अवनत तुम भुवन मोहिनी। एक ही पल में क्या से क्या हो जाएगा? तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी जिह्वा, सब कुछ शांत हो जाएगा।
3: मेरे स्वामी, परीक्षा की गहनतम घड़ी में आपका विचलन शोभा नहीं देता। आपकी दुर्बलता कहीं मुझे लज्जित न कर दे। मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहती। वार करिए मेरे प्रभु, वार करिए।
2: जिस शरीर को मैंने अपने हृदय से भी बढ़कर प्यार किया, आज उसी के विनाश का कठोर दायित्व निभाने की शक्ति दो ईश्वर। भुवन मोहिनी,

0: महामंत्री, पूर्व निश्चित सैनिकों को आदेश दीजिए कि इसी क्षण भुवन मोहिनी का मुंडरुंड लेकर महाराज आदित्य सेन की सेवाओं में उपस्थित हो।
1: आज्ञा सम्राट।

आज मेरी प्रियतमा नश्वर जीवन से सदा के लिए विदा ले चुकी है। अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं बचा। एक मानव सम्राट बनकर कर्तव्य के लिए मुझे जिस तरह निर्मम बनना पड़ा, मानो मेरा मनुष्यत्व सदा सदा के लिए छिन गया हो। संज्ञा शून्य, भावनाहीन और ये नीरस जीवन लेकर मैं करूंगा ही क्या? मेरे अटके हुए ममता के धागे तो उसी समय टूट गए थे जब मेरी तलवार भुवन मोहिनी की गर्दन पर वार करने के लिए उठी थी। जीवित भुवन मोहिनी की आवश्यकता तो जीवित विजयश्रवा के लिए थी। जब भुवन मोहिनी ही नहीं रही तब विजय श्रवा ही क्यों जीवित रहे? आह, भुवन मोहिनी के बिना पंख विहीन पक्षी की भांति हो गया हूं मैं। अब भुवन मोहिनी का चित्र मात्र एक वस्तु है जिसे मेरी आंखें स्वीकार कर सकती हैं। जब तक सांसों की डोर बनी है भुवन मोहिनी, मेरी आंखों के सामने तुम ही रहोगी, मात्र तुम। जैसी तुम निष्प्राण कठोर प्रस्तर, वैसा ही मैं भी हो रहा हूं, निष्प्राण कठोर।

0: नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी संध्याकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 144 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर डॉ. यादव ने करीब 350 करोड़ रुपए की लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि इस पहल ने गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। श्री शाह ने नई दिल्ली में समिति के साथ हुई बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। और मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी की खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में। ऑल इंडिया रेडियो का वो प्रोग्राम जो मेरे और आप जैसे नौजवानों के लिए बना है। मैं आपकी दोस्त तेजस्वी आज आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, क्योंकि हम बात करेंगे दो ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जो मिलकर इंडिया का फ्यूचर बदल रहे हैं। पहला सबसे बड़ा एस्पेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में AI सिर्फ एक बजवर्ड नहीं रह गया है, ये कुछ सालों पहले तक की डेटा साइंस की ब्रांच को तोड़कर 10 कदम आगे निकलकर एक रिवॉल्यूशन में तब्दील हो चुका है। हम अपनी आंखों के सामने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चालू होता देख रहे हैं। हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह AI भी कई जॉब्स खत्म कर रहा है, मार्केट रिक्वायरमेंट बदल रहा है और नई स्किल्स की डिमांड कर रहा है। तो अब युवा पीढ़ी के लिए ये सवाल उठता है कि क्या AI हमारा दोस्त है?

दुश्मन। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी। बात चाहे चंद्रयान 3 के मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की हो या चंद्रयान 2 के सबस्ट्रेट सरफेस में पानी की खोज करने की हो, इंडिया ने स्पेस टेक में अपनी छाप छोड़ना चालू कर दी है और अपने अगले वीनस मिशन शुक्रयान के साथ इसे और आगे ले जाने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज के इस अपने कार्यक्रम में हम इन डुअल एस्पेक्ट्स के संगम को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

पहले बात करते हैं एआई की, जो अभी हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जिस डिग्री या जॉब की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगले 10 साल में रहेगी भी कि नहीं, दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगा। हाल ही में नितिन सेठ, जो एक ई कॉमर्स कंपनी के फॉर्मर सीओओ हैं, उनका यूएसए में एक इवेंट का एक्सपीरियंस पढ़ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को में पहली बार सेल्फ ड्राइविंग कार्स की सवारी करने का मौका मिला, और जिस प्रिसीजन और ईज के साथ उन गाड़ियों ने ट्रैफिक और कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन नेविगेट किए, वो ये देखकर अचंभित रह गए। वो कहते हैं कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चलते रहना देखकर उन्हें शुरुआत में अटपटा ज़रूर लगा, पर बहुत जल्द उस चीज़ की आदत लग गई और वो उस गाड़ी पर 100% ट्रस्ट के साथ सवारी का मज़ा लेने लगे। पर जब वो इस इवेंट से अपनी रेंटल कैब में लौट रहे थे तो उन्होंने अपना अनुभव अपने कैब ड्राइवर के साथ शेयर किया, पर कैब ड्राइवर ने नितिन सेठ का एंथुजियाज्म सांझा नहीं किया।

करे भी क्यों, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स उसकी नौकरी पर सीधा वार है। उस ड्राइवर को ये डर था कि 2 साल बाद तक सेल्फ ड्राइविंग कार्स उसकी नौकरी ख़त्म कर देगी और उसे अपने देश वापस लौट जाना पड़ेगा। AI अब केवल मानवीय क्षमताओं को मिमिक नहीं कर रहा है, ये उस गति से विकसित हो रहा है जहां उन क्षेत्रों में हमसे बेहतर प्रदर्शन करने लगा है जिन्हें कभी ह्यूमन यूनिकनेस का शिखर माना जाता था। क्रिएटिविटी से लेके इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग तक AI उन सीमाओं को पार कर रहा है जिन्हें हमें कभी अटूट माना करते थे। मानवीय दृष्टिकोण से AI हमारे ह्यूमन एज को चैलेंज कर रहा है। जिन स्किल्स को हम अपनी यूनिक स्ट्रेंथ मानते थे अब वो हमें अपर हैंड दिलाने में नाकाम साबित हो रही हैं। AI रिवॉल्यूशन पिछले हुए 3 रिवॉल्यूशन से इसलिए भी अलग है क्योंकि अब तक के हर एक रिवॉल्यूशन ने ब्लू कॉलर जॉब्स को डिस्प्लेस किया, पर ये पहला ऐसा रिवॉल्यूशन है जो नॉलेज वर्कर्स या वाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस करेगा। ह्यूमन एज इन द AI एज बुक के अनुसार अनुमानित रूप से 2040 तक 80% वाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो जाएंगी। उसकी जगह प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, AI एथिक्स एंड कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, ह्यूमन AI इंटरैक्शन डिजाइनर जैसे रोल सामने आएंगे। ये चेंज अचानक से ना होके ग्रेजुअल होगा और इस चेंज की शुरुआत हम अपनी आंखों देखी देख ही रहे हैं। इस AI एज में युवा अपने करियर को कैसे नेविगेट करें, आइए जानते हैं इस गीत के बाद।

It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. ऐसा कहना था चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का इजाद किया।

0: बदलाव को अपनाना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों से दूर नहीं जाना चाहते जो आरामदायक और फेमिलियर महसूस होती हैं। लेकिन असली सफलता माइंडसेट शिफ्ट के साथ आती है। यह तब होता है जब हम बदलाव को स्वीकार करना और उसे पूरी तरह अपनाना शुरू करते हैं। जब भी आपके करियर में रुकाव आता दिखे तो अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा और निरंतर बढ़ाते रहना होगा, जिससे हम इस एआई की एज में एआई से पीछे ना रह जाएं। ये समय है जॉब क्रिएशन का, एंटरप्रेन्योर्स का, जो एआई के माध्यम से नए ब्रेक थ्रूज कर सकें। ये समय है अपनी ह्यूमन रूट्स पर जाने का, अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और इंस्टीट्यूशन को जगाने का। जैसे कि मानव जाति ने आग की खोज करके खाना बनाना और सेटलमेंट्स बसाना शुरू किया, बस वैसे ही हमें इन एआई टूल्स का उपयोग करके अपना भविष्य बनाना शुरू करना होगा। आज हमारे सामने जो प्रश्न है वो महाभारत में अर्जुन की दुविधा के समान है। इस बदलते भविष्य में मेरी क्या भूमिका है? क्या मैं ऐसी दुनिया में रेलेवेंट रह सकता हूँ जहाँ मशीनें मुझसे तेजी से सीखती हैं? क्या होगा यदि मेरी स्किल्स या मेरा सेंस ऑफ सेल्फ भी अप्रासंगिक हो जाए? संकट के उस क्षण में कृष्ण ने अर्जुन के साथ भगवद गीता का अद्भुत ज्ञान साझा किया, जो सिर्फ एक फिलोसॉफिकल उपदेश नहीं बल्कि किसी कार्य को क्लैरिटी, करेज और इनर अलाइनमेंट के साथ कैसे करें इसकी रूपरेखा भी है। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू हैव द राइट टू एक्शन बट नॉट टू इट्स फ्रूट। इसी के साथ इस विषय को मैं देती हूँ विराम। बातें और भी होंगी, पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं युवा कवि कृष्णा शर्मा। आइए हम उनसे सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं।
1: इश्क न पैदा होता है और ना ही मरता है, बस समय के साथ अपना रूप बदलता है। कभी मोहब्बत, कभी इबादत, तो कभी शहादत कहलाता है। उसी के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक ही है इश्क। वीणा का पावन राग इश्क, पानी में जलती आग इश्क, वन का राजन वह बाघ इश्क, फूलों से सजता बाग इश्क। तुम प्रेम उसे क्यों कहते हो जिस मिथ्या में तुम रहते हो, स्थिर होने की नाट्य प्रस्तुति कर गंगा से बहते हो। क्या कभी चांद को देखा है जो सूर्य स्पर्श की आशा है, जिसे कहते तुम भाव मात्र वह स्वयं प्रभु की भाषा है। स्वर से सजता वह गीत कोई, मानो जन्मों की रीत कोई, जिससे ना हो भयभीत कोई, हर हार में हो एक जीत कोई। मीरा के मन में कृष्ण रहे, फिर और कहाँ कोई प्रश्न रहे, जब प्रथम पृष्ठ पर प्रेम नाम, क्यों फिर कोई भी कष्ट रहे। राधा ने राह बनाई तो बस कृष्ण कृष्ण, बस कृष्ण कृष्ण ही नाम लिया, पर कृष्ण का मार्ग स्वयं राधा, सृष्टि ने भी यह जान लिया। ऋतु की पहली वर्षा से माटी जो महक सी जाती है, उस महक का जो मैं करूं इत्र, वही इश्क सुगंध कहलाती है। क्या कभी चकोर को समझा है क्यों स्वयं को वह तड़पाती है, मयंक मिलन के मोह में मृत्यु तक उड़ती जाती है। महिवाल मोह में सोहनी की मटकी भी पकना पाई रे, और इसी इश्क में रहकर वे चिनाब में सदा समाई रे। इश्क इबादत में अंतर करने वाला अज्ञानी है, इश्क इबादत में अंतर करने वाला अज्ञानी है, और ईश्वर भी वंचित रह गए जिससे, वही तो प्रेम कहानी है, वही तो प्रेम कहानी है। मित्रों, इश्क की बात तो हो गई, पर क्या हो यदि किसी को इश्क और कर्म के बीच चुनाव करना पड़े? ऐसी ही एक परिस्थिति आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है प्रेम और कर्तव्य। मथुरा के गोपाला वृंदावन के लाडले, कान्हा था नाम जिनका केशव युद्ध पे चले, कृष्ण की विदाई से यह प्रकृति निराश है, भूमि दुख से सूखती और सजलाकाश है, माखन की मटकियां भी टूट तरस जाएंगी, इंद्र की इंद्राणियां भी रोते बरस जाएंगी, गोपियों के अश्रुओं से गंगा बहती जाएगी, जमुना के जल में अब मिठास न रह पाएगी। कृष्ण के जिस रूप की सृष्टि यह दीवानी है, वही रूप जिसके चरणों में बरसाने की महारानी है। ठहरो कृष्ण, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा, मनुष्य के इस मन

में मात्र मोह घर बनाएगा। श्याम चक्षु में न अपितु अश्रुओं का स्थान है। विष्णु भी विवश हुए विधि का यह विधान है। कंस की हो क्रूरता या कौरवों का कर्म हो, विनाश पाप का जहां वहीं सनातन धर्म हो। पाप का अब अंत हो, धर्म की हो स्थापना, प्रभु स्वयं आएंगे जब अधर्म छाएगा घना। करने अंत कंस का कान्हा चले छोड़ सब परिवार, प्रेम पुष्प सुख के दूर जा रहे रे अब। राधे को छोड़कर नाते सबसे तोड़कर, माधव जाते हैं देखो सबसे मुख मोड़कर। बंसी वह प्रेम की मुरलीधर अब छोड़ दो, भावनाएं वश में करो नाते सबसे तोड़ दो। प्रेम वह अटूट था पर धर्म का सवाल था, प्रेम वह अटूट था पर धर्म का सवाल था। लक्ष्य के समक्ष पार्थ कुछ भी ना विशाल था, कुछ भी ना विशाल था। मित्रों, भगवान कृष्ण को तो प्रेम और कर्तव्य के बीच में चुनना था, परंतु अर्जुन को उससे भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उसके समक्ष उसी के गुरु, परिवारजन एवं मित्रगण थे। इसी दुविधा को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसका शीर्षक है अंतिम युद्ध। कुरुक्षेत्र में खड़े रे कान्हा, चिंतित उनका पार्थ है। कैसे वह समझाएं कि जो हो रहा वह यथार्थ है। हे माधव, यह क्या पीड़ा है, कैसे मैं सह पाऊंगा। स्वप्न में भी न सोचा था कि ऐसे मार्ग पर आऊंगा। खड़े हुए मुस्काए माधव भी एक बात बताते हैं, निंद्रा में देखे हुए स्वप्न पूरे कहाँ हो पाते हैं। तुमने अपना कर्म किया, बस यह पूजा पाठ है। बीत गए हैं दशम दिवस, शेष मात्र अब आठ हैं। इस सप्ताह तुम खो दोगे जीवन का सारा चैन प्रिय, पर अंतिम दिन को पूजेंगे स्वयं तेरे यह नैन प्रिय। तो उठो पार्थ और प्रहार करो, शत्रु पर पुनः वार करो, हर शत्रु का संहार करो। तुम ही तो हो सर्वश्रेष्ठ, संसार को यह सिद्ध सार करो। अत्यंत पीड़ा पाओगे जब कुरुक्षेत्र में जाओगे, पर लक्ष्य प्रेम में पीड़ा क्या, स्वयं को ही भूल जाओगे। ना भूल अश्रु पांचाली के जो तेरे चक्षु से बहते हैं, ना दुग्धवत वस्त्र कुंती के तन से जो लिपटे रहते हैं। अंतिम अवसर बाकी है, पथ पर अग्रसर पार्थ हो। आदेश जगन्नाथ का पालन से कर्म फल विख्यात हो। अंत समय हो सुखद युद्ध का आज ऐसा संघर्ष हो। फल ना सही पर आशा है कि कर्म का विशुद्ध निष्कर्ष हो। राम और रावण, यूं तो दो नाम हैं, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक धर्म और एक अधर्म, परंतु कलयुग में ये दोनों ही हमारे अंतर्मन में रहते हैं। इसी विचार से अगली कविता का शीर्षक है भक्त रावण। सत्य सदा ही अमर रहे, संतों से यह संसार चले। सावन में सुख ना बहे कभी, और सूरज भी ना कभी ढले। समक्ष मैं शीश नवाता हूँ, और मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। जब सुनूं कथाएं वीरों की, मैं हिंद कवि बन जाता हूँ। फिर प्रश्न स्वयं से करता हूँ, चिंतन में जीता मरता हूँ। ज्ञानी तो कहता हूँ खुद को, फिर पाप घड़ा क्यों भरता हूँ। ज्ञानी ना कोई जाति है, अपितु एक प्रजाति है। जो जग को मार्ग दिखाती है, हर कला जहाँ पूजी जाती है। जिस दुविधा में फंस जाऊं, कृष्ण को ही बस आस लगाऊं। मक्खन का मैं भोग चढ़ाऊं, गीता पर ना पढ़ना चाहूं। नारी का ना मान करूं, अपने पद पर अभिमान करूं। फिर राम नहीं मैं रावण हूं, फिर किस प्रकार से श्रावण हूं। जब शूर्पणखा अपमानित हुई, मैंने भी शस्त्र उठाए थे। पर सीता का जब हरण किया, विचार न धर्म के आए थे। शिव तांडव का लेखक होकर, शिव से सीख न पाता हूँ। कि हर नारी में देवी है, अंततः नवरात पश्चात जलाया जाता हूँ। शास्त्र पढ़े और शस्त्र उठाए, ब्राह्मण भी मैं और क्षत्रिय मैं। पर पाप पुण्य में भेद कराना, तो कैसा हूँ अत्रेय मैं। सत्य धर्म का समझा मैंने, सर्वोत्तम से जब मिलन हुआ। मोह मिटे संसार के जब,
पुरुषोत्तम हाथों मरण हुआ, पुरुषोत्तम राम हाथों।

संभावनाएं अनंत हैं, स्काई इज द लिमिट, पर क्या आप ऐसा सोचने में सक्षम हैं? दोस्तों, दुनिया बदलाव की कगार पर है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस बदलाव को स्वीकार कर आसमान की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखते हैं या नहीं। इस बारे में आप ज़रूर सोचें और अपने दोस्तों से भी बात करें। इसी मोड़ पर लेते हैं हम विराम। कल मिलते हैं कुछ नई जानकारियों और गीतों के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ मैं, तेजस्वी, आपसे विदा। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम और अलीशा चनाई की आवाजों में। फिल्म का नाम अजब प्रेम की गजब कहानी। इस गीत को लिखा आशीष पंडित ने, संगीत प्रीतम का।

हैप्पी न्यू ईयर। लीजिए इस फिल्म में सुनिए, इरशाद कामिल के बोल, संगीत विशाल शेखर का है, आवाज़ें श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। गीत के बोल इरशाद कामिल के हैं, अंतरा मित्रा और मोहित चौहान के आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम राजनीति।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत पलक मुछाल और अरिजीत सिंह ने गाया है। नगमा निगार इरशाद कामिल, संगीत जीत गांगुली का है, आवाज़ें पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की है। फिल्म है आशिकी 2।

पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में गाए आशिकी 2 फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3,941 कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खाते में 282.99 लाख की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 के अंतर्गत 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि इस

पहल ने गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्थान के दौसा में ऋषिकेश से इंदौर आ रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से यात्रियों के निधन पर गहन दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायलों और सभी यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आधारभूत सुविधाएं देना नहीं बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.3 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
3: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
3: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
3: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
3: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
3: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
3: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
3: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं,

0: एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी,
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है।

0: कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: आह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी।
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल

0: और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगोई

0: है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
0: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
0: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
0: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
0: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला। फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है, अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों, इस ऊंची चट्टान

0: मकान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
1: लेकिन मुखिया जी,
0: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
1: जी मगर
0: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
2: मुखिया जी,
0: अब क्या है?
2: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
0: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी, मुखिया जी,
0: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
0: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
0: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
0: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह, मैं उसे पकड़ लूं तो मैं भाई। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
3: आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत लेकर हम आए हैं साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की फिल्म इज्जत।

कार्यक्रम का अगला गीत अजनबी फिल्म से हमने लिया है। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, संगीत सलील चौधरी का, फिल्म थी आनंद। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: आपको एक सूचना दे दें, गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुमंडित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 2660901 और 2660902। भोपाल का SDG कोड है 0755। दिन ब समय एक बार पुनः सुन ले, दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। फ़ोन नंबर से 2660901 और 2660902। भोपाल का STD कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
3: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
2: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
3: भीगते झूमते नाचे गाएं,
2: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
3: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:05 हुए हैं, ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम, जिसमें सुनिएगा जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण विषय पर डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:00। 8:15 पर फिल्म संगीत चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। केकड़ा, ससीन कुमार बाड़े का लिखा ये नाटक आप सुन सकते हैं आज रात 10:00, प्रस्तुतकर्ता दानिश अग्रवाल। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा अमित मलिक का वायलिन वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, इसे आप सुन सकते हैं सुबह 8:30। 9:02 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुगम संगीत में 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे अश्विन रंगनेकर के गाए कुछ भजन, खो गया सब कुछ। अलमासुद्दीन सिद्दीकी का लिखा है नाटक आप सुन सकते हैं सुबह 9:30, प्रस्तुतकर्ता चितेंद्र स्वरूप राजन। का सुबह 10:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में सुनिएगा वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह, इस विषय पर डॉक्टर ऋतु पांडे से ली गई भेंटवार्ता। अब डालते हैं नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कल के कुछ कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसका प्रसारण होगा सुबह 11:00। 12:00 सुनिए आपकी फरमाइश। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 आप सुन सकते हैं हंसना मना है। 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी जबलपुर की ही प्रस्तुति में 1:30 सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। 2:00 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, समय रहेगा दिन में 2:30। 5:33 पर और 6:30 पुनः सुनिएगा फिल्म संगीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:00। कुछ और फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकते हैं रात 8:15 और रात 9:30। साथ ही साथ आपकी पसंद के फिल्मी गाने आप सुनेंगे कल रात 10:00 कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे कल रात 10:30 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शासन और नागरिक सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी पहल। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में धान महोत्सव में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, उज्जैन बालाघाट सहित 7 जिलों में झमाझम बारिश, बालाघाट डिंडोरी में कल अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरा होने पर इसे शासन और नागरिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसने शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने नवाचार की संस्कृति को गांव और छोटे शहरों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इससे AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों में भी तेजी से विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से हो रहा है। 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि AI क्षेत्र के लिए 45,000 से अधिक GPU स्थापित किए गए हैं और देश में 2,23,000 से अधिक स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली 6-लेन सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,969 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 7,145 करोड़ रुपये है। इससे कानपुर कबराई का सफर 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। ये परियोजना भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और सागर भोपाल तक कनेक्टिविटी मजबूत करेगी।
3: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों के वर्षों के समर्पण और परिश्रम की सुखद परिणति है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से समाज का ऋण चुकाने और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना युवाओं की ऊर्जा और प्रतिबद्धता से ही साकार होगी।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 145 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। डॉक्टर यादव ने इस

0: मौके पर करीब 350 करोड़ की लागत से 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। ये राशि 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी गई है। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
1: मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से, हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपए की राशि अंतरित की जा रही।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले के तलून में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़वानी और निमाड़ की धरती संतों और लोक परंपराओं से समृद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। राजस्थान के दौसा जिले में कल रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में प्रदेश के कई यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से संपर्क बनाए रखते हुए प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त और रोजगार उन्मुखी बनाना जरूरी है। मंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन के तहत प्रदेश में 1,44,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने पंचायतों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए। विदिशा जिले में हृदय रोग से पीड़ित 2.5 माह की मासूम अवनी को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अहमदाबाद भेजा गया। अवनी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क होगा। टीम ने बच्ची को उसके माता पिता सहित सुरक्षित भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से उसे अहमदाबाद रवाना किया गया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटना मरीजों को बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। बात खेल की। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर रहेगी। मोहम्मद कोनेन दाद फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब एक साल से नंबर 1 पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल पहले और शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। आज उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि रहे। खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन लाइए चाय पीजिए अभियान शुरू किया है। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर में पॉलीथीन जमा करने वालों को निःशुल्क चाय दी जा रही है। डॉक्टर्स डे पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सक कल्याण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा में इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम, जामुन और नीम जैसे औषधीय पौधे रोपित किए गए। राजगढ़ में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मानसून सत्र के दौरान रेत उत्खनन पर रोक लगाई। 1 अक्टूबर तक जिले की समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। बैतूल जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत करीब 1,65,000 बच्चों को पोलियो की

दबा पिलाई गई और शिवपुरी शहर के मनियर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्व टीम ने जेसीबी से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को हटाया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भैया जीजी बिन्ना जनों को आरती जीजी की राम राम पहुँचे। भैया जीजी हरो, देखो आज है अंतर्राष्ट्रीय जोग दिवस, यानी कि सभी को खूब अच्छे से हंस लेने हैं, और जब जोक होते हैं तो अपन को हंसी आता ही है। पर कई बार देखो भैया ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी सी बातों में अपन को तनाव बन जाते हैं, और कुछ लोग तो ज़्यादा ही तनाव बना लेते हैं। लेकिन जब अपन अच्छे से हंसी खुशी के साथ एक दूसरे को जोक सुनाते हैं तो हंसी तो आता ही है, और हंसी आते हैं तो ना केवल अपने देखो स्वस्थ बने रहते हैं, बल्कि अपन दूसरों को भी अच्छे अच्छे जोक चुटकुला सुना के स्वस्थ रख सकते हैं। और जा दिवस मनावे को जय उद्देश्य है कि हम एक दूसरे को जोक या चुटकुले सुनावें और खुद भी सुनवें, और खूब हंस खुश के अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, खुशी आपस में बनाए रखें, और आपसी भाईचारे के द्वारा वैश्विक स्तर पे अपन सबको आगे बढ़ाएं और खूब खुश रखें। देखो ई दिवस को मनावे को सबसे बड़ो जो लाभ का होते है पता, एक तो अपन को तनाव से मुक्ति मिल जाते है, दूसरे अपन में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाते हैं, तो अपन को जो जल्दी जल्दी जो रोग लगा थे ना उनको नहीं लगा, जो खूब हंसत रहते हैं, और ये दर्द निवारक भी हैं कि अपन को कहूँ दर्द हो रहा हो, सिर में हो रहा हो, हाथ गोड़े में हो रहा हो, लेकिन जब अपन हंसी खुशी से सबके साथ मसी मजाक कराते हैं तो अपन के ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो सब लोगों को खूब जोक और चुटकुले सुनाओ और खुद भी सुनो, और पूरे समाज राष्ट्र को तनाव मुक्त रखो और स्वस्थ रखो, अपनों तो जय उद्देश्य है। और भैया हरो, देखो आज अपन सुन लेते हैं एक गणेश वंदना बारेलाल प्रजापति और साथियों के स्वर में।

समाचारन की तो सुनत हैं बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं आरती शर्मा। पीएम डिजिटल इंडिया अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहो है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होवे पे उन्होंने कहो कि ई पहल ने गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त बनाओ है। डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों लो पहुँच रही है। इसे शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि व्यापार में भी सुधार भाव है। प्रधानमंत्री ने कहो है कि AI सेमी कंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटर जैसी तकनीकों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उतई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होवे पर प्रसन्नता व्यक्त करी है। उनने कहो है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताओ है कि देश में 81% डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से हो रहा है। 218,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। उनने बताओ है कि AI के क्षेत्र में 45,000 से अधिक GPU स्थापित करे गए हैं और देश में 223,000 से अधिक स्टार्टअप शुरू भए हैं। CM सिवनी विकास कार्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 1,44,00,000 की लागत के 43 विकास कार्यों को भूमि पूजन करो हुए। ई मौके पर डॉक्टर यादव ने करीब 350,00,000,000 की लागत के 586 विकास कार्यों को लोकार्पण भी करो। मुख्यमंत्री ने कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3,00,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित करी है। जा राशि 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी गई है। महोत्सव स्थल पर कृषि यंत्रों और मिलेट्स उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। CM नवकरणी ऊर्जा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहो है कि प्रदेश ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध करावे की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करी है। नई दिल्ली में आयोजित प्री बिड मीटिंग को वर्चुअल संशोधित करत भए डॉक्टर यादव ने कहो कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश में सबसे कम सौर टैरिफ स्थापित करो है। मुरैना की स्टोरेज प्लस परियोजना के लाने 2 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट PPA हाउ है। बैठक में टाटा पावर, अडानी, ग्रीन्स, NTPC सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उच्च शिक्षा में प्रवेश। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नयो रिकॉर्ड बनाओ है। सत्र 2026-27 में अब लो 548,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराओ है। इनमें 293,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लो है। पिछले वर्ष की तुलना में प्रवेश में 42.03% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज भई है। मनरेगा की जगह जी राम जी। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिल है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इको ऐतिहासिक दिन बताओ है। सरकार ने इके लाने 95,600,00,000 रुपए से अधिक को प्रावधान करो है। CM बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 3 महत्वपूर्ण दिवसों पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उनने चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस पर कहो है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के समर्पण और संघ परिवारों के लाने आशा और नवजीवन को आधार बताओ है। उतई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पर उनने कहो है कि डाक कर्मचारियों की कर्म निष्ठा ने डाक व्यवस्था को जनता के विश्वास को एक सशक्त माध्यम बनाओ है। मौसम को हाल। अब बात मौसम की है। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करी गई है। देवास, हरदा, बैतूल, पांडुना, छिंदवाड़ा में भारी बारिश को अनुमान है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई है। क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज को पहला मुकाबला आज चेस्टर ली स्ट्रीट में खेलो जे है। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू हुई है। हॉकी। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद कोनैन दात का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में भाव है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर जे है। मोहम्मद कोनैन दात फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम को प्रतिनिधित्व कर हैं। बुंदेली समाचार इतनी संपन्न होते हैं।

0: बुंदेली समाचार।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भैया जी, हर रोज देखो, जब अपन जैविक रूप से जो अपन को फसल को उत्पादन होते हैं, अगर उनको अपन सेवन कर रहे थे तो ना केवल अपने स्वास्थ्य के लाने वो महत्वपूर्ण होते, बल्कि अपन को उसे अधिक आर्थिक लाभ भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही कछु विशेष प्रकार की जानकारी लेके आज हमारे संगे उपस्थित हुए हैं विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा, उनसे बातचीत करिए आनंद कृष्ण वर्मा ने। तो सुनाते हैं भेंटवार्ता, जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य पर्यावरण, गजराज सिंह वर्मा से आनंद कृष्ण वर्मा की बातचीत।
5: किसान भाइयों बहनों, इस समय हमारे प्रदेश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है, जो कि 1 जून से 30 जून तक चल रहा है। और इस अभियान के अंतर्गत किसान विकास केंद्र और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों से संपर्क करते हुए खेतों को बचाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इन सब में सबसे अधिक जो जोर दिया जा रहा है वो है जैविक खेती। जैविक तरीक़ा से खेती करके हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को और फसल की गुणवत्ता को अच्छा रख सकते हैं, और इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है उन्नत कृषक श्री गजराज सिंह वर्मा को, जो कोलास कला जिला सीहोर में खेती करते हैं, किसानी करते हैं और उन्नत कृषक के रूप में जाने जाते हैं। गजराज सिंह वर्मा जी से हम लोग चर्चा करेंगे जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण। तो वर्मा साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार
6: जी। नमस्कार सर।
5: वर्मा जी, ये बताएं कि सबसे पहले कि आप जैविक तरीक़ा से खेती करने के बारे में कैसे आपको प्रेरणा मिली है, जैविक तरीक़ा से खेती करना आपने कैसे शुरू किया?
6: एक तो जैविक खेती करने से मतलब जो उसमें उगाए गए अनाज रहते हैं उसको खाने से एक तो अपन स्वस्थ रहते हैं, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है और जो अपने प्रकृति है वो भी बचती है। केमिकल, आजकल केमिकल बहुत अधिक मात्रा में मिलाए जाते हैं, उसके कारण काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
5: हाँ।
6: तो उससे काफ़ी बीमारियों से भी अपन बच सकते हैं और जैविक खेती की उगाई गई फसल काफ़ी स्वाद अच्छा रहता है उसका, और उसकी सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेकारक रहता है, और उससे धरती माता भी सुरक्षित रहती है और अपन भी सुरक्षित रहते हैं।
5: तो
6: जो मार्केट में जो आजकल केमिकल आ रहे हैं उनसे अपन बच सकते हैं। तो जो जैविक खेती करना है वो बहुत आसान तरीका है, आसानी से खेती कर सकते हैं।
5: जी, आपने तो बहुत अच्छे से आपने जैविक खेती के महत्व के बारे में और उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली जैविक खेती करने के बारे में?
6: सबसे पहले मैंने 1 एकड़ से स्टार्ट किया था अपने परिवार के लिए और अपने लिए।
5: जी।
6: फिर उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते हमने काफ़ी आज 15 से 20 एकड़ पे जैविक खेती कर रहे हैं और उससे काफ़ी कस्टमर भी बना रखे हैं।
5: जी जी।
6: तो उससे काफ़ी लोगों को भी फायदा होता है और अपन भी स्वस्थ रहते हैं, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है।
5: जी।
6: तो उसके काफ़ी फायदे होते हैं।
5: तो आपने बताया कि जैविक खेती करने से आपको अच्छा लाभ मिल रहा है और उसके साथ साथ में आप स्वस्थ भी हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखे हुए हैं, और साथ ही आपकी खेती से जो उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो फसलें निकल रही हैं, वे उनके जो ग्राहक हैं वे भी इसी के साथ साथ में स्वस्थ रहते हैं।
6: जी जी जी।
5: तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। ये बताएं कि जैविक खेती में और जो हमारी रासायनिक तरीके की जो खेती होती है उसमें बुनियादी तौर पर अंतर क्या होता है?
6: जैविक खेती में थोड़ी सी जो एक तो समस्या आती खरपतवार की।
5: जी।
6: तो खरपतवार हाथ से निकालना पड़ता है, तो उसके बहुत आसान तरीके आजकल चल गए हैं, कुल्पे से और डोरे चल रहे हैं, काफ़ी कृषि यंत्र आ रहे हैं पूरा खरपतवार निकालने के लिए।
5: जी, जी।
6: उसके बाद हाथ से निंदाई करना पड़ती है, और रासायनिक खेती में ये रहता है कि आदमी एक दवाई स्प्रे कर देगा और उससे पूरे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं।
5: जी, जी, जी।
6: तो उसमें उसको कम मेहनत रहती है। जैविक खेती में थोड़ी सी खरपतवार की समस्या आती है।
5: जी, जी।
6: तो वो ज़रूर आपको हाथ से निकालना पड़ता है और रासायनिक खेती में केमिकल से निकल जाते हैं।
5: तो आपका मतलब कहने का ये है कि जैविक खेती में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर रहती है।

0: लेकिन रासायनिक तरीके से यदि हम रसायनों का प्रयोग यदि करते हुए हम यदि अपने खेतों में ये काम करें तो उससे काम तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा, है ना
1: जी जी।
0: तो ये भी आपने एक अच्छी चीज़ बताई। अच्छा, जैविक तरीका से खेती करने में किस तरीके की तुलना की जा सकती है कि जो रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों में से सस्ती कौन सी पड़ती है?
1: वैसे तो जैविक खेती सस्ती पड़ती है, क्योंकि जैविक खेती में आप जो दवाई है वो दवाई जो स्प्रे करते हैं वो दवाई अपने खेत के आसपास ही पेड़ रहते हैं, जैसे नीम है, बेसरम है, अकौआ है, सीताफल है, करंज है, तो इसका आप 5 पत्ती काढ़ा बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा एक ब्रह्मास्त्र रहता है, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के गाय के गोमूत्र में उसको मिक्स करके उसको भी अपन खेत में स्प्रे कर सकते हैं। एक नीम आयल है, तो ऐसे बहुत सारी दवाई जो मार्केट में आज 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लीटर दवाई आ रही है, तो उसकी अपेक्षा ये दवाई बहुत सस्ती पड़ती है।
0: हाँ, और अपन चाहें तो खुद भी बना सकते
1: खुद
0: हैं।
1: भी बना सकते हैं उसको, खुद ही बनाते हैं लगभग सभी लोग जो जैविक खेती करते हैं वो खुद ही बनाते हैं।
0: जी जी।
1: और उससे ये रहता है कि मतलब एक तो उसी फसल को अपन उसी दिन खा लेंगे तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और जो मार्केट की जो केमिकल वाली फसल रहती है उसमें काफ़ी दिन तक जहर का असर रहता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक रहता है।
0: जी, ये आपने एक अच्छी बात बताई। आप ये बताएं कि जैविक तरीका से खेती करने में आपने ये तो बताया कि खरपतवार का नियंत्रण हमें खुद ही करना होता है ना, हाथ से करना पड़ता है, इसके अलावा कीटों का नियंत्रण जैविक तरीके से कैसे होता है?
1: कीटों का नियंत्रण जैसे मैंने बताया, 5 पत्ती काढ़ा बना सकते हैं आप, ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, नीम आयल स्प्रे कर सकते हैं, छाछ की दवाई बना सकते हैं, ऐसी देसी दवाई काफ़ी बनती है, उससे कीट एकदम उस शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना पड़ेगा। यदि एकदम कीट लगने के बाद आप देसी दवाई स्प्रे करेंगे तो फिर वो दवाई असर नहीं करती है।
0: अच्छा।
1: उससे ये है कि फसल 10 से 15 दिन की हो जाए फिर आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे उस पर कर सकते हैं, तो फिर आपको कीट की समस्या नहीं आएगी।
0: जी, अच्छा, और कीटों के साथ साथ में एक दूसरी समस्या और आती है फसलों में कि उनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, तो रोगों के नियंत्रण करने के लिए जैविक कौन से जैविक तरीके हो सकते हैं?
1: जब आप जैविक खेती करना स्टार्ट कर देंगे तो रोग तो अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गोबर का सड़ा हुआ खाद रहता है और केंचुआ खाद रहता है, या कहीं बोन मील यूज करते हैं जैसे राख फास्फेट यूज करते हैं
0: जी,
1: तो ऐसी काफ़ी ऑर्गेनिक देसी दवाइयाँ या खाद वो आते हैं, तो ये बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब मैं करीबन 15-20 वर्ष से कर रहे हैं तो अभी हमारे खेत में कोई बीमारी नहीं आती है, परंतु प्रत्येक हर वर्ष आपको मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए।
0: जी,
1: मई जून में आपको मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष एक वर्ष छोड़ के आपको मिट्टी पलटना चाहिए।
0: जी,
1: तो मिट्टी पलटने से काफ़ी जो गहरी जुताई बोलते हैं अपन, गहरी जुताई करने से मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है, तो उससे पोषक तत्व काफ़ी बढ़ते हैं खेत में।
0: जी जी। अच्छा वर्मा साहब, आप अभी बता रहे थे कि मिट्टी परीक्षण ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और जो अभी खेत बचाओ अभियान चल रहे हैं उसमें भी इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मिट्टी परीक्षण किसानों को कराते रहना चाहिए, नियमित रूप से कराना चाहिए। इसके लाभ क्या हैं और इसको कैसे करवाया जाता है?
1: मिट्टी परीक्षण के काफ़ी लाभ रहते हैं, जैसे जो लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको मिट्टी परीक्षण में ये पता पड़ जाता है कि मेरे एक एकड़ खेत में 10 किलो यूरिया देना है, जबकि वो एक एकड़ में 50 किलो यूरिया डाल रहा है, तो वो 40 किलो यूरिया उसका वेस्टेज जा रहा, उसकी उसको ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजन की, और आप 10 किलो की ज़रूरत है, अपन 50 किलो डाल रहे हैं तो 40 किलो वेस्टेज जा रहा है, फास्फोरस की कितनी कमी है वो भी बता देते हैं, जिंक की कितनी कमी है, तो ये टोटल मिट्टी परीक्षण में आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे खेत में इतना मटेरियल डालना है। यदि आप मिट्टी परीक्षण नहीं करवाएंगे तो फिर आप बहुत अधिक मात्रा में खाद देंगे और उसका काफ़ी फसल को भी नुकसान रहेगा और अपने को भी नुकसान रहता है उसका।
0: अच्छा, तो ये आपने अच्छी चीज़ बताई कि मिट्टी परीक्षण हमें कराते रहना चाहिए। अच्छा, बीज को उपचारित करके भी कुछ खेती की जाती है जिसमें कि लाभ अच्छे तरीके से मिलता है, तो बीज का उपचार किस तरीके से किया जाता है, उपचारित
1: जैसे
0: कैसे किया जाता
1: है? ऑर्गेनिक जैविक खेती में राइजोबियम से उपचार करते हैं
0: जी।
1: तो उससे एक फंगीसाइड जो फंगस लगती है वो बीज में फंगस नहीं लगती है, और रासायनिक खेती

0: भी काफी बीज उपचार आते हैं, तो उससे एक तो अंकुरण की क्षमता अधिक बढ़ जाती है,
1: जी
0: दूसरा कई बीमारियां नहीं लग पाती। शुरुआत में जब पौधा उगता है उसी समय उसको बीमारी ग्रस्त कर लेती है, तो फिर वो अच्छा उत्पादन नहीं देता है, तो
1: जी
0: बीज उपचार करना बहुत अति आवश्यक रहता है।
1: जी जी हमें जैविक तरीका से यदि हम खेती कर रहे हैं तो और कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए?
0: एक तो आपके जैसे खेत है तो किसी कोई बाजू में आपका रासायनिक खेती कर रहा है तो उसके खेत का पानी आपके खेत में बह के नहीं आना चाहिए।
1: जी
0: तो आपको जो आपकी मेड़ रहती है उसको बफर जोन बोलते हैं,
1: हाँ
0: उसको आपको ऊंचाई पे करना पड़ेगा। दूसरा आपको लास्ट अपने खेत के किनारे पे थोड़ी ऊंची वाली फसल बोना पड़ेगी, तो उससे जो कि दूसरे वाला केमिकल का स्प्रे कर रहा है तो उसकी जो हवा है वो अपने
1: जी
0: खेत
1: जी
0: की तरफ नहीं आए, तो उससे वो भी आपको देखना पड़ेगा,
1: जी
0: तो उससे काफ़ी फायदा रहता है।
1: जी अच्छा वर्मा जी, एक बात ये बताएं, जैविक तरीके की जो उपज होती है उसका कुछ मानकीकरण वगैरह भी होता है क्या? उसके बारे में बताएं, उसकी मार्केटिंग कैसे करी जाए, उसका विपणन कैसे किया जाता है?
0: उसको आजकल क्या है, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था है भोपाल में,
1: जी
0: वहाँ आपका पंजीयन होता है, तो
1: अच्छा
0: वहाँ पे लैब टेस्टिंग भी होता है और इन्फेक्शन के लिए भी वो प्रत्येक वर्ष आपके खेत में जाते हैं और वो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ से एक प्रमाण पत्र देते हैं आपको,
1: जी
0: वो आप इस खतरे में खेती कर रहे हैं, तो वो आपको पूरा वो रिकॉर्ड देंगे, फिर आपको पूरा वर्ष भर की डायरी मेंटेनेंस करना पड़ेगी, आज हमने खेत में निंदाई करी है, आज हमने ये दवाई डाली
1: अच्छा
0: है, बीज आज ये डाला है,
1: जी
0: फिर
1: जी
0: इसका हाईवेस्टिंग इस दिन किया है, फिर इसका उत्पादन इतना आया है और इसको इस रेट में हमने बेचा है,
1: जी जी जी
0: तो वो पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो वो काफ़ी आसान है। और जी भी अपने भोपाल में उसका पूरा ऑफिस बना हुआ है और वो पूरी समस्या का हल निकल जाता है।
1: जी अक्सर लोग बाग ये बोलते हैं कि जैविक तरीके से ऑर्गेनिक के जो फसलें होती हैं वो महंगी होती हैं, तो ये क्या बात है, इसके बारे में क्या
0: एक
1: बताएं?
0: जैसे जैविक खेती करते हैं तो उसमें थोड़ी सी लेबर कास्ट काफ़ी अधिक लगती
1: ज़्यादा
0: है,
1: होती है हाँ
0: दूसरा फिर आप उसको प्रोसेसिंग देसी विधि से करते हैं, जैसे आजकल दालें घट्टी से बनती है, वो
1: जी
0: घट्टी की दाल बनाने में काफ़ी लेबर की कास्ट आती है,
1: जी
0: तो और उसका प्रोसेसिंग करने में थोड़ा सा क्या है कास्ट ज़्यादा आती है, इस वजह से मार्केट के जो सामग्री रहती है उससे थोड़ी कास्ट उसकी अधिक रहती है।
1: जी किसानों को कैसा फायदा होता है जैविक खेती करने से, फायदा है या नहीं?
0: नहीं फायदा है, और आजकल जैविक सामग्री लोग गांव-गांव ढूंढ रहे हैं उसको, और आजकल जो पहले 40-50 वर्ष पहले जो स्वाद था वो आज की मार्केट की सब्जियां इनमें नहीं है, तो लोग गांव ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे ऑर्गेनिक खेती हो रही है
1: जी
0: और वो खेत से खरीद के लेके आते हैं,
1: जी
0: तो उनको ये एहसास हो जाता है कि हमने 50 वर्ष पहले जो लौकी खाई थी
1: हाँ
0: वो आज टेस्ट इसमें आ गया,
1: वैसा टेस्ट
0: तो
1: आ गया,
0: वैसा टेस्ट आ गया, तो काफ़ी लोग गांव पहुंच रहे हैं ढूंढ रहे हैं
1: जी।
0: और मार्केट अपने आप मिल जाता है, मार्केट की कोई समस्या नहीं आती है।
1: ठीक, आप हमारे जो किसान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा प्रत्येक किसान भाई से निवेदन है कि कम आप मार्केट में नहीं बेच सके तो कम से कम अपने परिवार के लिए जैविक खेती करें, एक एकड़ आधा एकड़ 25 डिसमिल जो भी आप कर सकते हैं, परंतु आप अपने परिवार को स्वस्थ रखें, आप स्वस्थ रहें, और फिर और अधिक आप करना चाहें तो और अधिक ज़मीन पे जैविक खेती करिए, तो काफ़ी लोगों को फायदा रहेगा और अपन स्वस्थ रहेंगे, भारत स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से अपन मुक्त हो जाएंगे।
1: जी तो गजराज सिंह वर्मा साहब, आप कुलांस कलां जिला सीहोर के आप उन्नत कृषक हैं और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसानों को जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अबे हमारे भैया जी जी हरे सुन रहे थे जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण, विशेषज्ञ थे गजराज सिंह वर्मा और उनसे बातचीत कर रहे थे आनंद कृष्ण वर्मा। तो हमारे भैया जी जी हरे जरूर ये जानकारी हासिल करके लाभान्वित हुई हैं। और भैया हरो देखो, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, डॉक्टर्स डे। आज को दिन ऐसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं कई कि सभी डॉक्टर अधिक परिश्रम से अपने मरीजों को स्वस्थ कराते हैं और बल्कि हम कह लेवे कि उनको एक नव जीवन दे देते हैं, राष्ट्र के नागरिकों को एक निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं जिसे वे सबके सम्माननीय बन जाते हैं। ऐसे कई सभी डॉक्टरों को आज हमारे संगे पूरा आकाशवाणी परिवार ग्राम सभा के माध्यम से

बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहे है। तो सभी डॉक्टर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब सुन लेते हैं बहादुर सिंह नरवरिया और साथियों के स्वर में गाओ वह जो देवी गीत।

दिवस आज यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई लो वन महोत्सव मनाओ जात है। पूरे सप्ताह भर देश भर में वृक्षारोपण पर्यावरण जागरूकता उत्सव के रूप में मनाओ जात है। और जो महोत्सव मनावे को अगर अपन बात करें तो ये मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में पेड़ लगावे की आदत के संगे संगे उनको संरक्षण के महत्व को भी समझावे की बात है कि वे पर्यावरण के महत्व को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा ना केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखवे के कारण पेड़ लगावें बल्कि ये जरूरी है कि जो पेड़ लगाए हैं उनको संरक्षित भी रख सकें। और जब वे संरक्षित हुए हैं तो ना केवल वे अपने लाने लाभकारी हुए हैं तो ऐसे लाभ के संगे हम सुन लेते हैं जो वृक्षारोपण गीत डॉक्टर अरविंद सोनी के स्वर में।

भैया जी जी हरो, आज हम अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस सुई मना रहे हैं। और जो दिवस मनावे को अगर बात करें कि क्या उद्देश्य है, तो हम स्वस्थ आहार लेवें जिससे हम सभी जने स्वस्थ बने रहें। काहे कि अगर जब अपन टिकाऊ कृषि पद्धति के माध्यम से अपन कृषि कराते हैं, तो ना अपन को सांस्कृतिक महत्व के द्वारा अपन को जो अपनी फसलें हैं वो अपन को मिलती रहती हैं, बल्कि अपन को अच्छे जो हैं फल हैं सब्जियाँ हैं वो मिलती रहती हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लाने ज़रूरी होती हैं। हर बरस इसको एक दिवस विषय के रूप में मनाओ जात है, और ई वर्ष जो दिवस मनावे के लाने जो फल चुनो गौ है वो है खजूर, और ईखों दौ गौ है फ्रूट ऑफ द ईयर। तो सभी जने खूब फल खावें और स्वस्थ बने रहें, और जब स्वस्थ रहते हैं तो अपनो मन भी अच्छो रहते हैं। सो सुन लेते हैं आरती तिवारी के स्वर में जो लोक भजन।

भैया जी हर बिरिया हो रही है चलवे की, सो आप औरों को कल के कार्यक्रम सो ही बताओ चलें। बुनसरा कृषि चर्चा में सुन में खरीफ फसलों की बुआई एवं प्रबंधन और वाचक शुरू हुई है मेदनी प्रताप सिंह को और संजय सुने भेंट वार्ता वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहवे के लाने आयुर्वेद की सलाह है और विशेषज्ञ हुई हैं डॉक्टर ऋतु पांडे और आवारती बहन को दो आज्ञा राम राम।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन

0: सुनिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहाँ कहाँ किस स्तर पर दिखेगा।
2: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें बदलाव की ज़रूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं
1: जी,
2: तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना बताई गई, लेकिन क्या रोजगार मुहैया कराना ही काफ़ी है या हमें उससे आगे भी बढ़ना है। आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपये, 95,000 करोड़ रुपये, 80,000 करोड़ रुपये आप किसी योजना के तहत खर्च करते हैं, तो क्या केवल ये आप सुनिश्चित करें कि 100 दिन के लिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को रोज़गार मिल जाए, या फिर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है। तो ये जो नई योजना VBG राम जी है इसका मूल मकसद ये है कि रोज़गार के साथ साथ लंबे समय के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरी की जाए। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि जो प्रमुख बदलाव हैं, तो 5 अगर मैं प्रमुख बदलाव की बात करूँ तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव ये है कि जो गारंटी थी वो पहले 100 दिन की थी, अब वो 125 दिनों की है
1: जी।
2: दूसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर की योजना, जैसे एक गांव की ज़रूरत क्या है, अब देखिए देश में 6,00,000-7,00,000 जितने भी गाँव हैं हमारे, हर गाँव की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से विकसित की जानी है, उसकी मैपिंग कैसे की जाए, वो मैपिंग करने के बाद उस आधार पर उनके लिए जिसे कहा जाए कि ग्राम विशेष के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरे की बात करूं तो तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप 3 चीज़ों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की ज़रूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की ज़रूरत है, वहाँ पर कितने हमें रोज़गार मुहैया कराने की ज़रूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीज़ें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के ज़रिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि GIS मैपिंग में भी वही चीज़ होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के ज़रिए है, तकनीक के ज़रिए आप ग्राम विशेष की ज़रूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो, ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने गांव ख़त्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहाँ पर बांध बने, वहाँ पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई उसका और ज़्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का स्थाई जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो। और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं। उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं कि जहाँ पर ग्राम उद्योग विकसित हो रहा है वहाँ पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं।

0: कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करें। ये पांच खास बातें हैं जो वीवी जी राम जी को एक नए स्वरूप देती हैं और जो कि आज से लागू हुआ
1: यहाँ
0: है।
1: पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल ये है कि तकनीक के माध्यम से ये नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
0: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था
1: जी
0: उसके गठन के समय में एक बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप्स डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है। यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहाँ पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जियो स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, आपको जमीन की जरूरत है। अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा।
1: दिल्कुण, दिल्कुण।
0: तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत जिसको कहते हैं ना DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है वो गांव के समूह के लिए जो है वो आप कुछ काम करते हैं।
1: यहाँ पर आपने पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया। इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
0: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वेज न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था न्यूनतम मजदूरी थी वो 298.80 रुपये थी, अब वो 327.40 रुपये हैं। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपये का और राज्यवार अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 380 रुपये का, 379 रुपये है अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूँ। बिहार की बात करूँ तो 300 रुपये का है, फिर पंजाब की बात करूँ तो वहाँ 300 रुपये का है, तेलंगाना की बात करूँ तो 305 रुपये का है, कर्नाटका की बात करूँ तो 382 रुपये का है, तमिलनाडु में 345 रुपये है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपये का बनता है और न्यूनतम जो है वो 300 रुपये का बनता है और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपये के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, 2/3 आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
1: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
0: यही पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहाँ पे है कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं। अब आपने कहा कि यहाँ पे जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहाँ पर तकनीक के जरिए जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है। आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पर बनाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है और जहाँ पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं, तो वो काफ़ी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए

0: तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा। तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहां पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहां पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है। तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
1: यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
0: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, KYC वो नहीं होता था। अब KYC के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जा कर के उसको अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर VVG राम जी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहाँ पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहाँ पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक जिसको कहते हैं ना ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
1: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफ़ी पीछे रह जाते हैं।
1: हम पीछे ना रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ है, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज़ किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है दाग।

प्रेम गीत की इस गज़ल के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने सूरज फिल्म से लिया है। हसरत जयपुरी के बोलों को धुन में सजाया शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है अनजाने। संगीत तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर।

याराना फिल्म के इस गाने के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आरजू फिल्म से, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए आरजू फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 8:42 होने को है, वक्त है छोटे से अंतराल का। आपको एक सूचना दे दें, गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर्स पर अपने कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन ब समय एक बार फिर सुन लें, दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से। फ़ोन नंबर 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी।

0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए

0: केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।

0: की। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: देखते हैं तो भारत की दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
1: जो ये टाइम फ्रेम जो है इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे हैं कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए, क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में, 11 साल 12 साल में, मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
0: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियाँ या माइलस्टोन मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
0: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
3: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
0: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
0: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है, इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
0: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो

0: वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का, जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस AI फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर

0: दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते हैं। तो इट इस ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये
1: जी
0: मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, द इकोसिस्टम प्रोवाइड किया। ऑन टॉप ऑफ द डिपो इकोसिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का, अभी आप सुन जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में
1: जी
0: जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
0: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए। तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है।
1: जी
0: लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स। आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड
1: जी
0: दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफ़ी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे
1: जी
2: स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है,
1: जी
2: ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया।
1: जी
0: सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग का बोलते हैं, ये
1: जी
0: बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से। और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इको सिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया।

0: बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी
1: जी
0: करप्शन ये सब है वो सब हट गए। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
2: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, जगह सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है, वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
3: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें, तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
0: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट, ओके एंडोर्समेंट जो मिलते हैं, उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन AI का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ

0: है। अभी
1: जी
0: क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है।
1: जी
0: मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा, जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही
1: जी
0: बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
0: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज। क्योंकि क्या हो गया, अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं। लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फेब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है, और इसको आगे लेके जाए और ये इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज़ करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहलों या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं, उस तरह की पहलों, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल FTA साइन कर रहे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है और उसके थ्रू उनको

0: नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों, क्योंकि अगर आप हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्रीस्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो ऑल्टरनेटिव है, हम लोग को ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हो स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है और ये खाली इंडिया का नहीं, ये पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है ससीम कुमार बाड़े के लिखे मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक केकड़ा।

0: ये बाबा की आज तो बहुत तूफान है।
1: तारा तारी करो।
0: अरे कर दे बाबा की तुम्हें।
1: ए माजी माजी देखो देखो मातला कैसी फुफका रही है ना, ये आकाश एकदम बादलन से अट गया है।
0: उड़ी बाबा ये मोनू बीबी ये उन्हें नदी में घर नहीं लौट पाएंगे हम। हाँ? हमको बड़ा डर लग रहा है। बापू कहता था उफना नदी में काठ की नाव तो नाला में बहती कागज की नाव से हलुक हो जाती है।
1: अरे सुनो सुने अपन नाव को ना माया

0: दीप के खाड़ी में बढ़ाई लो। हाँ, जोखिम कम होगा वहाँ पर।
1: ठीक ठीक ठीक
0: है ना। अरे पतवार तनिक जल्दी खेवो तारा तनिक कोरो।
1: तनिक कोरो
0: तनिक कोरो ना।
1: ये मुनिसा मुनिसा वो देखो वहाँ हे ताल का कितना घना झाड़ी है। तेज हवा से भी बचाव होगा। तो यहाँ डाल देते हैं लंगर। क्या कहती हो?
0: एकदम एकदम ठीक ठीक। सुनो अभी नैया के लंगर ला जबरे जो है ना जरा तनी कस के बांध दो।
1: ठीक ठीक।
0: अल्लाह रहम कर रहम कर।
1: हाँ तो अब थोड़ा राहत का सांस।
0: मिया ये हफीजूर काहे नहीं आया?
1: अरे उसके बड़ा खाला की बेटी का शादी में गया है।
0: शादी में?
1: हाँ केनिंग। अरे खूब दावत उड़ाएगा वहाँ।
0: खूब।

0: बात, थोड़ा राहत का सांस।
1: मिया, हाफिज जूर काहे नहीं आया?
0: अरे उसके बड़ा खाला की बेटी का शादी में गया है।
1: शादी में?
0: हाँ, केनिंग। अरे खूब दावत उड़ाएगा,
1: खूब खाएगा ना।
0: तन बादल तो हो रहा है।
1: बादल देखो ना, छट गया है। देखो वो गरान पेड़ के ओट में से झांक रहा है, वो पंचमी का चांद। कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, चाहे जो भी कहो मांझी, सुंदर बन के ये मतवारा छटा के निहार के तो एकदम जी जुड़ा जाता है। सुनो, ये खाना परोसते हैं, अब खाई लो।
0: अरे का खाएं?
1: काहे, दोपहरिया के पानी भात और केकड़ा भी तो है।
0: अच्छा तनी और लालटेन में बढ़ाए दे।
1: अच्छा बढ़ाते हैं।
0: और तुम भी खाई लो बीबी।
1: हमरा तो एकदम बदन टूट रहा है, एकदम पूरा दिन के थकान के बाद अब तो आँखियाँ एकदम सटल जा रहा है।
0: हाँ तो जा, जा तो सो जा। मारे खुशी के हमरत रात भर नींद नहीं आई है। बाप रे बाप, सगरा नाम केकड़ा जो भरल बा। अरे हम तो हुक्का गुड़गुड़ावत रात राज काटे बा।
1: एकदम एकदम ठीक कहता है तू माझी। और जगह तो महफूज नहीं रहे है। पानी में मगरमच्छ और किनारे पर बाघ बाघ बैठल है।
0: हाँ ठीक,
1: तू तू ना पहरे पर बैठ जा। पहरे
0: ठीक ठीक ठीक ठीक, सो जा। अगर तू ऐसा ही पकड़ रहा है हमका तो खुदा दहिया झुलस जाए ना।
1: डर के मारे हमर जान जा रहल है और तू अपने रस के फिराक में है। छोड़ छोड़ ना हमरा।
0: ऐसा ऐसा छोड़ दे तो कब प्यारी। तनिक याद तू कर, दोपहरिया में वो केकड़ा कैसन गपुचिया रहल अपने कसौसा।
1: देखा ना तू वो केकड़न के प्यार, देखा ना ऐसन प्यार इंसान के बस में ना है। हाँ
0: कमाल है मुनेसा, कमाल। अरे तू तो गड्ढन को देखते ही बता देते माँ के गो केकड़ा है।
1: हाँ,
0: और हम बेवकूफ पाक में दौरी गरा के सोचते रहे तोरा पता कैसे लगत है।
1: हमरा तो हंसत हंसत सांस फूले लागल। केकड़ा पकड़त इतना साल बीत गई पर अभी भी। तब दिखाई रहे ना तोहरा कि ये पाक मा मादा केकड़न के हलोग बुझले ना, हलोग और नर केकड़न के गहीर छाती के निशान, समझ।
0: सच बीबी, अरे तोहार नजर कभी जवाब नहीं। गड्ढन के देखते बताए रहे दोनों केकड़ा खूब बड़का निकली है। अरे कैसे अंकुशी के ठीक निशाने पर डाल तो पाक से दोनों केकड़ा निकाल ले। वाह, अरे खुशी के मारे हम तो उछलिए जात। अरे बाकी गोर तेरे ससुर पाकवा गड़ल रहे।
1: और तू तू चीख पड़ला, बीबी तू कमाल कर दीले, कमाल कर दीले। मिया, वो बाबुअन से एक केकड़न के कम 20-25 रुपया तो मिलवे करी है ना।
0: ए सुनो ना
1: की।
0: ए
1: बोलो,
0: तुमको याद है वो मादा अपने खसम को कैसे कड़कड़ा के पकड़े रहे अपने डंकुमा आवत हमरे। अरे आवत
1: तो हमी को ही याद नहीं, पर तुम्हारी सबूर नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ
0: सबूर वो का होते वो बाबा के तो बड़ा झेलो है बाबा रे, इतना बड़ा केकड़ा का जोड़ा। और तू क्या बोली, छोड़ दो छोड़ दो। अरे काहे,
1: क्या नो क्या नो बोलबो ना है। वो बखत उनके प्यार कर रहा ऐसन माँ, अगर तुम उनको पकड़ते तो का वन बीबी गुस्सा ना करती। और जरा ये भी तो सोचो कितना सारा वो छोटा छोटा छोटा छोटा केकड़ा आवेगा। अब बता

0: ऊप यार न करे तो हमरा ये पेट कैसे चलेगा, बोलो।
1: ए हमार प्यारी बीवी, ये तो सच है, तू ना होती ना तो केकड़ा पकोड़ के गुजारा करना मुश्किल था। ए हाँ ना,
0: छोड़ो ना,
1: थोड़ा और पास आना।
0: की कुछ तुम्हीं छेड़ दो
1: मत। ये सुन, हाँ ना
0: ना ना, आमा के छेड़ दो, छोड़ो छोड़ो, छेड़ दो।
1: सुन सुन,
0: अल्लाह हमको हमको औलाद ना दिया, अगर होता तो कैसा धूम मचा रहता आंगन में।
1: कहा मने साबे भी,
0: अपना तो नसीबे फूटा हुआ है।
1: अब
0: ना तो फकीर वाला ताबीज कामरा करता का।
1: अरे कैसे करता है? वो तुमका दिया रहा कमरमा पहनने बदे, और तुम का किए, अंगूठी बना के केकड़ा को पहना दी। बाप रे, केकड़ा का डंक ऐसन कसमसा रहा था, अरे हम तो डरा रहे थे कि अब काटा कि तब काटा है। अरे तू ना ही डराई,
0: डराने जैसन कहा था, बास को चिमटवा से पकड़वा न रखे थे का, वो तक आ उकरा बाप बिना काट सकत।
1: अच्छा।
0: बाकी मियाँ वो तो ठीक ना किया।
1: कहे?
0: वो मादा केकड़ा का मातला के मुहनवा पर जाकर छोड़ दिया। और उका खसम का छोड़ा कितना दूर ले जाके खड़ियन के पानी में, उके परिवार तोड़ दिया। तू अच्छा ना किया, एकदम अच्छा ना किया मियाँ। तू
1: तो का परिवार तोड़ दिए।
0: हाँ
1: तो देख हमारा मजा। आवे ना तन, तन छतिया के नियर
0: छोड़।
1: अरे आ ना,
0: अरे ना मियाँ ना,
1: छोड़
0: ना हमरा, छोड़ नहीं माँ, ये काम गुनाह हुए। बन बीबी हमका माफ ना करी, छोड़ हमका, छोड़ दे।
1: ऐसे कैसे छोड़ दे? अच्छा बता, तो केकड़न के माफिक छतियन से सटा के रख बो, काहे की प्यार के बखत हाँ ता ना।
0: कहाँ कर सुन, हम छेड़ दो।

0: चाचा, वन बीवी की पूजा लाए हो?
1: हाँ भैया, हर बैशाख के बैशाख बन बीबी के बथान पर सिन्नी न चढ़ाऊं तो मनवा नहीं मानत है।
2: हाँ, ठीक कहते हो चाचा। तुम मुसलमान लोग चढ़ाते हो सिन्नी और हम हिंदू चढ़ाते हैं कंदमूल के प्रसाद। देवी के स्थान पर कोनो भेदभाव नहीं।
1: हाँ भैया, बन बीबी की महिमा तो अपरंपार है। याद हो वो नाड़ू ढाली कैसे वो दक्षिण राय उका खींच के ले गरा, साक्षात देवी प्रकट हुई और उका प्राण बचा।
2: और नहीं तो का सब लोग ऐसे ही बन बीबी को जागृत देवी कहते हैं। याद है चाचा कैसे सब आपन आपन जान लेके पराए रहे, कहता होश रहा कि कौन कहवा गिरा पड़ा कि मरमरा गया। उसी वक्त चमत्कार हुआ, समूचा बन दूधिया रोशनी से जगमगाने लगा, इतना कि आंख झुलसाव देवे। ऐसन माँ बाघ कौन सा बिल में दुख का काहू को पता नहीं। जब रोशनी छटी तो का देखते हैं कि बेचारे नाड़ू के बदन से खून पिचकारी मार के फूट रहा था। अब बताओ चाचा, देवी ना होती तो का उनका प्राण बचता?
3: नाड़ू को साक्षात देवी ने बचाया। नहीं तो हम जैसे मामूली मछुआरन की रक्षा और कौन करे।

0: चाचा जाना जो है एगो डेंगी तो दिखा।
1: डेंगी आ दादा ना चाहिए तोरा।
0: हाँ ना माने दादान ना वो
1: बुझाई बुझाई जब ये केकड़ा प्रदेश गईल बंद हो जाए तो ये बुझाई तोरा। हाँ का जतिन तू का कहता है?
2: अरे बाबा हम का बोलेगा अब हम ठहरा एरू गैरू नत्थू खैरू हमार बोली के का मोल।
0: चाचा डेंगी का भाड़ा कितना कितना लेंगे अभी?
1: हर दिन का 200 रुपया। हाँ
0: हाँ बाबा चाचा का कहते हैं अब पहले तो 150 रहा था अब एक बार 200 रुपया। तो
1: देख डिंगी चाहिए तो ले ना चाहिए तो काहे लेबो है।
0: मालिक थोड़ा पैसा कम हो जाए तो।
1: एक पैसा कम नहीं लगा दे दे डेंगी इसको।
2: अच्छा ठीक है ठीक है आइए आइए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा मालिक मालिक
3: अरे ओ बड़को माझी गोलाई पे का गमशुम आयल हुआ कबनो ठीक है का हो?
4: अल्लाह अल्लाह रहम कर अल्लाह। वो मुआ छगन अली के मुंह देखे निकसे ना तब से ही मनवा एकदम रुआसल रहे।
3: ठीक कहे तो बाउदी
4: ताना माझी के कनवा में कौन समंदर फूंकत रहे। हमर तो उका आंख देखे ही ना ये परान सटक जा रहा।
3: अरे ऊ सब छोड़ बउदी देख मर्यादी पंजोरा अंधार में कितना मन सायन लागत हुए सुंदर बौन पहरे पहर रूप बदलेल जैसे कवनो तोर गांव कवनो तोर गांव के छोरी।
5: पालन माजी अरे पालन माजी का हुआ रे बाबा
6: कयामत नियर है दक्षिण राय को ना छोड़ी हो।

0: अरे छोरू मिया है क्या?
1: किया जी। हुजूर।
0: हाँ हम।
1: अश्विन, अश्विन।
0: छोरू मिया दिखाई नहीं देता, नहीं है क्या?
1: ना ना हुजूर, वो तो मच्छी बाजार गया है जी।
0: अच्छा अच्छा, हाफिजूर आया था?
1: हाफिजूर? ना ना, वो तो ना आया। हाफिजूर से आपको का काम?
0: उगा, तुमको बताना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, तुमको ही तो बताना चाहिए। कहे कि अरे भाई, हमार मतलब वो ठहरा तुम्हारा।
1: का बोल रहे हैं हुजूर अब? का बोल रहे हैं?
0: अरे ठीक ही तो बोल रहे हैं। आजकल बड़ी खातिरदारी हो रही है उसकी यहाँ, और तुम दोनों को एक साथ खूब देखा भी जा रहा है। अब ऐसे में लोगन की नजर तो पड़ेगी ना।
1: जी हुजूर जी, ऐसा ऐसा काहे बोल रहे हैं आप?
0: मैं ऐसा बोलता हूँ? अरे हाफिजुर की खातिरदारी कर सकती हो तो हमारी क्यों नहीं?
1: हुजूर,
0: आखिर तुम्हारी खिदमत पाने का हक हमें भी तो है, है कि नहीं?
1: हुजूर।
0: चलता हूँ ना।
1: आशो आशो, वो खाने ना, एक खाने बसो, खाना परोसते हैं।
2: नहीं।
1: अरे माँ जी, गुस्सा भी होगा।
2: तू ना पूछ बे, तू ना पूछ बे। वो हरामी फिजिला जबरे इतना लगा तोरा का?
1: कह रहे हो माँ जी, अल्लाह कसम, ये बात दिमाग में से हटा।

0: हटा दो।
1: हम नहीं, सगरे गांव में शोर है। भितरे भितर रस लेबे और हमरा भनक बिना पड़ी यही ना बुझली तू? अरे बाकी छगन हुजूर से तो पूरा करतूत सुन के आवत है।
0: तोरा तोरा तोरा छगन अली के बात पे यकीन है?
1: छगन हुजूर के बात तो यकीन ना करी और तोरा बात पे यकीन करी हम? इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला, इला,

0: ये का हाल किए हो अपना और ये घर का? ऐसी बीबी का घर से निकालने का यही नतीजा होता है। अब भुगतो।
1: हाँ, भुगत रहे हम। अब और जन कोसम का दिमाग में ताला लग गया हमार। जो जो जो छगन नली की बात सुन जन बीबी को तलाक दे दे। अभी भैया तो मनु बीबी अभी अभी कहाँ है?
0: आपन बड़ की चाची के नहीं हर माँ।
1: देखो तो मनु बीबी के अलावा हमार के हैं यहाँ? ओकरा बगैर हम जिंदा ना रहे, जिंदा ना रहे। भाई हाथ तो ही कुछ कर लो।
0: अरे ओहे ला तो आए हैं हम। छोगा नाली है को जीता जागता शैतान है शैतान। लेकिन अब ओहे शैतान के रोजा मंदिर ना मिले तो कुछ ना होगा, मत वाली को पकड़ना ही होगा।
1: देखो हम छगन हजूर के पैर पकड़ लूंगा। हम कहूंगा कि मोहन बीबी को मेरे घर भेजने के लिए राजी हो जाओ। पर तुम चलो हमारे साथ।
0: तो चलो

0: हम मन से तलाक नहीं दिए हैं हुजूर।
1: हाँ।
0: हुजूर तो गुस्सा में आके बिना कुछ सोचे समझे तलाक दे दिए हुजूर। अब आप ही बताएं हुजूर, ऐसे तलाक भला कहीं टिक सकता है क्या? हुजूर हम तो
2: ये जोरू को अपने मुंह से तलाक दिया है तूने।
1: हुजूर, आपने सिर्फ बाहर के बात को ही सुना है।
2: तुझे अगर इतना ही प्यार है तो ही निकाह कर लेना मुन्नेसा से।
1: शकुन
2: कुछ दिन ऐश करना फिर छोड़ देना। हाँ सुन, उसके बाद छोरू चाहे तो निकाह करे तलाकशुदा बीबी से, इसमें कोई ऐतराज नहीं।
0: रहम कीजिए हुजूर, हम पर रहम कीजिए। तक हम आपके पांव पड़ते हैं हुजूर। बंदे को अब और जलील ना करे हुजूर। हमारी दुनिया तो पहले ही बर्बाद हो गई हुजूर। हुजूर माफ कर दीजिए हुजूर।
2: आया ना हूँ पहाड़ के नीचे, कितनी बार बोला मुसलमान हो के केकड़ा ना पकड़, और तो और केकड़ा खाता भी था कम बखा। घर की औरत को लेकर पराए मर्द के साथ दिन रात केकड़ा पकड़ता फिरता था। क्या सोचता था खुदा तेरे इस जलील हरकत को बर्दाश्त कर लेगा? अब जाए यहां से।

0: चारा और दौरी लेके चुपचाप बैठे हो। अब वो केकड़ा पकड़ने काहे नहीं जाते?
1: अब क्या होगा केकड़ा पकड़ के?
0: ना माँ जी ना। सुनो, एक काम करो, एक अच्छी सी लड़की देखकर निकाह कर लो।
1: क्या?
0: तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी।
1: रहने दे, ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को ठेस ना पहुंचा।
0: माँ जी वो लड़का को देखने का जी ना करता तुम्हारा। छोटा माँ जी तो कहता है कि तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा और हमारा, वो मायादीप का लड़का, याद है माँ जी? पूरा नाव पर तुमने हमरा कितना प्यार किया था। हम तो कह रहे थे कि बहन भी नाराज होंगी, पर उन्होंने तो हमरा औलाद दे दिया, औलाद, हमरा बेटा। पर हमरा परिवार तोड़ दिया।
1: मने साथ
0: हमरा परिवार, अब हमरा दिल में अंधेरा के सिवा कुछ भी ना बचा, कुछ भी ना बचा।
1: मने साहब, सब नसीब है, समझी? अरे सब नसीब है, और मेरी गलती है कि
0: ना ना माँ जी, इसमें ना तुम्हारा गलती था ना हमरा। हम तो सिर्फ कठपुतली थे जिसका डोर छगन अली के हाथ में था। छगन अली जैसन लोग गरीब का घर उजाड़ कर जश्न मनाते हैं ना, जश्न मनाते हैं।
1: इतने साल गुजर गए पानी में, जंगल में काम करते हुए, पर फिर भी सांप के रंग को ना पहचान पाए हम।
0: अच्छा माँ जी, केकड़ा तो पकड़ नहीं पाए, लाओ हम पकड़ लाते हैं। वो बांस का चिमटा कहाँ है? लाओ जरा वो दोहरी बढ़ाओ तो।
1: तू रहने दे।
0: कहे हमरा पकड़ा हुआ केकड़ा अच्छा ना लगे? इतना साल में भी गुस्सा ना उतरा तुम्हारा।
1: निशा तुम
0: अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों ना उस साथ मिल कर केकड़ा पकड़ते हैं। चलो
1: अच्छा चलो ठीक है चल। सुंदर वन के इस द्वीप में एक साथ कितने केकड़े पकड़े हैं हमने।
0: कितना केकड़ा? वो गरान पेड़ के नीचे वो गड्ढा को देखो तो, कितना कितना बड़ा है।
1: हाँ।
0: बर्ची बर्ची डाल कर देखते हैं बर्ची।
1: अरे
0: बाप रे, कितना बड़ा केकड़ा, कितना बड़ा,
1: या अल्लाह।
0: और गड्ढा में एक केकड़ा औरो है। औरो है। हाँ
1: या अल्लाह,
0: कहाँ खो गए? माँ जी एक केकड़ा और पकड़ा हमने। आ देखो इसके इसके डंक पे ना वो तांबे के तार का अंगूठी है। हाँ ये देखो देखो।
1: अरे हाँ हाँ, जो पहले पकड़े थे उसके डंक पे भी तांबे के तार की अंगूठी थी। हाँ
0: तांबे के तार की अंगूठी।
1: हाँ याद है ना तुम्हें, वो फकीर का दिया हुआ ताबीज।
0: हाँ
1: जिनके तारों से तूने इन दोनों को अंगूठियां बनाकर पहनाई थी।
0: अरे हाँ, अपने आँख पर यकीन ना हो रहा है माँ जी। एकदम भरोसा ना हो रहा है। ये तो वही गरान का पेड़ है ना।
1: ये वही

0: এই মাঝি মাঝি, ই সর নিচা করকে কাহে বেঠে হো?
1: কন? ও

0: पेड़ कोई
1: ओए गड्ढा ओए केकड़ा का घर ये से पकड़ कर इन दोनों को मातला के पानी में अलग अलग जगह पर छोड़े थे ना।
0: हाँ बिल्कुल ठीक।
1: खेलते खेलते तुम कितना दूर ले जाकर छोड़े थे वो मादा केकड़े को। पर देखो देखो ना ढूंढते ढूंढते फिर इन्होंने फिर से अपना दुनिया बसा लिया। केकड़ा सबके परिवार तो ना तोड़ पाए माँ जी पर अपना परिवार तोड़ लिया। अपना परिवार तोड़ लिया।
0: मौलू भी लौटाओ ना हमरे पास। हाँ लौटाओ हमरे पास। चलो
1: हाथ छोड़ दो माजी। अब हम हाफिजूर के बीबी हैं। हाथ छोड़ दो। अरे तुमने हमरा तलाक काहे दिया था? काहे दिया था तलाक? काहे दिया?

0: केकड़ा नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप ससीम कुमार बाड़े के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थी विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, प्रवीण शर्मा, किशोर सहिजानी, सुनील कुमार लोहिया, अशोक मलकानी, दानिश इकबाल, प्रफुल्ल शर्मा, संजीव अग्निहोत्री, सलीम जैदी, श्रीराम शर्मा और कविता वर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए, अब सुनिए अमित मलिक का वायलिन पर बजाया राग जोग। तबले पर आपके साथ संगत की है MD सामी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे अमित मलिक का वायलिन पर बजाया राग जोग, तबले पर संगत की थी एमडी सामी ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने को है। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ही। 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर

मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता

0: कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH 148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen or Viksit Bharat G Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he's delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Change